मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर और एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। आज वीरवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 11वीं तिथि, तदनुसार 2 जुलाई 2026। समय प्रातः के 5:58 और 40 सेकंड हुए हैं। अब प्रारंभ होते हैं हमारे आज के प्रसारण।

0: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्स पर और एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को हैं अब हिंदी समाचार प्रसारित होंगे। समाचार हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। समाचारों के ठीक बाद एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्स पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रमों का रिले।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाइची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
2: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट।

0: के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री तकाईची कल शाम भारत की 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाईची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में सहायता मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि पिंस प्रक्रिया खराब मौसम और जमीनी नेविगेशन सहायता उपलब्ध न होने की स्थिति में विशेष रूप से उपयोगी है। इसका विकास भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने किया है। झारखंड ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया है। सरकार ने सभी उपायुक्तों को वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में बुखार का सर्वेक्षण, मलेरिया की त्वरित जांच और मरीजों के समय पर इलाज के निर्देश जारी किए हैं। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा आज से शुरू हो रही है। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। और डूरंड कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलोंग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। ये पहला मौका है जब डूरंड कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। इसके अलावा फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने DR कांगो को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अटलांटा में खेले गए मुकाबले में कप्तान हैरी केन ने मैच के अंतिम 15 मिनट में 2 गोल दागकर इंग्लैंड को रोमांचक जीत दिलाई। अंतिम 16 में इंग्लैंड का मुकाबला 6 जुलाई को सह मेजबान मैक्सिको से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर। समय है चिंतन का। जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत की सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। स्वामी विवेकानंद। अभी आप सुन रहे थे चिंतन, प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

सभी देवताओं से पूजित अग्रगण्य मंगल मूर्ति मनवांछित फल देने वाले सुख की वर्षा करने वाले सिद्धि विनायक भगवान गणपति की आराधना करते हैं।

हमारा मन ईर्ष्या द्वेष से भरा एक पिटारा है। यदि इसमें हम प्रभु नाम की ज्योत जला लें तो एक सुंदर मंदिर के समान बन जाएगा। तो आइए स्मरण करें अपने परम पिता परमेश्वर का।

जब आप प्रभु के प्रति भक्ति भाव रखोगे और सगुण कर्मों में ध्यान लगाओगे तो उनकी असीम कृपा का आभास और असीम शांति का आभास हर पल होना तय है।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान से आज का प्रसंग। स्वर हैं श्रीकांत प्रगोनकर और साथियों के।

दल बल समेत भरत प्रयाग पहुंचने को हैं। गंतव्य का बड़ा भाग पार किया जा चुका है, किंतु उनकी कुलता बढ़ती जा रही है। उन कष्टों की कल्पना से उनकी ग्लानि और क्षोभ बढ़ता जाता है जो श्रीराम, लक्ष्मण और सीता नाने किस वन में भुगत रहे होंगे। प्रयाग पहुंचकर सबने विधिपूर्वक त्रिवेणी में स्नान किया और तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम कर भरत ने अब मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना की।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान से आज का प्रसंग। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि की बातें।
1: किसान बहनों और भाई राम राम, भाई कृषि की बातें में जिक्र करेंगे सब्जी फसलों की देखभाल के बारे में। भाई फिलहाल जुलाई का भी हमारा चल रहा है, गर्मी का मौसम है और मौसम की भी हम बात करें तो कई तरह की अवस्थाएँ मौसम में बन रही है। कितने भाई अच्छी बारिश भी हुई है, पहले भी जो पश्चिमी विक्षोभ था उसके कारण भाई कितने कितने अच्छी बारिश हुई है। फिलहाल भी हम देखा कि मौसम में कितने भाई बादलबाई हो रही है, कितने तेज हवाएं हैं, गादला सा मौसम हो रहा है, हल्की बारिश भी हुई है। तो सब्जी फसल की इसमें बात आओ तो देखो जो बेल वाली सब्जी फसल है ये भी तोड़ पे है, चाहे हम बात करें भी घिया की, टिंडे की, या फिर अपने कद्दू पेठा है और चिकनी तोरी, काली तोरी, जो भी भैया लगा रखी है। क्योंकि गर्मी का मौसम भाई देखो जिस तरह बारिश आओ है सारा फूल उसमें जट जाए है, और जो भाई स्याणे हैं भाई जिन्हें डोलियाँ पर लगा रखी है, उभरी हुई जो क्यारी है उन पर लगा रखी है, तो उसमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि भी पानी नीचे रह जाए, फूल पे पानी, फल पे पानी नहीं चढ़ पाता, गंदा नहीं हो पाता, तो उसमें कुछ दिन लंबा भी चल जाए। बाकी हालांकि देखो ये बहुत हल्की फुल्की बारिश है, जब तेज़ बारिश आओ है तो फिर जैसे टिंडे की हम बात करें, पीली पीली एकदम से छोटी छोटी सी टिक्की सी उस पर हो जाए, बेडंगे हो जाए, जो बाजार भाव है वो उसका हमने घाट मिले। और भाई देखो जो जल भराव की समस्या है, उड़ भाई जल निकासी का जो प्रबंधन है, नालियाँ बना रखी है तो नालियाँ तो पानी बारिश का भी उसमें रुकना नहीं चाहिए, और जल स्तर अपना जांच के अगर बढ़िया खेत है तो उड़ थोड़ा सा जो हमारी सब्जी फसलें हैं उड़ भाई ना लगावें। भाई इसमें रोग और कीट नियंत्रण की हम बात करें तो फंगस से बचाव के लिए लगातार बारिश और नमी के कारण जड़ सड़ना इसमें शुरू हो जाए, तना गलन इसमें जैसी बीमारी आम हो जाए हैं, इसमें रोकने खातर खेत की तैयारी के समय पर देखो भाई हर बार कहा जाए बीज उपचार है वो भाई करो, और जो भी फंगिसाइड जिस तरह के भाई थायोफिनेट है, मिथाइल है, कार्बेंडेजिम है, इनका प्रयोग भाई कर सके हैं। अगर कोई रस चूसने वाले कीड़े की समस्या हमने दिखा है तो भी देखो सब्जी फसल में सारे रुका पाट रहा है भाई, जो जितना भी वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स की हम बात करें, फल

0: भाई ऑर्गेनिक का प्राकृतिक जो खेती बाई करें हैं, तो उनके जो बाजार भाव हैं वो भी हमने अच्छे मिले हैं। तो इसके लिए जो नीम पे आधारित दवाई है, निमबिस्टीन है, अचूक है, ये हम इस्तेमाल कर सकें। नहीं तो फिर देखो वो बुजुर्ग कहा करते बोला भी आम ने मोड़ी जामण तीनू पाकर सामण। तो ये जो मौसम है, इवन अपने नीम के पेड़ की बात करा, कोहरा आना शुरू हो गया तो उसके जो पत्ते हैं, जड़े हुए जो फल हैं, उन गला के सड़ा के, या फिर तो और भी देसी तरीके, गौमूत्र है, लस्सी है, पहले पसरकंडाई के जो ढींढरे या ओक ट्री के जो पत्ते हैं, उन हम इसमें काम में ले सके हैं। और बहुत ज़रूरी है, हर साल हम देखने लग रहे हैं कि जो बुजुर्ग हैं ये कभी नाज का जो कणा है वो ख़त्म हो गया, और उसका कारण ये होगा भी हमने ज़्यादा जो रासायनिक छिड़काव हैं, रासायनिक खादें हैं, उनका हमने बहुत दे मार प्रयोग करे है। किसी डाल का भी जो यंत्र था, जो बीपी मापन की हम बात करा, शुगर चेक करना, कुछ नहीं होता था, सब बिल्कुल सीधा शरीर, सब अपना 70 साल की एज तक भाई हल जोड़िया करते। और उसके कारण ये हो गए कि जो हमारे फास्ट फूड का दौर है, या फिर सब्जियां में जो अंधाधुंध रसायन हम डाल रहे हैं, तो जो भी भाई अपना सब्जी हम छिड़काव करें, पहले सारे फल तोड़ के धो के साफ करके बाजार में बेचें, उसके बाद अड़की सी जो दवाई है, जिस तरह मेलाथियन है, घनी हम देखा भाई कोई रसूसन वाले कीड़े मिर्च में या फिर इसमें ज़्यादा हो जाए, तो उसके लिए मेलाथियन जो दवाई है वो भाई इसमें इस्तेमाल कर सके हैं। और अड़का फुलका पानी का वैसे फुहारा हम दे दें तो भी इसमें बचाव रहेगा। बाकी भाई जो हमारी बेल वाली सब्जी फसल है, उनमें किसी की डाल की ऊपर तक जो हम यूरिया खाद डाल रहे हैं वो इसमें नहीं डालनी चाहिए। जड़ती भी उसके जो नीम पाधारित जो दवाई है उनका हम चुनाव करें, और पानी जल निकासी हम करते रहें। जितना भी इस मौसम में निलाई गुड़ाई होगी, खरपतवार नियंत्रण हम करेंगे, क्योंकि इस मौसम में कई तरह के जो खरपतवार है, सांटी है, कोंदरा है, या फिर भाई कई तरह की बेल इसमें हो जाए हैं, और कई तरह के जो खरपतवार हैं वो इसमें जाम जाओ, वो हम निकालते रहें, नुड़ाई गुड़ाई करते रहें। जितने भी हम खेत में साफ सफाई रखेंगे, नुड़ाई गुड़ाई करेंगे, उतनी जो हमारी सब्जी फसल है वो कीड़े से भी बची रहेंगी, और वे बीमारियां से भी बची रहेंगी, हवा का संचार भी इसमें वो है, और इसमें मिट्टी की जो उल्टा पलटी है वो भी इसमें भाई नीचे परत खुल जाए हैं, ऑक्सीजन उसमें पहुँचाओ है। तो भाई इसके लिए बस ये है कि अपना जरते भी उसकी नुड़ाई गुड़ाई करें, हल्की फुल्की छिड़काव हम करते रहें, समय पर संभालते रहें, और ताज़ा फल तोड़ के अपने मंडी में लेके जाऊँ। गर्मी तो बचाने खातर शाम के समय पर आली बोरी ढक के थोड़ा बहुत पानी का छिड़का इन पर दे दें। तो भाई ये कुछ मोटी मोटी बातें, इनका हम ध्यान रखें तो सब्जी फसल से बढ़िया देखभाल करके अच्छी पैदावार हम ले सकें। कृषि की बातों में भाई इतना है, आपका दिन शुभ हो।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि की बातें, आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। हमारा अगला कार्यक्रम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
2: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां स्वीय समकक्षया सानेताकाई चेत्यनया सह वार्षिक शिखरसम्मेलन स्तरीयां वार्तां करिष्यति। शिखरसम्मेलनमिदं उभाभ्यां पक्षाभ्यां द्वैपाक्षिक सहयोगं समीक्षितुं सुदृढीकर्तुं सहैव पारस्परिक हिताय क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु विचाराणां आदान प्रदानं कर्तुं अवसरं प्रदास्यति। द्वयोः प्रधानमन्त्रिणोः मध्ये संवादानन्तरं नैकेषां सन्धिपत्राणाम् आदानप्रदानं भविष्यति। जापानस्य प्रधानमन्त्री भारतस्य त्रिदिवसीययात्रायै ह्यः सायं नवदिल्ल्यां सम्प्राप्ता। प्रधानमन्त्री ताकायची इत्येतस्याः इयं भारतस्य प्रथमा आधिकारिकयात्रा वर्तते। विदेशमन्त्रालयेनोक्तं यत् इयं यात्रा भारतजापानयोः मध्ये विशेषरणनीतिकवैश्विकसहमतिम् अग्रेवर्धनदिशि महत्वपूर्णा वर्तते। सामाजिकसञ्चारपटले एकस्मिन् सन्देशे श्रीमोदिना लिखितं यत् असौ जापानस्य प्रधानमन्त्रिणा सह व्यापकचर्चायाः आशां करोति, यया भारतजापानयोः विशेषरणनीतिकवैश्विकसहमतिम् इतोऽपि गहनं भविष्यति। दिल्ल्यां वसन्तकुञ्जक्षेत्रस्य नेल्सन् मण्डेलामार्गेण सह द्वारका द्रुतमार्गं संयोजयन् दिल्लीनगरे 48.1 AE राष्ट्रियराजमार्गस्य कृते 6-मार्गीयसुरङ्गस्य निर्माणाय ह्यः प्रशासनेन अनुमतिः प्रदत्ता। राष्ट्रियराजधान्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचनाप्रसारणमन्त्री अश्विनीवैष्णवः अवदत्

0: यत् उत्तर प्रदेशे राष्ट्रिय राजमार्गस्य चतुस्त्रिंशत् इत्यस्य सप्तदशांशोत्तर सप्तदशाधिकैकशत किलोमीटर मितस्य सुदीर्घस्य कानपुर कबराई खण्डस्य चतुर्मार्गीय अभिगमन नियन्त्रित मार्गस्य निर्माणमपि प्रशासनेन अनुमोदितम् अस्ति, यत्र संरचनाः षड् मार्गाणि यावत् सुलभतया विस्तारयितुं परिकल्पिताः सन्ति।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: विकसित भारत जी राम जी अधिनियमस्य पञ्चविंशत्यधिक 2000तमस्य अन्तर्गतं वर्धितानि पारिश्रमिक मूल्यानि ह्यः आरभ्य समग्र देशे कार्यान्वितानि। ग्रामीण विकास मन्त्रालयेन प्रसारितायाः अधिसूचनायाः अनुसारं सर्वेषु राज्येषु केन्द्र शासित प्रदेशेषु च पारिश्रमिक अनुपातेषु श्लाघनीया वृद्धिः कृता। मन्त्रालयेन प्रोक्तं यत् प्रथमवारं प्रतिदिनं 300 रूप्यकाणां कश्चन पारिश्रमिकानुपातः निर्धारितः। अनेन सुनिश्चितं भविष्यति यत् देशस्य कस्मिन्नपि भागे अधिसूचितः न्यूनतम पारिश्रमिकः अस्मात् स्तरात् अल्पं न भवेत्। ग्रामीण विकास मन्त्रालयेन प्रतिपादितं यत् अयम् अधिनियमः प्रत्येकं वित्तीय वर्षे 25 उत्तरैकशत दिनानां सवेतन वृत्तेः प्रतिभूतिं प्रदाय ग्रामीण भारतस्य सशक्तीकरणं विधास्यति। दिल्ल्याः मुख्य निर्वाचनाधिकारिणः कार्यालयेन संसूचितं यत् ह्यः पर्यन्तं राष्ट्रिय राजधान्यां 32,000+ प्रपत्राणाम् अंकीकरणं सम्पूर्णम्। दिल्ल्यां मतदातृसूच्याः विशेष गहन संशोधनस्य भागरूपेण प्रायः 99,000+ प्रपत्राणि वितरितानि। सम्प्रति दिल्ल्यां नैर्वाचनिक गणना प्रपत्राणां प्रतिगृहं वितरणं प्रचलति। विश्वस्य प्रमुखा कन्दुक क्रीडा प्रतियोगिता ड्यूरंट कप इत्यस्य 35,100तमं संस्करणं मासस्यास्य 25 दिनांकात् कोलकातायाम् आरप्स्यते। इति वार्ताः।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
1: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5,00,000 लोगों के दो तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल है। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय दान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री तकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति

0: और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता व्यक्त की। 12वीं उप समिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलू, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डीजी रोवर की शुरुआत की है। ये अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। अभियान में हर तहसील में भूमि सीमांकन और मापन से जुड़े मामलों का समाधान नई तकनीक से किया जाएगा। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में अब तक 32,000 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटीकरण किया जा चुका है। राष्ट्रीय राजधानी में अब तक करीब 9,99,000 प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। सरकार ने रक्त संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था आज जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से रवाना हो चुका है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जत्थे को रवाना किया। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गो से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम 0-0 से बराबरी पर हैं। डूरंड कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलोंग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। अटलांटा में खेले गए मुकाबले में कप्तान हैरी केन ने मैच के अंतिम 15 मिनट में 2 गोल दागकर इंग्लैंड को रोमांचक जीत दिलाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi will hold annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi today. The summit will provide an opportunity for both sides to review and strengthen the full spectrum of bilateral cooperation as well as exchange views on regional and global issues of mutual interest. Several MOUs are expected to be exchanged following the talks between Prime Minister Modi and Prime Minister Takaichi. The Japanese Prime Minister arrived in New Delhi last evening on a 3-day visit to India. This is the first official visit of Prime Minister Takaichi to India. Meanwhile, Prime Minister Modi said he is looking forward to the wide-ranging discussions with Japanese Prime Minister Sanae Takaichi today that will further deepen India-Japan's special strategic and global partnership. Mr. Modi said he is delighted to host her on her first visit to India. Mr. Modi said that through their joint efforts, India and Japan will continue to advance peace, stability and prosperity in the Indo-Pacific and beyond. The government has issued a notice to Meta regarding rollout of the username feature on WhatsApp in India. Sources said the Ministry of Information and Technology directed Meta to furnish a detailed explanation on the usernames feature within 3 days. The ministry also directed Meta not to roll out the usernames feature until consultation on the matter is over. Lieutenant Governor Manoj Sinha, Jammu and Kashmir, flagged off the first batch of pilgrims of the annual Sri Amarnath Ji Yatra from Bhagwati Nagar Base Camp in Jammu this morning. Our correspondent reports that the 57-day annual pilgrimage officially commences across the twin tracks of Kashmir tomorrow and is scheduled to conclude on 28th of August. The first convoy of pilgrims was dispatched from Jammu early in the morning under tight security. Health Minister Jag

रात 10:30 बजे से सुनिएगा द ओवल क्रिकेट ग्राउंड लंदन में इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के मध्य खेले जाने वाले आईसीसी महिला T20 क्रिकेट मैच के दूसरे सेमीफाइनल मैच का आंखों देखा हाल। कार्यक्रम कंट्री वाइड रात 9:30 बजे और रात 10:45 बजे कार्यक्रम इनसाइट्स प्रसारित किया जाएगा। ये सभी कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

विविधा कार्यक्रम आप सुनेंगे अब से थोड़ी देर बाद सुबह 7:15 पर, जिसके अंतर्गत आज आपको सुनवाएंगे सोशल मीडिया के दौर में पत्रकारिता के क्षेत्र में होते बदलाव विषय पर एक भेंट वार्ता। भेंट करता है यज्ञ।

शाम 6:20 पर कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे कपास फसल की रोगों से रक्षा विषय पर डॉक्टर नरेश कुमार यादव से की गई बातचीत।

0: मलेरिया रोग कारण व उपचार विषय पर डॉक्टर अनुपम मित्तल के साथ की गई बातचीत आप सुन सकेंगे ग्रामीण संसार कार्यक्रम में, समय शाम 7 बजे। सुगम संगीत, ये कार्यक्रम प्रसारित होगा रात 8:25 पर। सुबह 8:30 पर लोक संगीत कार्यक्रम में गायक कलाकार होंगे राम निवास शर्मा। फिल्म संगीत का आप आनंद ले सकेंगे सुबह की सभा में सुबह 9 बजे फोन इन कार्यक्रम हेलो रोहतक में, दोपहर 1:10 पर कार्यक्रम चित्रपट संगीत में, शाम 7:30 पर कार्यक्रम फिल्म संगीत के तहत और रात 9:15 एक फिल्म से कार्यक्रम के अंतर्गत रात 10 बजे सुनिएगा मन चाहे गीत कार्यक्रम में। ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा जिसमें आपको सुनवा रहे हैं सोशल मीडिया के दौर में पत्रकारिता के क्षेत्र में होते बदलाव विषय पर शंभू दत्त और ओपी पाल जी के साथ की गई भेंटवार्ता, भेंटकर्ता यज्ञ दत्त मिश्र।
1: तो जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल का जो बदलता दौर है, बदलता दौर से हमारा तात्पर्य है कि आज हर क्षेत्र में बदलाव हो रहा है, खासतौर से IT के क्षेत्र में, खासतौर से बहुत सारी विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में, और पत्रकारिता का क्षेत्र है जो वो भी अछूता नहीं रहा है। आप देख रहे हैं कि पहले सिर्फ प्रिंट मीडिया हुआ करता था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के गिने चुने साधन होते थे जिसमें रेडियो टेलीविज़न आता था, दूरदर्शन आता था, आजकल बहुत सारे चैनल्स हैं, उसके अलावा सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पर तो पत्रकारिता मतलब पत्रकार बनने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी को भी इख्तियार है कि वो अपनी कोई भी पोस्ट या कोई भी जो चीज़ है उसको डाल सकता है। हालांकि इसके दुष्प्रभाव भी हैं, फ़ायदे भी हैं, उन पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आज इन्हीं सब पर पहलुओं पर चर्चा करेंगे कि बदलते दौर में जो पत्रकारिता का युग है ये किस तरह से प्रभावित हो रहा है, और ख़ास तौर से सोशल मीडिया के युग में। हमारे साथ आज स्टूडियो में शंभू भद्र जी हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, और दूसरे हमारे OP पाल जी हैं, आप भी काफ़ी लंबा इनका 20 साल का लगभग अनुभव है पत्रकारिता के क्षेत्र में, और ग्रास रूट से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक की पत्रकारिता आपने की है, आपने लिखा है, समझा है पत्रकारिता को। तो शंभुनाथ जी, आपसे शुरुआत कर लें कि क्या महसूस करते हैं आप लोग, कुछ छिनता हुआ सा नज़र आ रहा है आपके हाथ से? पहले तो आपके हाथ में कलम होती थी।

0: में क्या लिखा हुआ है, तो सोशल मीडिया की वजह से सूचना आपको बहुत तेजी से मिल रही है, कि जो सूचनाएं कल सुबह आपको मिलती थी वो सूचनाएं अभी तुरंत के तुरंत मिल जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अखबार के प्रभाव में या अखबार की विश्वसनीयता में कोई कमी आई
1: कमी
0: है।
1: आई।
0: हाँ, हुआ ये है कि उल्टे सोशल मीडिया की जो विश्वसनीयता है उस पे सवाल ये हो गए हैं कि इतने ज़्यादा फेक न्यूज़ हैं, इतने ज़्यादा चीज़ें हैं जिसको लेकर कि कहीं ना कहीं से ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया की वजह से पत्रकारिता की जो विश्वसनीयता है उसको एक सवाल उठता हुआ दिखता है, कि जो विश्वास नहीं है, फेक न्यूज़ है, गलत खबर होगी, उसको लेकर के लोगों के मन में कई तरह की आशंकाएं होती हैं। तो सोशल मीडिया का जो फ़ायदा ये हुआ कि जल्दी सूचना लोगों को मिलने लगी, लेकिन उसका दुष्प्रभाव ये हुआ है कि जो सूचना की जो सत्यता है वो सत्यता पे सवाल है, कि इतने सारे फेक न्यूज़ आपके सामने होते हैं, इतने सारी चीज़ें होती हैं जिसको लेकर कि आप तय नहीं कर पाते हैं कि ये न्यूज़ सही है या गलत है। तो अभी सोशल मीडिया को अपनी विश्वसनीयता स्थापित करने में समय लगेगा, अभी सोशल मीडिया उस दौर पे नहीं आया है कि अपना जो स्टैंड है, अपना जो एक जो उनकी ऑथेंटिसिटी है उसको लेकर के जनता या पब्लिक या सूचना के जो भी हमारे कंज्यूमर्स हैं, उपभोक्ता हैं, वो उनको उस तरह से विश्वास नहीं कर रहा है। देखिए कि जब प्रिंट था पहले, उसके बाद जब रेडियो और टीवी आए तो ऐसा लगा कि रेडियो और टीवी आने से प्रिंट पे असर पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि टेलीविज़न आने से और रेडियो के आने से अखबार का सर्कुलेशन बढ़ा, क्योंकि टीवी से लोगों को सूचनाएं मिलती थी कि आज ये बड़ी बात है, ये खबर है, और अखबार उसको विस्तार देता था सुबह की, उसमें डिटेल में खबर जाती थी। अभी भी वही दौर है कि सोशल मीडिया के आने से अखबार और टीवी को सपोर्ट मिल रहा है, ना कि उसके उसके स्पेस में कोई कमी आ रही है या उसकी जो उसका जो विश्वास है लोगों का उसमें उस तरह से कमी नहीं आएगी, और आने वाले वक्त में भी प्रिंट की जो अहमियत है वो हमेशा बनी रहेगी, उसमें कोई ज़्यादा आपको, हाँ, सर्कुलेशन जो पढ़ने की आदत है वो कम हुई है सोशल मीडिया की वजह से, तो अखबार का जो पीडीएफ फॉर्मेट है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में जाकर के बढ़ेगा। अखबार के जो .com जो वेबसाइट है वहाँ लोगों की पहुँच बढ़ेगी, लेकिन लोग विश्वास करेंगे और सोशल मीडिया सपोर्ट करेगा, न कि सोशल मीडिया कोई बाधा बनेगी।
1: गोपीपाल जी, कितना सहमत हैं आप शंभुभद्र जी
2: मैं
1: से?
2: शंभू जी की बात से बहुत सहमत हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया आने के बाद पत्रकारिता आसान भी हुई, लेकिन उसके सामने चुनौतियाँ भी हैं। आप तुरंत खबर आपको मिलेगी कि आप देखें विश्वास नहीं करोगे, उसको पुष्टि करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने पिछले दिनों काफ़ी बवाल भी हुए सोशल मीडिया के, क्योंकि सोशल मीडिया पर वायरल होते ही चारों तरफ से हर क्षेत्र में अफवाह का दौर भी शुरू हो जाता है। इस तरह की इन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। उनकी पुष्टि करने के बाद ही सोशल मीडिया पर, इसका मतलब ये है कि सोशल मीडिया का मतलब ये नहीं कि आपको पूरी आज़ादी है, कुछ भी आप डाल दो उसको, उसको कुछ नियंत्रण करने के लिए उसके लिए सेंसरशिप या कोई नियम भी लागू है वैसे, लेकिन उस तरह नहीं है जिस तरह करनी चाहिए। कभी कभी जो है उसमें रेडियो टीवी पे ही गलत सूचना होती है, सिर्फ वो उसका सोशल मीडिया पे जो प्रसारण हो रहा है उसकी वजह से है वो जो वायरल हो रहा है। इसे रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाभ और हानि दोनों साथ साथ चलती हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पत्रकारिता करना आसान हुआ है, लेकिन उसको विस्तार देने के लिए आपको अपनी जो संपर्क हैं या जो भी है उसको बढ़ाना पड़ेगा, ताकि ऐसा नहीं कि उसी को विश्वास करके छाप दे। पुष्टि करो, उसकी कंफर्म करो, वर्जन लेना संबंधित जिससे डिपार्टमेंट की है या किसी भी, उसे आप वर्जन लेके कंफर्म करोगे, क्योंकि इससे जो है समाज का ताना बाना भी बिगड़ता है। जितना आसान हुआ हमारा सोशल मीडिया से पत्रकारिता, लेकिन उसको नुकसान भी हो रहा है उसको।
1: शंभुवती जी, नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है? क्योंकि पब्लिक या जनता या जो आम लोग हैं वो तो ये समझते हैं कि उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है और अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए उन्हें किसी विशेष माध्यम के

0: का मोहताज नहीं रहना पड़ रहा है। लेकिन यकीनन हर चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होता है, क्योंकि वो अनुभवहीन हैं, उनको ये नहीं पता कि सार्वजनिक रूप से आप क्या चीज़ प्रसारित प्रकाशित कर सकते हैं, किस तरह का कंटेंट डालना है, किस तरह का कंटेंट नहीं डालना है। तो ये जो फिल्ट्रेशन है, इसकी आवश्यकता है। हालांकि जो सोशल मीडिया के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी इतना बारीकी से उस पर नज़र नहीं रख पाते, तो बहुत से इसके दुष्परिणाम भी होते हैं, और वो भी देखने में आते हैं कि फिर उसका रिजल्ट ठीक नहीं होता। तो क्या आप इसमें कहेंगे?
1: देखिए, बात सही है कि सोशल मीडिया की में फेक न्यूज़ का जो पूरा जाल है, उसकी वजह से आम आदमी को विश्वास करना आम लोगों के माइंडसेट में आ गया है कि कोई खबर अगर उनके पास आती भी है तो वो अब तुरंत विश्वास नहीं करते हैं, वो कन्फर्मेशन चाहते हैं। दरअसल में क्या है कि टेलीविज़न हो या अखबार हो, जो भी मीडिया हाउसेज हैं, जब कोई खबर वो देते हैं तो उस हाउस को ये एक ऑथेंटिसिटी के साथ खबर देनी होती है कि उस खबर का सोर्स क्या है, कहाँ से खबर जनरेट हुई। उन्हें अपना सोर्स बताना होता है, और ऑथेंटिक सोर्स जब कंफर्म होता है तभी ही मीडिया हाउसेज खबर दे पाती है। लेकिन सोशल मीडिया पे ऐसा नहीं है, क्योंकि जो न्यूज़ देने की जो प्लेटफॉर्म है वो काफ़ी फैला हुआ है, काफ़ी उसमें लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं, ग्रुप्स हैं, जो कि अलग से बना करके अपना न्यूज़ दे रहे हैं या कोई बात है वहाँ पे कर रहे हैं। ये बात सही है कि सोशल मीडिया के आने से आम आदमी को अपनी अभिव्यक्ति का प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा मिला है, और बहुत ज़्यादा लोग अपनी बात को कह पाते हैं। लेकिन जो जहाँ तक आप न्यूज़ की जाएंगे और सूचना के लेवल पे जाएंगे, तो वहाँ पे भी खतरा खतरा अभी है कि वो सूचना सही है कि नहीं है। और जैसे ओपी पाल जी ने कहा कि नुकसान होते हैं, तो आप देखिए कि भारत ही नहीं, वर्ल्ड वाइड फेक न्यूज़ की वजह से कितनी ज़्यादा, अभी कभी सरकार की बदनामी, कभी आम पब्लिक में हिंसा फैल जाती है। अलग अलग रोहिंग्या का केस आपने देखा होगा, अपने ही देश में मॉब लिंचिंग का केस कई बार हो जाता है। आप अमेरिका के इलेक्शन को देखिए, तो वहाँ पे फेक न्यूज़ को लेकर के ट्रंप कितना परेशान रहा करते थे। तो कहने का सेंस कि फेक न्यूज़ की वजह से कई चीज़ें गड़बड़ हो जाती है, कि जो सूचना जानी चाहिए जिस रूप में, उस रूप में नहीं जा पाती है। तो सोशल मीडिया अच्छा है, सूचना के संप्रेषण के हिसाब से, रफ्तार के हिसाब से आपको बहुत जल्दी सूचनाएं मिल जाती है, लेकिन उसमें जो नियमन की, रेगुलेशन की जो ज़रूरत है, उस पे अभी सरकार, एक अपने पास आईटी एक्ट है, आईटी एक्ट 2000, लेकिन सोशल मीडिया के रेगुलेशन के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, जहाँ पर कि आप कम से कम जो अभिव्यक्ति, किसी को कुछ कहना हो तो वो ठीक है, लेकिन जब आप न्यूज़ संप्रेषण कर रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए, तो वो एक ऑथेंटिक सोर्स से कंफर्म न्यूज़ ही दे पाए, और फेक न्यूज़ और तमाम चीज़ जो वायरल की जाती है जानबूझ के, एक अफवाह फैलाने के लिए या मिसगाइड करने के लिए पब्लिक को, तो उसको चेक एंड बैलेंस किया जाए, इसके लिए एक रेगुलेटरी सिस्टम बहुत ज़रूरी है।
0: रेगुलेटरी सिस्टम की ज़रूरत है क्या ओपीपाल जी? क्योंकि प्रिंट मीडिया के लिए तो रेगुलेटरी सिस्टम कुछ भी नहीं था, और ख़ास तौर से आजकल जैसे प्राइवेट चैनल्स हैं उनके लिए भी कोई रेगुलेटरी सिस्टम की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन प्रोफेशनलिज्म ज़रूर उसमें इन्वॉल्व था, वो प्रोफेशनल हाथों में चीज़ थी। अब अनाड़ियों के हाथ में है, वो कुछ भी चाहें, मतलब कुछ भी
1: सही बात
0: प्रकाशित कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ मुझे दिखता है कि ज़रूरत है सावधानी
1: बिल्कुल, बहुत
0: बरतने की।
1: ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसका दुरुपयोग किया सोशल में, क्योंकि आपने देखा हो पहले अखबार, पुराने ज़माने में अखबार निकलते थे, साप्ताहिक निकलते थे, फिर धीरे धीरे मासिक किया, क्योंकि संसाधन नहीं थे, अक्सर भर भर के कर रहे थे। कंप्यूटर तो बाद में आया, सी के बाद में आए हैं, क्योंकि हमने भी उस ज़माने में की जब हमारे पास कुछ नहीं था, कागज़ पर लिखना गलत हो गया तो फाड़ दो,
0: फाड़ दो, दोबारा लिख दो।
1: दोबारा लिखो। आज कंप्यूटर है, कम से कम उस पर वही एडिट तो हो जाता है,
0: बिल्कुल।
1: इतना सुविधा। फिर धीरे धीरे फैक्स आया,
2: फैक्स से चलो फोटो जाते, अब फोटो भी डिजिटल हो गए। आप यकीन मानिए, कहीं
0: जी
2: दूर दराज का संवाददाता होता था, कोई कोई बड़ी घटना हो गई रात को, एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, उसको फोटोग्राफ चाहिए, बड़ा मामला हो गया, तो आपका हेड ऑफिस पहुँचाना फोटो, क्योंकि कोई सिस्टम नहीं था,
0: जी
2: कंप्यूटर नहीं था, कुछ नहीं था, नेट नहीं था, तो उसको गाड़ी करके स्पेशल किस भी संसाधन से फोटो बनवाता था वो लैब में,
0: बिल्कुल,
2: फिर जाता था। कितना खर्च होता
0: बहुत
2: था,
0: खर्चा है, वो भी व्यक्तिगत
2: अब
0: रूप से
2: वो
0: उसको
2: भी
0: ले जाना पड़ता
2: व्यक्तिगत रूप से ले जाना और फिर उसको टाइम से पहुंचाना,
0: पहुंचाना, अगर नहीं पहुंचेगा तो
2: हाँ तो वो छप नहीं पाएगा। तो इस तरह के झेले हमने
0: बिल्कुल
2: उस समय,
0: बिल्कुल। और एक फोटो की बड़ी कीमत होती
2: बहुत
0: थी,
2: कीमत होती है।
0: क्योंकि टाइमली फोटो जो मिल जाए न्यूज़ के साथ।
2: मैंने सर भुगत सिर्फ अपना कुछ अनुभव शेयर कर रहा हूँ मैं आप श्रोताओं के सामने, कि मैंने ऐसे बहुत मौके किए हैं। पता चला प्रिंट छूटने वाला पेज लुकवा रहे कि गाड़ी, लंबे सफर, पहले रोड भी नहीं थे, संसाधन आपका रास्ते भी नहीं थे, कितनी
0: जी
2: जल्दी, अब तो आप बहुत जल्दी पहुंच
0: पहुंच
2: जाओगे।
0: जाते हो, ठीक है।
2: तो इस तरह की जो है संचार व्यवस्था जो है इसको फायदा बहुत हुआ है,
0: जी
2: लेकिन नुकसान है उसको, लेकिन उसको नियंत्रण करने की जरूरत है,
0: बिल्कुल
2: रोका जा
0: बिल्कुल
2: सकता है,
0: बिल्कुल।
2: असंभव नहीं है,
0: अब
2: संभव है।
0: ये शंभुवत जी, अब ऐसा है, सोशल मीडिया को हम बंद तो नहीं कर सकते, और ना ही आज़ादी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसको भी हम कहीं पे कर सकते, क्योंकि हम एक प्रजातांत्रिक देश में रहते हैं और इसको सफल बनाना है। हालांकि प्रश्न चिन्ह वहाँ लगता है कि बड़ा और सफल में थोड़ा सा अंतर, लेकिन अब ये है कि आप इसका रेमेडी क्या देखते हैं, इसका मतलब इसका इलाज क्या है, कि देखिए चलती रहें चीज़ें लेकिन वो कंट्रोल में रहें।
1: देखिए, आपने सही कहा, थोड़ा मैं यहाँ पे करेक्ट कर दूं। पहले जो बात कर रहे थे कि प्रिंट मीडिया और टेलीविज़न के पास रेगुलेशन नहीं है, तो ऐसा नहीं है, रेगुलेशन है अपने पास। प्रिंट मीडिया को कंट्रोल करने के लिए बाकायदा सिस्टम बना हुआ है। हाँ, आज़ादी है भारत में, क्या है कि लोकतंत्र है, तो भारत में मीडिया पर सरकारी पाबंदी नहीं है, लेकिन मीडिया को क्या दिखाना है या क्या छापना है इसके लिए उसके पास एक सेल्फ नियमन और उसके बाद सरकार के कुछ गाइडलाइंस हैं कि आप उससे बाहर जाकर के कोई भी न्यूज़ नहीं दिखा सकते हैं, गलत कोई जानकारी किसी को नहीं दे सकते हैं। जब कोई सोर्स से प्रूफ जानकारी है, वही जानकारी आप अपने संचार माध्यम से आप दे सकते हैं, अपने मीडिया के माध्यम से आप दे सकते हैं।
0: जी
1: तो एक तो वहाँ पे है कि थोड़ा रेगुलेशन, दूसरा कि सोशल मीडिया की जो का जो विस्तार है, और अभी जो OTT प्लेटफॉर्म आया है, तो उसकी वजह से जितने सब तरफ से देखेंगे सूचना का जो संप्रेषण शुरू हुआ है, आप सोशल वेबसाइट्स हैं वहाँ पे बहुत सारी जानकारियाँ हैं, सोशल मीडिया के थ्रू आप व्यक्तिगत तौर पे बहुत सारी जानकारियाँ फ्लो करते हैं, चैटिंग ब्लॉग से या चैटिंग साइट से जो भी आप करते हैं। तो इसको जो इसमें एक जो बड़ी बात है कि अगर आप चाहते हैं कि सोशल मीडिया ऑथेंटिक बने, तो इसके लिए एक चेक एंड बैलेंस ये होगा कि जो भी लोग न्यूज़ में आ रहे हैं,
0: जी
1: जो भी लोग न्यूज़ देना चाहते हैं, तो न्यूज़ देने के लिए या न्यूज़ प्रसारित करने के लिए सरकार की तरफ से एक मिनिमम गाइडलाइन हो कि जब इस कोरम को आप पूरा करेंगे तभी ही न्यूज़ आप देंगे,
0: जी
1: और इस कोरम को अगर आप पूरा नहीं कर रहे हैं तो आप फिर न्यूज़ मत दीजिए। बाकी जानकारियां जो अलग तरह की जानकारियां
0: हाँ,
1: हैं
0: उनको आप दे
1: वो
0: सकते,
1: आप दीजिए, लेकिन न्यूज़ को लेकर के चीज़ें
0: बिल्कुल
1: हो, और
0: बिल्कुल
1: अफवाह को अगर गलत कोई जानकारी फॉरवर्ड कर रहा है
0: जी
1: उसके लिए भी सरकार ने गाइडलाइन बनाई है कि कोई 5 से ज़्यादा नहीं कर सकता, 2 से ज़्यादा नहीं कर सकता, किया जाएगा तो सबसे सोर्स को पकड़ा जाएगा। तो ये सब जरूरी है,
0: लेकिन पांच
1: और
0: तो कर सकता है।
1: नहीं 5 फॉरवर्ड कर दिया लेकिन गलत अगर दे रहे हैं तो सोर्स पकड़े जाएंगे, जगह अगर कहीं जांच शुरू हो गई। अभी
0: जी
1: आपने देखा कि गूगल के साथ मामला हुआ, व्हाट्सएप के साथ मामला हुआ, फेसबुक के साथ मामला हुआ, सारे बहुत
0: जी
1: सारे मामले गए
0: जी
1: हैं,
0: जी जी
1: अदालत में गए हैं फेक न्यूज़ की वजह से, गलत जानकारी की वजह से। तो आने वाले वक्त में सोशल मीडिया को दो तरीके से कंट्रोल करिए, एक तो सेल्फ रेगुलेशन
0: जी
1: और दूसरा जो है सो गवर्नमेंट का एक मिनिमम गाइडलाइन होना चाहिए,
0: चाहिए,
1: ताकि सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जा सके और
0: बिल्कुल।
1: फेक न्यूज़ पे लगाम लगाई जा सके।
0: तो निष्कर्ष यही है कि चीज़ें अच्छी हैं, तकनीक है हमारे हाथ में है, लेकिन इसका हमें सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं। मसलन कि कोई पर्सनल वेंडेटा है, कोई व्यक्तिगत चीज़ को हम उसमें ना उछालें, रूमर को खबर न बनाएं, और अफवाह को जो है

0: ना करें, और हमारी पब्लिक को भी थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा कि अगर वो न्यूज़ का समझें कि उसका उद्देश्य क्या है, भाई न्यूज़ क्या, वास्तव की न्यूज़ किस तरह से होती है। तो इतनी जागरूक जब पब्लिक हो जाएगी तो थोड़ा सा सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम खुद ही हो जाएगा, ना डालेंगे और ना ही उसको कोई इनक्रेज करेगा। तो आप सबका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा, जिसके अंतर्गत आपने सुनी सोशल मीडिया के दौर में पत्रकारिता के क्षेत्र में होते बदलाव विषय पर श्री शंभू दत्त और ओपी पाल जी के साथ की गई भेंटवार्ता। भेंटकर्ता थे यज्ञ दत्त मिश्र। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर प्रस्तुत है कार्यक्रम सुबह सवेरे।

श्रोताओं, जब भी कोयल की आवाज़ हमारे कानों में पड़ती है, हमारा मन खिल उठता है, आनंद से भर जाता है। वहीं जब कभी कौवे की आवाज़ सुनते हैं तो कान बंद करने का मन करता है। कहने का तात्पर्य ये है कि मीठी बोली, मीठे शब्द हमारे मन को भाते हैं, वहीं कर्कश आवाज़, कर्कश शब्द सुनना किसी को पसंद नहीं होता। हमारे द्वारा बोले गए शब्द सिर्फ हम पर प्रभाव नहीं डालते, बल्कि हमारे आसपास हमारे अपनों को भी प्रभावित करते हैं। हमारे जीवन में होने वाली काफ़ी घटनाएं हमारी भाषा पर ही निर्भर करती हैं, और अपने जीवन में होने वाली अप्रिय घटनाओं को काफ़ी हद तक हम अपने शब्दों से रोक सकते हैं। हमारे शब्दों की कीमत होती है, यानी कीमत से हमारा तात्पर्य हमारे कहे गए शब्दों का एक महत्व होता है, उनकी एक अहमियत होती है। तभी तो कहा गया है कि शब्दों का इस्तेमाल सोच समझ कर करें, क्योंकि वे बहुत शक्तिशाली होते हैं। पहले तोले फिर बोले, क्योंकि इनका प्रभाव बहुत दूर तक जाता है। हमारे शब्द हमारे विचारों, भावनाओं और इरादों को व्यक्त करने का एक माध्यम है। जो व्यक्ति शब्दों का इस्तेमाल करना सीख जाता है, वो जीवन जीने की कला भी सीख जाता है। हमारे द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द किसी को प्रेरित कर सकते हैं, किसी को खुशी दे सकते हैं, वहीं किसी के जीवन में तनाव का कारण बन सकते हैं। तो अपने शब्दों का इस्तेमाल हमें बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। संत कबीर भी कहते हैं, उन्होंने भी कहा है कि एक शब्द सुख राय है, एक शब्द दुख रास, एक शब्द बंधन करे, एक शब्द गलफास। हमारी वाणी में वो ताकत है जो हमारे पूरे जीवन को बदल सकती है। इसीलिए कहा गया है कि हमेशा सोच समझ कर बोले, तभी हम अपने जीवन में भी शांति बनाकर रख सकते हैं और अपने आसपास के वातावरण को भी सुखमय और आनंददायक बना सकते हैं।

श्रोताओं, आज दौड़ती भागती बदलती ज़िंदगी में रोज़ नई चीज़ों से हमारा सामना होता है, हम उनसे रूबरू होते हैं और वहीं खड़ी होती है जानकार बनने की मांग। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ऑनलाइन शॉपिंग, जो नई जेनरेशन में एक बहुत बड़ा बदलाव है। कहा गया है कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं।

जाती, यानी ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। कई बार कीमती और सच्ची दिखने वाली चीज़ें वैसी नहीं होती जैसी वो दिखाई देती हैं, पर आज की वास्तविकता की बात करें तो आज की वास्तविकता कुछ और है। आज जो दिखता है वही बिकता है। आज के युग में लोगों ने इसी कथन को स्वीकार किया है। ज़्यादातर लोग अच्छे विज्ञापनों, उत्पाद के प्रतिष्ठा चिन्ह को देखकर प्रभावित हो जाते हैं और उस चीज़ को खरीद लेते हैं। दिखावे की इस संस्कृति ने समाज के विभिन्न वर्गों के बीच दूरियां बढ़ा दी हैं। ये संस्कृति मनुष्य में भोग की प्रवृत्ति को बढ़ा रही है, साथ ही शारीरिक और मानसिक तनाव भी उसे दे रही है। इसे नियंत्रित करना आज के समय की सबसे बड़ी मांग है। इसके लिए ज़रूरी है हम सब जागरूक बने, जानकार बने, यानी कोई भी चीज़ खरीदनी है तो उससे पहले उसके बारे में पूरी जानकारी लें, उसे जांचें परखें तभी खरीदें, ना कि विज्ञापनों में दिखाए गए लुभावने रूप के कारण। चीज़ों की आवश्यकता के अनुसार ही उन्हें लें। अनावश्यक चीज़ों को खरीदकर हम आर्थिक नुकसान तो भोगते ही हैं, साथ ही इनकी सफाई और दूसरे नियमों का पालन करने में भी हमें सतर्कता बरतनी बेहद ज़रूरी होती है, नहीं तो कई बार भारी जुर्माना और सजा भी हमें इससे हो सकती है। श्रोताओं, पश्चिमी चमक धमक और चकाचौंध की ये दुनिया लुभावनी तो लगती है पर जीवन में शांति नहीं देती। अगर जीवन को शांत रखना है, सुदृढ़ और सही तरीके से चलाना है तो ज़रूरी है जानकार बने। ऑनलाइन शॉपिंग करने के से हमें बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं, पर उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम उस वस्तु विषय के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी पा चुके हों, उसके बारे में पूरी तरह से जानते हो, तभी हम इसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है जागरूक होना और सतर्क होना।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाए समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: श्रोताओं, मानव शरीर भी मशीन की तरह है। जब जिस तरह से मशीन को समय समय पर सर्विसिंग, चेकिंग और फिलिंग की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह से हमारे शरीर को भी नियमित चेकअप, व्यायाम और उचित खान पान की आवश्यकता होती है। यदि हम अपने शरीर की जांच के लिए समय समय पर विशेषज्ञ के पास जाकर उसके परामर्श के अनुसार बताए गए टेस्ट करवा रहे हैं, तो हम अपने भविष्य में होने वाले अचानक बीमारियों से बच सकते हैं। इन जांचों में शरीर में खून की मात्रा, रक्तचाप, ब्लड शुगर, हड्डियों, आंखों जैसे अन्य सभी अंगों की जांच भी शामिल होती हैं। आजकल के बदलते खानपान, बदली हुई जीवन शैली के चलते बहुत सारी बीमारियों का चलन हमारे देश में चल रहा है। खून की कमी होना, अनियमित रक्तचाप होना, मधुमेह जैसी बीमारियाँ हमें सतर्क रहने की और इशारा कर रही हैं। इसी तरह से दिमागी रोगों से अगर हमें बचना है तो उसके लिए हमें मेडिटेशन ज़रूर करना होगा। आज हम अपने जीवन की सच्चाई की बात करें तो सिर्फ दौड़ना ही नज़र आ रहा है। आज बस हमें आगे बढ़ने की होड़ है और उस सब में हम सब शामिल हैं। इस दौड़ में कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है हमारा सच्चा सुख यानी निरोगी काया। अगर हम निरोग होंगे तभी हम अपने अपनों के साथ जीवन में इकट्ठी की गई इन सुख सुविधाओं का आनंद ले सकेंगे। तो अगर खुद को स्वस्थ रखना है तो समय समय पर डॉक्टरी परामर्श ज़रूर लें, साथ ही व्यायाम और मेडिटेशन ज़रूर करें।

0: इसी गीत के साथ संपन्न होता है कार्यक्रम सुबह सवेरे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सवेरे। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर। सुबह के 8 बजने को हैं, अब समाचार प्रसारित होंगे, पहले हिंदी में 8:15 पर अंग्रेजी में। समाचार हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाची के साथ आज नई दिल्ली में वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाची के साथ वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
2: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5,00,000 लोगों के 2-तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल हैं। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय दान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री तकाईची भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और

0: प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई। 12वीं उपसमिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलू, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बढ़ाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। योजना में आंशिक निकासी के नियमों को भी अद्यतन किया गया है। योजना में पारदर्शिता में सुधार और भविष्य निधि प्रबंधन को अधिक कुशल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ऑनलाइन दावों, ई पासबुक और यूनिवर्सल खाता संख्या से जोड़ने पर जोर दिया गया है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
1: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा और एक वैकल्पिक यूजर नेम को अतिरिक्त नियंत्रण के रूप में लगाया जा सकता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख रहे एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कल नए वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने अवकाश प्राप्त एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान लिया है। श्री नागेश कपूर 4 दशक से वायुसेना में हैं। उनके पास 3,500 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव है। उधर लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने थल सेना उप प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। श्री मिश्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। यह हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
2: नई व्यवस्था के अंतर्गत केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को ही पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी पंपों से ईंधन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS6 से निचले स्तर के सभी मोटर वाहनों के राजधानी में प्रवेश और संचालन पर रोक रहेगी। वहीं सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहन और पर्यावरण विभाग द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त श्रेणियों के वाहनों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सर्दियों के दौरान अधिकृत पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्माण गतिविधियों, धूल प्रदूषण और खुले में कचरा या पत्तियां जलाने पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डिजी रोवर की शुरुआत की है। ये अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। सरकार ने रक्त संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इधर स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल दिल्ली में डेंगू की तैयारियों पर एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य और नगर निकाय डेंगू के मामलों में संभावित वृद्धि से निपटने के लिए तैयार हैं। जयपुर में 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कारों के वितरण के लिए समाप्त होगा। ये पुरस्कार केंद्र और राज्य सरकारों तथा अन्य संगठनों द्वारा ई गवर्नेंस संबंधी उत्कृष्ट पहलों के लिए प्रदान किए जाते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू से श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया। कश्मीर घाटी के बालतल और पहलगाम दोनों आधार शिविरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बम बम भोले के नारे लगाते हुए एकत्रित हुए। 57 दिन की ये वार्षिक तीर्थयात्रा कल से कश्मीर के दोनों मार्गों पर आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है और 28 अगस्त तक चलेगी। ये यात्रा अनंतनाग जिले के नुनवान पहलगाम मार्ग और गांधरबल जिले के बालतल से होकर गुजरती है। तीर्थयात्रियों को केवल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर ही यात्रा करनी होगी। मुगल रोड और धार रोड जैसे वैकल्पिक मार्गों पर तीर्थयात्रा का आवागमन वर्जित है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पंजीकरण जारी है और यात्रा से पहले लगभग 4,00,000 तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण करा लिया है। खेलों में फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलीमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही अमरीका ने राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अब अमरीका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं एक अन्य मैच में कल इंग्लैंड ने कांगो को 2-1 से हरा दिया। अब 6 जुलाई को राउंड ऑफ 16 में इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। पुरुष क्रिकेट में भारत इंग्लैंड के बीच टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा टी20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। वहीं ड्यूरेंट कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। 2 क्वार्टर फाइनल, 1 सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले कोलकाता में होंगे। ये पहला मौका है जब ड्यूरेंट कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सामाजिक न्याय के अग्रदूत डॉक्टर सोनूलाल पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर सोनूलाल ने असमानता और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का सशक्त संदेश दिया। केंद्र सरकार ने असम में हाल ही में बाढ़ से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सबसे ज्यादा प्रभावित धेमाजी जिले सहित पूरे राज्य में बाढ़ से हुए आरंभिक नुकसान का जायजा लिया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पहुंचने की संभावना है। कर्नाटक के तटीय भाग, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अगले 2 दिन में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सुबह बारिश के साथ हुई। शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई, इससे दिल्ली वासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद फरहत। कमर्शियल गैस ATF में राहत, पेट्रोल, डीजल और LPG पर इंतजार। जुलाई के पहले सप्ताह ही जेब पर पड़ेगा अच्छा असर, राजस्थान पत्रिका की खबर है। प्रदूषण हो या ना हो, 1 नवंबर से वर्क फ्रॉम होम, दिल्ली में ग्रैब की पाबंदियां 4 महीने तक स्वतः लागू रहेंगी। हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की आज सुर्खी बनी है। मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में SIT का कार्यकाल बढ़ा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 जुलाई तक बढ़ाई समय सीमा, वीर अर्जुन की खबर है। दोहा में मध्यस्थों के जरिए अमरीका और ईरान में बातचीत, देश बंधु की सुर्खी है। भारत पहुंची जापान की PM, रणनीतिक संबंधों पर जोर, PM मोदी के साथ शिखर वार्ता आज।

0: आर्थिक जागरण के विदेश पन्ने की खबर है। आयात के दम पर जीएसटी संग्रह 14% बढ़ा, वृद्धि की रफ्तार 13 माह में सबसे तेज। चुनौतियों के बावजूद विदेशी उत्पादों के बंपर आयात में जून में भरी सरकार की झोली, अमर उजाला के कारोबार पन्ने की ये खबर ध्यान खींचती है। आज और कल भी कभी भी एनसीआर में दस्तक दे सकता है मानसून। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रवेश के बाद अगली मंजिल एनसीआर, हरियाणा और पंजाब। दैनिक जागरण ने यह खबर सचित्र दी है। अमर उजाला लिखता है, उत्तराखंड में भारी बारिश से केदारनाथ हेली सेवा स्थगित, उड़ाने डायवर्ट। चारधाम यात्रा में कुछ ही दिनों में अंतर दिखने का समाचार दैनिक भास्कर ने आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 20 दिन में बदली तस्वीर दर्शनार्थियों की दौड़ में केदारनाथ से आगे निकला बद्रीनाथ। छोटे शहरों में ऑनलाइन खरीदारी का क्रेज, कंपनियां बढ़ा रही हैं निवेश, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। वीर अर्जुन ने ग्राम सभा पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, गांव की लोकतांत्रिक आत्मा क्या कागजों पर सिमट रही है, ग्राम सभाएं। लेख में कहा गया है कि ग्राम सभा को विकास कार्यों के सोशल ऑडिट का वास्तविक अधिकार मिलना चाहिए। जब लोगों को दिखेगा कि उनके द्वारा किए गए ऑडिट से भ्रष्टाचार पर रोक लग रही है तो उनकी भागीदारी स्वतः बढ़ेगी।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया। और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold annual summit with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi today. EPFO notifies 8.25% interest rate on EPF deposits for financial year 2025-26. Centre issues notice to Meta over new username feature on WhatsApp in India, seeks detailed explanation in 3 days. Delhi government notifies permanent winter pollution master plan to curb seasonal air pollution in the national capital. Belgium stuns Senegal 3-2 in extra time thriller at FIFA World Cup. And in men's cricket, first T20 international between India and England abandoned due to rain. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will hold annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi today. The summit will provide an opportunity for both sides to review and strengthen the full spectrum of bilateral cooperation as well as exchange views on regional and global issues of mutual interest. Several MOUs are expected to be exchanged following the talks between Prime Minister Modi and Prime Minister Takaichi. The Japanese Prime Minister arrived in New Delhi last evening on a 3-day visit to India. This is the first official visit of Prime Minister Takaichi to India. The External Affairs Ministry said that the visit marks an important step in taking forward the special strategic and global partnership between India and Japan. Our correspondent reports that economic security has emerged as a key pillar of the relationship.
3: During the first economic security dialogue held in Tokyo in November 2024, the two sides identified 5 sectors as priority sectors for strategic collaboration. These are semiconductors, critical minerals, pharmaceuticals, clean energy and information, and communication technology. The India-Japan relationship is marked by frequent high-level political engagement. Most recently, Prime Minister Narendra Modi interacted with the Japanese Prime Minister during the G7 summit in France. The two leaders had earlier met on the sidelines of the G20 summit in Johannesburg in November last year. The annual summit remains the flagship platform driving the strategic agenda of the partnership. An action plan for Japan-India human resource exchange and cooperation was launched during the annual summit in 2025, which envisages two-way exchange of 5 lakh personnel in 5 years, including 50,000 skilled and semi

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाए समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाए समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
2: आकाशवाणी रोहतक से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत, जिसमें आज गायक कलाकार हैं राम निवास शर्मा।

इसी के साथ संपन्न होता है कार्यक्रम लोक संगीत, जिसमें आज कलाकार थे रामनिवास शर्मा। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम हेलो रोहतक।

फोन इन कार्यक्रम हेलो रोहतक सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप सभी को किरण का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, सबसे पहले बता देते हैं हमारे फ़ोन नंबर्स। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 2554462554472554488। जो श्रोता रोहतक के बाहर या मोबाइल से संपर्क कर रहे हैं तो फ़ोन नंबर से पहले हमारा एसटीडी कोड ज़रूर लगा लें। एसटीडी कोड है 01262। तो जब तक आपके फ़ोन कॉल्स हम तक पहुंचते हैं, हम पहुंचा रहे हैं सैनिक फिल्म का खूबसूरत गीत आप सभी तक।

0: सैनिक फिल्म से गीत आपने सुना, आवाज़ें थी कुमार सानू, साधना सरगम की, गीत लिखा समीर ने। बात करते हैं कार्यक्रम के पहले श्रोता से। हेलो
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार जी, नाम बता दें।
1: हेलो जी, मैं प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: जी स्वागत है प्रेम सिंह जी आपका हमारे कार्यक्रम में। कौन सा गीत सुनेंगे?
1: थैंक यू सो मच सर। मैडम, गाने के बोले कहो ना कहो, फिल्म का नाम है मर्डर।
0: जी कार्यक्रम कौन कौन से सुनते हो और कैसे लगते हैं?
1: जी मोबाइल ऐप से कार्यक्रम सुनता हूँ और नियमित सुनता हूँ रोहतक का
0: जी।
1: और आपको बताऊँ, अभी मौसम हमारे यहाँ पे अच्छा है, पानी गिरा है आज रात में।
0: जी हमारे यहाँ भी हल्की बरसात हुई है।
1: जी हाँ, और अभी किसानों ने काफी उत्साह है, सोयाबीन की फसल लगाई है सभी ने यहाँ पर।
0: जी तो पहुँचा दे फिर आपकी पसंद का गीत आप तक।
1: जी बिल्कुल,
0: बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए।

0: हेलो।
1: जय माता दी।
0: जय माता दी। नाम बता दें।
1: मेरा नाम है पूरन वर्मा और मैं आपसे बात कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान, गांव का नाम अंशमेल बुगला। थैंक
0: स्वागत है पूर्ण वर्मा जी आपका कार्यक्रम में।
1: यू मैडम। आप कैसे हो? काफी दिनों के बाद में बात हो रही है मैडम जी।
0: जी हम सब यहाँ पर सकुशल हैं। आप बताइए।
1: बस मैडम बढ़िया है। यहाँ अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी मैडम।
0: जी तो कौन सा गीत सुनवा दें?
1: आपको उधर मौसम कैसा है मैडम?
0: मौसम बहुत बढ़िया है, हल्की
1: जी
0: बूंदाबांदी है।
1: जी मैडम, फिल्म का नाम रहेगा जमाना दीवाना और उसमें गाने के बोल रहे हैं तुझसे पूछूं एक सवाल, अब है नींद कैसे अब है चैन का, ये गाना।
0: तो पूर्ण वर्मा जी पहुंचा रही हैं आपकी पसंद का गीत आप तक। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू मैडम, धन्यवाद। गोल्डी बाय के साथ।

0: हेलो,
1: हेलो।
0: नमस्कार जी, नाम बता दें।
1: हाँ किरण जी नमस्कार। मैं धर्मवीर प्रजापत बोल रहा हूँ जी, गांव बड़ौदा जिला जींद से।
0: स्वागत है धर्मवीर जी कार्यक्रम में
1: बहुत बहुत धन्यवाद जी। किरण जी,
0: जी। गाने के बोल बता दें, कौन सा गीत सुनना
1: हाँ
0: था
1: जी, आज मुझे गीत सुनना है जी। पुरानी फिल्म है दीदार,
0: जी?
1: इसका गीत सुनना है जी, जिसके बोल है बचपन के दिन भुला न देना।
0: जी, तो आपकी पसंद का गीत आप तक पहुंचा रहे हैं, धन्यवाद कॉल करने के लिए।
1: हाँ ठीक है, धन्यवाद जी।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
1: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ हर दिल हर घर और हर जन हर वर्ग को जोड़ने का है साधन विश्वसनीय असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर हमारी आवाज आपका प्रचार हो जाएं समृद्ध होने को तैयार अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक
2: आकाशवाणी रोहतक से आप सुन रहे हैं फोन इन कार्यक्रम हेलो रोहतक तो बात करते हैं कार्यक्रम के अगले श्रोता से हेलो
3: हेलो दीदी नमस्कार
2: नमस्कार जी नाम बता दें
3: ग्राम हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी
2: स्वागत है भगवान सिंह जी आपका कार्यक्रम में
3: जी धन्यवाद दीदी अभी हम आपका कार्यक्रम मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं दीदी हम अभी हम खेत पर हैं और जब हम घर होते हैं दीदी तो हम DTH के माध्यम से सुनते हैं आपको
2: जी तो कैसे लगते हैं कार्यक्रम
3: कार्यक्रम रोहतक के दीदी बहुत अच्छे लगते हैं खास करके ये फोन इन फरमाइश का वाला कार्यक्रम और जो आप ईमेल द्वारा व्हाट्सएप पे जो कार्यक्रम लेते हैं ना दीदी वो कार्यक्रम भी अच्छा लगता है हमें
2: तो भगवान सिंह जी आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे
3: दीदी फिल्म का नाम है बरसात की रात और गाने के बोल हैं वादा करके सजन नहीं आया ये वाला गीत सुनना है दीदी
2: तो आपकी पसंद का गीत आप तक पहुंचा रहे हैं धन्यवाद कॉल करने के लिए
3: धन्यवाद दीदी बहुत बहुत आपका

0: हेलो।
1: हेलो, नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, नाम बता दें।
1: मैं राजेंद्र यादव बोल रहा हूँ जी, गांव रायपुर तहसील बोल रहा हूँ से।
0: स्वागत है राजेंद्र जी कार्यक्रम में।
1: हाँ जी, हाँ
0: कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: जी, मौसम कैसा है आपके?
0: मौसम अच्छा है
1: हमारे से यहाँ झमाझम बारिश हो रही है जी।
0: जी, यहाँ पर भी हल्की फुल्की बरसात है।
1: गीत
0: गीत के बोल बता दें
1: फिल्म का नाम है जी, कभी कभी।
0: जी। गीत के बोल
1: तेरे
0: जी, तो आपके पसंद का गीत आप तक पहुंचा रहे हैं या राजेंद्र यादव जी, धन्यवाद कॉल करने के लिए। जी
1: बरसात
0: बताएं।
1: का टाइम है जी, पेड़ जरूर लगाए, हर श्रोता को बताओ एक पेड़ जरूर लगाए।
0: जी जरूर, आपका जो संदेश है वो हमारे श्रोताओं तक पहुंच गया है। बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए।
1: धन्यवाद सर।

सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण।

0: दिखाएं, खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं, अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाए समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: हेलो
2: जी, नमस्कार बहन जी।
1: नमस्कार जी, नाम बता दें।
2: जी देवेंद्र कुमार, गांव निगाना कला, डिस्ट्रिक्ट भिवानी से बोल रहा हूँ जी।
1: स्वागत है देवेंद्र जी आपका कार्यक्रम में। गीत के बोल बता दें
2: जी। एक फिल्म का नाम है जी मजबूर, सन्नी देओल फराना से फिल्म आ गया, मोहम्मद अजीज अनुराधा पोटवाल की आवाज में, रेम जी बरसता बाहर ये पानी। ये पूरी रात की बारिश हो रही है जी आज।
1: जी जी, तो देवेंद्र जी आपकी पसंद का गीत सुनवा रहे हैं, धन्यवाद कॉल करने के
2: जी,
1: लिए।
2: धन्यवाद जी।
1: तो देवेंद्र जी की पसंद पर सुनवा रहे हैं आनंद बख्शी का लिखा गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ, मजबूर फिल्म से।

0: हेलो।
1: हेलो नमस्कार।
0: नमस्कार जी, नाम बता दें।
1: मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
0: जी राकेश जी, कौन सा गीत सुनवा दें आपको?
1: बेवफा फिल्म मूवी का सुनना है, तो मैं बताना चाहता हूँ इधर हमारे बारिश हो रही है लगातार।
0: जी
1: आज भी बारिश थी सुबह, कल भी बारिश थी।
0: जी जी गीत के बोल बता दें।
1: इश्क में तुम्हें हम क्या बताएं।
0: तो आपकी पसंद का गीत आपको सुनवा रही है। धन्यवाद कॉल करने के लिए राकेश जी।
1: धन्यवाद धन्यवाद जी धन्यवाद।

0: हेलो,
1: हाँ जी नमस्ते जी।
0: नमस्कार जी। नाम बता दे, कौन कहाँ से बात कर रहा है
1: योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं।
0: जी? योगेश जी, स्वागत है कार्यक्रम में। कौन सा गीत सुनवा दे?
1: फिल्म है हम आपके हैं कौन और गीत के बोल हैं ये मौसम का जादू है मितवा।
0: तो आपकी पसंद का गीत आप तक पहुंचा रहे हैं। योगेश जी, धन्यवाद कॉल करने के लिए।
1: जी शुक्रिया।
0: कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में हम आपके हैं कौन फिल्म से।

0: इसी गीत के साथ संपन्न होता है फोन इन कार्यक्रम हेलो रोहतक। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर। सुबह के 10 बजने को हैं। अब समाचार प्रसारित होंगे, पहले हिंदी में उसके बाद अंग्रेजी में। समाचार हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाइची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है। प्रधानमंत्री तकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री तकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना वर्ष 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर से ये योजना लागू रहेगी। सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
2: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने विदेश सचिव का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने की अनुमति दी। श्री मिश्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। विदेश सचिव ने 15 जुलाई 2024 को कार्यभार संभाला था। वे जनवरी 2019 से दिसंबर 2021 तक चीन में भारतीय राजदूत के पद पर कार्यरत थे। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। ये हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल हैं। नए नियमों के अनुसार वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के बिना वाहनों को दिल्ली के पेट्रोल पंपों, सीएनजी और एलपीजी स्टेशनों पर ईंधन नहीं मिलेगा। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में सहायता मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने

पटनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टिलेमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमेरिका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से अपनी हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Haryana, Chandigarh, Gujarat, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Rajasthan during the next 2 days. Meanwhile, people in Delhi woke up to refreshing showers this morning. Rain lashed several parts of the city, bringing the much-needed relief from the sweltering heat. In the ICC Women's T20 World Cup, England will face South Africa in the second semi-final at the Kennington Oval in London today. The match will begin at 11 p.m. IST. Winner of this match will face Australia in the final at the iconic Lord's Cricket Ground in London on the 5th of this month. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। सुबह के 10:10 हो गए हैं। इसी के साथ संपन्न होते हैं हमारी पहली सभा के प्रसारण। एफएम बैंड 103.5 मेगा हर्ट्स पर हम रिले करेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर दोपहर 12:30 पर हमारी दूसरी प्रसारण सभा में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए अनुमति।

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज न्यूज़ ऑन एआईआर और डीटीएच पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है दोपहर के 12:30:14। आरंभ होती है हमारी आज की दूसरी प्रसारण सभा। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा तैयार प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं विमलेश, उमंग कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूं।
0: और मैं अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, मित्रता एवं रिश्तेदारी परस्पर सम्मान पर टिकी होती है।
0: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
2: गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी।

0: हरियाणा से रामधारी, अवनी, प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप और बेबी किरत अवाना ने लिखा है।
1: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। कार्यक्रम उमंग के तहत 3 जून 2026 को प्रस्तुत गोबी शीत मरुस्थल की भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक जानकारी हमारे लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक रही। साथ ही प्रेरणादायी कहानी दोस्त की पहचान ने सच्ची मित्रता के गुणों को समझने की महत्वपूर्ण सीख हमें दी। ऐसे रोचक, शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कार्यक्रमों की भविष्य में भी आपसे अपेक्षा है। आपके उत्कृष्ट प्रयास के लिए हृदय से धन्यवाद।
0: बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी लिखते हैं।
1: आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। समावेशी शिक्षा पर प्रोफेसर भारती जी द्वारा दी गई ज्ञानवर्धक जानकारी महत्वपूर्ण थी। साथ ही गुजरे सप्ताह शीत मरुस्थल पर बेहद शानदार जानकारी दी गई। ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी को हमारे बच्चों ने छुट्टियों में बड़े ध्यान और लगन से सुना और वे इस पर अमल भी कर रहे हैं, इसलिए हम उमंग कार्यक्रम की पूरी टीम का हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं।
0: हम भी आपका हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं संदेश भेजने के लिए।
1: अगला संदेश हमें मिला है नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा, ऋषभ, कनक और भावना वर्मा जी का।
0: ग्राम बंगला माटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे।
1: आप सभी श्रोताओं को हमारी ओर से आभार खूबसूरत संदेशों को भेजने के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी बहुमूल्य खनिज सोने के बारे में
0: और अब चलते हैं आगे और चर्चा करते हैं एक और खनिज के बारे में। तो अजीत जी, जरा उस खनिज का नाम तो बताइए।
1: जी विमलेश जी, वो तो बताऊंगा लेकिन इस बार कुछ हिंट के साथ।
0: तो दीजिए हिंट।
1: हिंट है, ये खनिज सोने से भी अधिक मूल्यवान माना जाता है। इसकी चमक अत्यंत आकर्षक है
0: जी।
1: इसे तराशा जाता है।
0: और
1: हाँ, ये कांच काटने के काम भी आता है।
0: जी अजीत जी, मैं समझ गई, ये कहीं हीरा तो नहीं?
1: बिल्कुल सही जवाब। जी हाँ श्रोताओ, ये हीरा है। ये खनिज पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी प्राकृतिक पदार्थ से अधिक कठोर है। हीरे के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि कितने लोग ये जानते हैं कि ये बनता कैसे है। तो आइए देते हैं इस रोचक चर्चा को विस्तार।
0: श्रोताओ, हीरे का निर्माण होता है पृथ्वी की गहराइयों में। अगर आप पूछें कि कितनी गहराइयों में, तो हम आपको बता दें कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर नीचे पृथ्वी की परत मेंटल में बनता है।
1: आपको हम ये भी बता दें कि कोयला और हीरा दोनों ही मुख्य रूप से कार्बन से बने होते हैं
0: जी।
1: लेकिन हीरा बनने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है।
0: श्रोताओ, जैसा कि अभी हमने सुना था कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर से भी अधिक गहराई में बनता है, आइए जानते हैं क्या होता है उन गहराइयों में।
1: श्रोताओ, पृथ्वी की गहराइयों में लगभग तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है और वहाँ का दबाव वायुमंडलीय दबाव से हजारों गुना अधिक होता है।
0: इन अत्यधिक दबाव वाली परिस्थितियों में कार्बन के परमाणु एक विशेष क्रिस्टलीय संरचना में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसके कारण हीरा बनता है। इस प्रक्रिया में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। लेकिन अजीत जी, श्रोताओं की ओर से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अभी हमने जाना कि हीरे पृथ्वी की सतह से 150 से भी अधिक गहराई में बनते हैं। इतनी गहराई तक उत्खनन तो असंभव है, तो फिर हीरे तक हम कैसे पहुँचे?
1: सचमुच ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है विमलेश जी। यदि हीरे इतनी गहराई में ही बने रहते तो हम उन्हें कभी देख ही नहीं पाते। होता ये है कि ज्वालामुखीय विस्फोटों के कारण मैग्मा यानी धरती के अंदर की पिघली चट्टानें तीव्र गति से ऊपर उठती हैं और वे साथ साथ हीरों को भी पृथ्वी की सतह के बहुत करीब ले आती हैं
0: और फिर हम उन्हें उत्खनन द्वारा निकाल लेते हैं। श्रोताओ, वैज्ञानिक दृष्टि से हीरा शुद्ध कार्बन है। आपको बता दें कि हीरा और आपके घर में पाई जाने वाली पेंसिल की नोक ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन से बने हैं। अंतर केवल परमाणुओं की व्यवस्था का है।
1: पता है श्रोताओ, हीरे को यदि अत्यधिक ताप पर ऑक्सीजन में जलाया जाए तो अंत में कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वो बदल सकता है। श्रोताओ, एक बात और आपको बता दें, आजकल आभूषणों और उद्योग में इस्तेमाल होने वाले हीरे प्रयोगशालाओं में ही बनाए जाते हैं।
0: लेकिन एक खास बात यह है कि कृत्रिम रूप में हीरों को बनाने के लिए एक छोटा प्राकृतिक हीरा इस्तेमाल किया जाता है, जिसे डायमंड सीड कहा जाता है। इस सीड के द्वारा प्राकृतिक प्रक्रिया की नकल करके हीरा बनाया जाता है। एक बात जरूर है कि प्राकृतिक रूप से हीरा बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, लेकिन कृत्रिम रूप में इसे बनाने में बहुत कम समय लगता है।
1: लेकिन इसे बनाने की विधा या फॉर्मूला हमें प्रकृति से ही मिलता है, तो हम याद रख सकते हैं कि पृथ्वी की गहराइयों में अत्यधिक ताप और दबाव के कारण जो कार्बन के क्रिस्टल बनते हैं उन्हें हम हीरा कहते हैं।
0: तो श्रोताओ, आप कह सकते हैं कि आपके हाथ में चमकता हुआ हीरा वास्तव में पृथ्वी की गहराइयों में लाखों करोड़ों वर्ष पहले बना हुआ एक अद्भुत प्राकृतिक चमत्कार है।
1: जी, तो श्रोताओ ये थी जानकारी हीरे की। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से प्रश्न है, डायमंड सीड किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: डायमंड सीड किसे कहते हैं?
1: आप हमारे प्रश्नों के उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं आज का पहला शैक्षिक कार्यक्रम। शीर्षक है न्याय।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है जिसके द्वारा पशु पक्षियों के प्रति दया और प्रेम भाव रखने का संदेश दिया गया है।
2: चलो मित्र सिद्धार्थ, उद्यान की ओर चलते हैं, सरोवर के पास। कैसी शांति है, पक्षी नीड़ों की ओर लौट रहे हैं। वहां देखो उस पेड़ पर कैसे वो चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिला रही है, अति सुंदर। और तनिक उधर देखो उद्यान के बाहर, कैसे एक बछड़ा अपनी माँ की ओर दौड़ा चला जा रहा है और गाय अपने बछड़े को लाड़ कर रही है।
3: साथियों, ये वार्तालाप हो रहा था युवराज सिद्धार्थ और उनके मित्र वसु के बीच। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था जो कपिलवस्तु नगर का एक ग्राम उद्यान था। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे जो शाक्य गणराज के राजा थे जिसकी राजधानी थी कपिलवस्तु। युवराज सिद्धार्थ ही आगे चलकर गौतम बुद्ध बने और विश्व को अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाया। प्रारंभ में उनका जीवन राजसी सुख सुविधाओं से भरपूर था। आइए एक बार फिर से चलते हैं उस उद्यान की ओर जहां दोनों मित्र वार्तालाप कर रहे हैं।
2: युवराज, तनिक ऊपर देखो, कितने सुंदर पक्षी हैं।
4: ये राजहंस हैं। ऐसा लगता है मानो हवा में तैर रहे हैं और इतनी ही सुंदरता से वे पानी में भी तैर सकते हैं। ओह, देखो एक राजहंस नीचे की ओर गिर रहा है।
2: हाँ, लगता है उसे तीर लगा है।
4: प्यारे पक्षी, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं। मैं हूं ना, न जाने किस निर्दयी ने इसे घायल कर दिया, भला इसका क्या दोष है?
5: दोष ये है कि ये सुंदर है, प्यारा है, सबको पसंद आता है।
4: क्या सुंदर होना और सबका प्यारा होना कोई दोष है? प्यारे हंस, मैं तुम्हारा ये तीर निकाल देता हूं, फिक्र मत करो। ये निकाल दिया, अब तुम मेरी गोद में थोड़ी देर विश्राम कर लो। मित्र, कोई भी व्यक्ति जिसके पास हृदय है इन निर्दोष पक्षियों को मार ही नहीं सकता। तुम जरा दौड़कर राजवैद्य से इसके लिए कोई औषधि तो ले आओ।
2: हाँ मित्र, अभी जाता हूं।
3: युवराज सिद्धार्थ ने हंस को विश्राम करने के लिए पास के ही एक कुंज में लिटा दिया और वसु के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में उनके चचेरे भाई देवदत्त आ पहुंचे। वे इधर उधर देख रहे थे मानो कुछ खोज रहे हों।
6: कुमार सिद्धार्थ, अभी मैंने एक उड़ते हुए हंस को तीर मारकर नीचे गिराया था। मैंने अपनी आंखों से उसे गिरते हुए देखा था, वो इधर ही कहीं आया है। तीर धनुष पर मेरा लक्ष्य अब भली भांति सद गया है। ये बात मैं कल गुरुजी को बताऊंगा तो वो कितने प्रसन्न होंगे। तुम गुरुजी के सामने मेरी गवाही दोगे ना?
4: अवश्य दूंगा देवदत्त, और वो भी प्रमाण के साथ, क्योंकि इसका प्रमाण वो हंस है जिसे तुमने मारा है।
6: तो हंस तुम्हारे पास है, लाओ उसे मुझे दे दो।
4: क्यों दे दूं?
6: ये तो बड़ा ही विचित्र प्रश्न है। भाई इसलिए दे दो

0: क्योंकि मैंने उसे मारा है।
1: लेकिन मैंने इसे बचाया है।
0: तुम राजकुमार हो इसलिए मुझे धमकी देना चाहते हो। मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं दोगे। इसका निर्णय तो अब राज दरबार में ही होगा।
2: तो साथियों, दूसरे दिन दरबार लगा हुआ था।
3: महाराज की जय हो।
4: महाराज की जय हो।
5: महाराज की जय हो।
2: प्रतिहारी ने सभी प्रकरणों की जानकारी दी और बताया कि आज कुमार देवदत्त भी एक प्रकरण न्याय के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ भी उपस्थित थे।
6: कुमार देवदत्त को प्रस्तुत किया जाए।
7: महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज, मेरा कहना है कि राजकुमार सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है, जिसे मैंने मारा था। वो मुझे मेरा हंस नहीं दे रहे। मुझे न्याय चाहिए।
6: राजकुमार सिद्धार्थ, क्या ये वही हंस है जो आपकी गोद में है?
1: महाराज को प्रणाम करता हूँ। जी महाराज, ये वही हंस है। मेरा कहना है कि कुमार देवदत्त ने इस हंस को मारा है, लेकिन मैंने इसे बचाया है। अतएव मैं ये हंस इन्हें नहीं दे सकता।
6: लेकिन सिद्धार्थ, देवदत्त ने इस हंस का आखेट किया है। नियम के अनुसार आखेट वीर का अधिकार है। वीर आखेट को छोड़ नहीं सकता।
1: जी महाराज, लेकिन नियम तो ये भी कहता है कि वीर शरणागत को भी नहीं छोड़ सकता। हमारी शाक्य राजवंश की परंपरा और शास्त्रों का नियम तो ये भी कहता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।
7: पर महाराज, मैंने पहले इस हंस को मारा है, इसलिए ये मेरा है।
1: जी, पहले मारा था, तभी तो वो मेरी शरण में आया है। बिना मारे वो मेरी शरण में कैसे आता?
6: महामंत्री, समस्या जटिल हो गई है। क्या आप कोई मार्ग सुझा सकते हैं?
8: जी महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता हूँ। अब तो निर्णय ये हंस ही करेगा।
6: निर्णय ये हंस ही करेगा? भला वो कैसे आज्ञा है?
8: महाराज, मेरा आग्रह है कि हंस को यहाँ इस आसन पर बैठाया जाए।
2: हंस को आसन पर बैठा दिया गया। हंस भयभीत था, लेकिन सिद्धार्थ उसे सांत्वना दे रहे थे। सभा स्तंभित थी, सभी फुसफुसा रहे थे।
9: ये हंस कैसे बताएगा?
10: गद्दी पे बैठ कर
11: सिद्धार्थ को मिलना किसके पास जा रहा है?
8: कुमार देवदत्त, आप कहते हैं कि इस पर आपका अधिकार है। आसन के पास आइए और हंस को अपने पास बुलाइए।
7: ओ प्रिय हंस, मेरे पास आओ, आ जाओ, आओ मेरे पास, आ जाओ।
2: देवदत्त जितनी बार हंस को बुलाते, वो उतनी ही बार भय के मारे आसन से चिपक जाता। देवदत्त ने बहुत प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी।
8: अब मैं राजकुमार सिद्धार्थ को सामने बुलाना चाहूंगा और कहूंगा कि वे भी हंस को अपने पास बुलाएं।
1: प्यारे राजहंस, मेरे प्रिय मित्र, डरो मत, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे पास आ जाओ, अपने मित्र के पास आ जाओ, आ जाओ, घबराओ मत।
2: फिर क्या था, पलक भी नहीं झपकी थी। हंस ने अपने पंख फैलाए और उड़ता हुआ सिद्धार्थ की गोद में ऐसे आ चिपका जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में चिपक जाता है।
6: स्वयं इस पक्षी ने अपना

0: निर्णय बता दिया है। हमने सुना था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आज साक्षात देख भी लिया। मैं हर्ष के साथ घोषित करता हूँ कि ये हंस युवराज सिद्धार्थ का ही है।
1: महाराज की जय हो।
2: महाराज की जय हो। महाराज की जय हो।
3: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम न्याय। साथियों, इस कार्यक्रम में आपने 2 शब्द सुने। पहला शब्द था नीड और दूसरा शब्द था आखेट। तो इसका अर्थ आपको बता देते हैं। नीड शब्द का अर्थ है घोंसला और आखेट शब्द का अर्थ होता है शिकार। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। पशु पक्षियों का ख्याल रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए और इसकी सूची बनाइए। अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय।
4: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ। अलर्ट हूँ मैं, चल चल।

0: तो सुनिए आपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है हमारा आदित्य।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें भारत के सौर मिशन की विस्तार से जानकारी दी गई है।
3: 5, 4, 3, 2, 1, 0।
4: दिन था 2 सितंबर 2023, स्थान

0: इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, समय भारतीय समयानुसार ठीक 11:50, जब अंतरिक्ष यान आदित्य L1 की गगनभेदी गर्जना से आकाश गूंज उठा। लाखों करोड़ों लोगों ने सारी दुनिया में इस दृश्य को टेलीविजन पर देखा।
1: श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 के पहले सूर्य मिशन को लॉन्च कर दिया गया है।
0: रेडियो पर समाचार प्रसारित हुए और दूसरे दिन के सभी अखबारों ने इसे अपने मुख पृष्ठ पर प्रमुखता से छापा। शीर्षक था, आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत विश्व की चौथी महाशक्ति बना। आज कक्षा में बड़े उत्साह का वातावरण है, क्योंकि विद्यालय के विशेष निमंत्रण पर आज जाने माने स्पेस जर्नलिस्ट श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं, जो सौर्य यान आदित्य के बारे में बातचीत करेंगे।
2: क्या तुम्हें पता है कि श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं?
3: क्या वो चंद्रयान के बारे में बात करेंगे?
2: मुझे लगता है वो आदित्य यान के बारे में बात करेंगे।
3: चलो देखते हैं वो किस यान के बारे में बात करेंगे।
4: हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब?
5: हम अच्छे हैं।
4: तो बच्चों, शुरू करते हैं बातचीत। आप तैयार हैं?
5: जी हम तैयार हैं।
4: तो आज हम बातचीत करने जा रहे हैं भारत के सौर्य यान आदित्य L1 के बारे में।
5: आदित्य L1 के बारे में?
6: बच्चों शांत हो जाओ, आप बारी बारी सर से सवाल पूछ सकते हैं।
3: सर, इसका नाम आदित्य क्यों पड़ा?
4: बहुत अच्छा सवाल। देखो, आदित्य एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है सूरज यानी सूर्य। अच्छा चलो बताओ, सूर्य के लिए और कौन कौन से शब्द हैं?
2: सर, टीचर ने बताया था कि सूर्य को रवि और भास्कर भी कहते हैं।
4: बहुत अच्छे। चलो अब मेरी ओर से एक खास सवाल। अच्छा तो अब ये बताओ कि क्या तुमने किसी वैज्ञानिक का नाम सुना है जिनके नाम में भास्कर शब्द जुड़ा है?
3: जी सर, उनका नाम है भास्कराचार्य।
4: अरे वाह, तुम्हारा क्या नाम है बेटी?
3: जी मेरा नाम श्रुति है।
4: शाबाश श्रुति। तुम्हें बता दूं कि भास्कराचार्य प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। हाँ तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे सूर्य की। क्या आप जानते हैं कि सूर्य क्या है? मेरा मतलब है कि सूर्य ग्रह है या तारा है?
7: सूर्य ग्रह है या तारा?
4: अरे सोचो सोचो, जो जवाब देगा या प्रश्न पूछेगा वो सबसे पहले अपना नाम बताएगा।
3: सर मेरा नाम सुमित है, सूर्य एक ग्रह है।
4: सुमित, तुमसे जरा सी भूल हो गई, सूर्य असल में एक तारा है।
5: अच्छा सर।
2: सर मेरा नाम सोहम है, मेरा प्रश्न यह है कि सूर्य इतनी गर्मी कैसे देता है? क्या वहाँ आग जलती है?
3: और अगर जलती है तो वहाँ आग किसने लगाई होगी?
4: बच्चों, दरअसल सूर्य में गर्मी आग जलने से नहीं होती। सूर्य ऐसी गैसों से बना है जो बहुत गर्म होती हैं, जैसे हीलियम और हाइड्रोजन।
2: हीलियम और हाइड्रोजन सर?
4: हाँ, सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम नाम की गैसों का एक विशाल गोला है।
2: विशाल गैसों का गोला? अब समझ आया कि सूर्य इतना गर्म कैसे होता है।
4: शाबाश, समझ गए ना?
5: जी सर।
3: सर जिस तरह से चंद्रमा पर जाया जा सकता है, क्या उसी प्रकार सूर्य पर भी जाया जा सकता है?
4: बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखो, सूर्य का तापमान इतना अधिक है कि वहाँ चंद्रमा की तरह नहीं जाया जा सकता। हाँ, एक निश्चित दूरी से सूर्य का अध्ययन किया जा सकता है। इसलिए तो हमारे देश ने सूर्य के बारे में अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 को अंतरिक्ष में भेजा।
2: सर, आदित्य अंतरिक्ष यान के बारे में हमें विस्तार से बताइए ना।
4: जरूर बच्चों। देखो, आदित्य L1 चंद्रयान की तरह ही एक यान है।

0: जिसका कार्य है सूर्य के बारे में जानकारी जुटाना।
1: जी सर।
0: जैसे ये किस समय कैसा होता है, इसका तापमान स्थिर रहता है या घटता बढ़ता है, और इसका क्या प्रभाव हमारी पृथ्वी या सौर मंडल के अन्य ग्रहों पर पड़ता है।
2: सर, हमने आपके लेख में ही पढ़ा है कि आदित्य ज्ञान ने सूर्य के कई फोटोज पृथ्वी पर भेजे हैं।
0: हाँ, सही कहा। आदित्य ज्ञान का मुख्य उद्देश्य सूर्य की बाहरी परतों का अध्ययन करना है। इन तस्वीरों से हमें तूफानों और अंतरिक्ष के मौसम की बेहतर जानकारी मिलेगी, जिससे भविष्य में संचार और उपग्रह सेवाओं को सुरक्षित रखने में हमें बड़ी मदद मिलेगी।
3: सर, मेरा नाम दिवाकर है।
0: भाई वाह, दिवाकर का मतलब भी तो सूर्य ही होता है ना?
1: जी सर।
0: जी दिवाकर, आपका प्रश्न क्या है?
3: सर, मेरा प्रश्न है, यदि सूर्य इतना गर्म है तो आदित्य यान उसके पास जाकर तस्वीरें कैसे भेज रहा है? क्या वो जल नहीं जाएगा?
0: अरे भला जलेगा कैसे, आदित्य यान सूर्य से एक सुरक्षित दूरी पर है, करोड़ों किलोमीटर दूर, समझे?
2: जी सर। सर, आदित्य यान का पूरा नाम आदित्य L1 क्यों है? L1 का क्या मतलब है?
0: देखो बेटी, L1 का मतलब है लैग्रेंज पॉइंट। ये बिंदु अंतरिक्ष का एक विशिष्ट स्थान होता है जो सूर्य और पृथ्वी के केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा पर होता है। इस स्थान से सूर्य को लगातार बिना किसी रुकावट के देखा जा सकता है, और ये देखा गया है कि अंतरिक्ष यान लगभग स्थिर रहता है। लैग्रेंज बिंदु 1 से 5 तक होते हैं।
3: सर, एक बार जब सूर्य ग्रहण लगा था तो हमें विशेष प्रकार की किट दी गई थी और कहा गया था कि इसी किट के द्वारा सूर्य को देखें। ऐसा क्यों?
0: बेटा सोहम, सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय ही नहीं, सूर्य को कभी भी प्रत्यक्ष आंखों से देखना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। लेकिन आदित्य यान ने जो तस्वीरें हमें भेजी हैं, उन्हें देखकर हमें पता चलता है कि सचमुच कितना अद्भुत है हमारा सूर्य।
2: सर, आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी बड़े होकर अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनूंगी, चंद्रमा और दूर दूर के तारों के बारे में पढ़ूंगी और अंतरिक्ष यान भी भेजूंगी।
0: शाबाश बच्चों, शाबाश। खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, और देश का नाम हमेशा रोशन करो।
4: अभी आपने सुना NCERT द्वारा तैयार प्रायोजित कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। दोपहर के 1 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, और उसके ठीक बाद 1:05 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से रिले किए जाएंगे।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्ता कर रहे हैं। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है। आज सुबह प्रधानमंत्री तकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंची। प्रधानमंत्री तकाइची का ये भारत का पहला आधिकारिक दौरा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री तकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत ने अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा है कि आतंकवाद को किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मानदंडों की कड़ी आलोचना करते हुए एक मजबूत और एकजुट वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति

0: की 9वीं समीक्षा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने ये बात कही।
1: इंडिया हैज बीन अ विक्टिम ऑफ क्रॉस बॉर्डर
2: से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है, हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
0: केंद्र सरकार ने असम में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ के हालात को लेकर बेहद गंभीर है। असम के मुख्य सचिव रवि कोटा ने बताया कि बाढ़ से 13 जिलों के करीब 72,000 लोग प्रभावित हुए हैं। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब मतपटना गांव स्थित कावेरी क्रशर पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान नीचे खदान में गिर गई, जहां मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉ जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने ISI प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ISI हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले इस सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर हिस्सों तथा राजस्थान के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। राजधानी में बारिश से गर्मी और उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन में मानसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में सेंसेक्स 412 अंक की बढ़त के साथ 77,355 के उच्चतम स्तर और निफ्टी 119 अंक बढ़कर 24,124 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ

0: योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। यह योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि योजना का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बनाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। योजना में आंशिक निकासी के नियमों को भी अद्यतन किया गया है। योजना में पारदर्शिता में सुधार और भविष्य निधि प्रबंधन को अधिक कुशल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ऑनलाइन दावों, ई पासबुक और यूनिवर्सल खाता संख्या से जोड़ने पर भी जोर दिया गया है। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री ए श्रीनिवास ने सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने संबंधी खबर को भ्रामक और तथ्यहीन बताया है। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग का उद्देश्य प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल करना व किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में शामिल होने से रोकना है। उन्होंने बताया कि 15 जून से 14 जुलाई 2026 तक चल रहे गणना चरण के दौरान प्रत्येक वर्तमान मतदाता को बूथ लेवल अधिकारी द्वारा गणना प्रपत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्तमान मतदाता हस्ताक्षरित गणना प्रपत्र जमा करेंगे और उनका नाम बिना किसी अतिरिक्त दस्तावेज की मांग किए प्रारंभिक मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि जिन मतदाताओं के गणना प्रपत्र प्राप्त नहीं होंगे उनके संबंध में बीएलओ स्थानीय जांच के आधार पर अनुपस्थिति, स्थानांतरण, मृत्यु जैसे संभावित कारण अनुसार डुप्लीकेट सूची तैयार करेगा। इस सूची पर बूथ लेवल अधिकारियों एवं राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट की बैठक आयोजित की जाएगी तथा सूची को संबंधित कार्यालयों के नोटिस बोर्ड एवं विभागीय वेबसाइट पर भी जारी किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित एचटेट की परीक्षा संयुक्त योग्यता परीक्षा की तर्ज पर पारदर्शी ढंग से संपन्न करवाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि एचटेट परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की गई है और अधिकारियों को परीक्षा के लिए केंद्रों पर सभी पुख्ता प्रबंध करने को कहा गया है ताकि किसी भी परीक्षार्थी को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि यदि किसी परीक्षार्थी को केंद्र में निर्धारित समय पर पहुंचने में कोई दिक्कत आती है तो वह डायल 112 पर कॉल कर सूचित करें, पुलिस उनकी सहायता करने के लिए तत्पर रहेगी। सुचारू ढंग से परीक्षा संपन्न करवाने के लिए बोर्ड मुख्यालय पर नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। इसके अलावा जिला एवं मुख्यालय स्तर पर भी उड़न दस्ते गठित किए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों के बाहर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लगाने और परीक्षा प्रारंभ होने से 3 घंटे पूर्व आसपास फोटोस्टेट की दुकानें पूर्ण रूप से बंद रखे जाने की हिदायत की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन जिलों के परीक्षार्थियों के केंद्र दूसरे जिलों में बने हैं उनके लिए परिवहन विभाग को निर्धारित रूट पर चलने वाली बसों के अलावा परीक्षा के समय अतिरिक्त बसों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहादुरगढ़ तथा महेंद्रगढ़ में ही उपमंडल स्तर पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। गौरतलब है कि बोर्ड द्वारा यह परीक्षा 4 व 5 जुलाई को 3 चरणों में ली जाएगी। मौसम विभाग ने कहा है कि आगामी 2 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में पहुंचने की संभावना है। इस बीच चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा में रात और आज सुबह कई जगह पर बारिश हुई है। मौसम विभाग के चंडीगढ़ केंद्र के अनुसार 7 जुलाई तक दोनों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में कहीं कहीं 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। आज जीएसटी दिवस के अवसर पर फरीदाबाद में केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर सीजीएसटी आयुक्तालय द्वारा एक समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कर अनुपालन, समय पर कर भुगतान तथा राजस्व संवर्धन के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले करदाताओं को सम्मानित किया गया। सीजीएसटी फरीदाबाद के आयुक्त रियाज अहमद ने व्यापार एवं उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए विभाग पारदर्शी, सरल और करदाता अनुकूल प्रशासन के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

0: chikum, chika chikum, dum dum da, chika chikum, dum dum da, chika chikum, dum dum da, chika chikum, dum dum da. चित्रपट कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में स्वागत है। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं आशा भोसले और उदित नारायण की आवाज़ों में फिल्म प्यार तो होना ही था के इस गीत के साथ, जिसे लिखा है समीर ने और संगीतबद्ध किया है जतिन ललित ने।
1: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
2: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

अभी आपने सुना समीर का लिखा ये गीत आशा भोसले और उदित नारायण की आवाज़ों में। फिल्म का नाम था प्यार तो होना ही था। आइए अब सुनते हैं फिल्म तुम बिन से ये शीर्षक गीत चित्रा की आवाज़ में। शब्द रचना फैज़ अनवर की, संगीत निखिल और विनय का।

अभी आपने सुना निखिल और विनय का संगीतबद्ध ये गीत फिल्म तुम बिन से। गायक कलाकार थी चित्रा और गीतकार थे फैज़ अनवर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत साधना सरगम और उदित नारायण की आवाज़ों में, बोल आनंद बख्शी के संगीत वीजू शाह का। फिल्म का नाम प्यार इश्क मोहब्बत।

0: अभी आपने सुना साधना सरगम और उदित नारायण की आवाज़ों में ये गीत फिल्म प्यार इश्क और मोहब्बत से। इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीतबद्ध किया था वीजू शाह ने। श्रोताओं अब सुन लेते हैं कुछ संदेश।
1: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल हर घर और हर जन हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार हो जाए समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म परवाना से। गायक कलाकार साउथ खान और प्रभा भारती, गीतकार अफसर, संगीतकार संजीव दर्शन।

आकाशवाणी रोहतक से अभी आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। श्रोताओं, देरी ना करते हुए आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति सोनू निगम, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ों में। शब्द रचना जावेद अख्तर की, संगीत प्रीतम का। फिल्म का नाम मेरे यार की शादी है।

अभी आपने सुना जावेद अख्तर का लिखा ये गीत सोनू निगम, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ों में। फिल्म का नाम था मेरे यार की शादी है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म फर्ज से। गायक कलाकार लता मंगेशकर, गीतकार समीर, संगीतकार उत्तम सिंह।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म बादल से। गायक कलाकार हैं सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति, गीतकार समीर, संगीतकार अनु मलिक।

अभी आपने सुना सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में फिल्म बादल से ये गीत। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति उदित नारायण और सुजाता की आवाज़ों में फिल्म हलचल से, शब्द रचना समीर की, संगीत विद्यासागर का।

0: district and under the Panvel Municipal Corporation. Schools in Palghar and in Raigad, some talukas including Alibag, Panvel, Uran, Shrivardhan, Masla, Tala and Polatpur have also remained closed today as a precautionary measure. Fishermen have been advised not to venture into the sea. Nivedita, AIR News, Mumbai.
1: A powerful storm swept across Romania's capital Bucharest and 20 counties yesterday, leaving one person dead and causing widespread damage. Emergency services said nearly 2,000 calls for assistance were received in Bucharest alone, where several metro stations were flooded. The storm also affected around 60 towns and villages outside the capital, damaging dozens of homes and vehicles. In Ukraine, 13 people were killed and dozens of others injured after Russian drones and missiles hit residential buildings in Kiev as part of a broader wave of Russian overnight attacks. In the FIFA World Cup, Belgium staged a stunning comeback to beat Senegal 3-2 after extra time in the round of 32 and qualify for the round of 16. Co-hosts US registered their first win in the knockout round after 2002. This morning, they defeated Bosnia-Herzegovina 2-0 in the round of 32 to advance into the round of 16, where they will take on Belgium. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.5% up in the afternoon session today. The Sensex rose 402 points at 77,325, while the Nifty advanced 129 points to 24,135 when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi. Both countries signed several agreements, including in economic and energy security, pharmaceuticals and AI. Prime Minister Modi says India-Japan bilateral relationship has stood the test of time. India's proposal for comprehensive convention on international terrorism gains renewed support at UN General Assembly. Sri Amarnath Ji Yatra begins with first batch of pilgrims leaving Bhagwati Nagar base camp in Jammu. Southwest monsoon covers entire Delhi, advances further across parts of northern and western states. In the FIFA World Cup, United States registers first knockout stage win since 2002, defeating Bosnia-Herzegovina 2-0. Belgium also enter round of 16 in extra time victory over Senegal. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए श्री मोदी ने कहा भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू दक्षिण पश्चिम मॉनसून की दिल्ली में दस्तक उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा फीफा विश्व कप में अमेरिका ने बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की बेल्जियम ने सेनेगल को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया अब समाचार विस्तार से भारत और जापान ने आर्थिक तथा ऊर्जा सुरक्षा फार्मास्यूटिकल्स रक्षा तथा एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की सम्मेलन में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है श्री मोदी ने कहा कि इस परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत और जापान ने एआई के क्षेत्र में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा
3: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि

0: टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत जापान जैव गैस पहल के माध्यम से भारत में 1000 जैव गैस और जैविक उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे भारत के गांवों में स्थिरता, समृद्धि और ग्रामीण आजीविका को नई शक्ति मिलेगी।
0: भारत और जापान दोनों इकोनॉमिक सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी का महत्व अच्छी तरह समझते हैं। इसी दिशा में आज हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक ज्वाइंट रोड मैप तैयार किया है। इसके माध्यम से हम सेमीकंडक्टर, क्वांटम और एडवांस मटेरियल जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत करेंगे। एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी इंडिया जापान बायोगैस इनिशिएटिव के माध्यम से हमें भारत में 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स लगाने में सहायता मिलेगी।
1: इससे पहले आज प्रधानमंत्री तकाईची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के लंबे समय से चले आ रहे प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से समर्थन मिला है। 140 सदस्यों द्वारा अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में सदस्य देशों से आग्रह किया गया है कि वे भारत द्वारा 3 दशक पहले प्रस्तावित सम्मेलन को अंतिम रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करें। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सर्वमान्य कानूनी ढांचे का अभाव वैश्विक आतंकरोधी प्रयासों को कमजोर करता है। उन्होंने आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंड न अपनाने पर बल देते हुए अपराधियों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया।
2: India has been a victim of cross-border terrorism for decades.
3: भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है। हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
1: अमेरिका, इसराइल और अर्जेंटीना ने प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। 4,822 श्रद्धालुओं का पहला जत्था, जिसमें बालटाल रूट के लिए 2,312 और पहलगाम रास्ते के लिए 2,510 लोग शामिल थे, 147 गाड़ियों के काफिले में रवाना हुए। ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, विकसित भारत जयराम जी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ आज तिरुपति जिले के मुक्कावरीपल्ले गांव में विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब मजदूर बेरोजगार न रहे और सभी को रोजगार मिले।
4: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जी राम जी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कह रहे, पहले साल ही विकसित भारत जी राम जी योजना में

0: ने कहा है कि भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक से दूसरी तकनीक की जगह नहीं ले रहा है, बल्कि इससे टिकाऊ औद्योगिक इकोसिस्टम का निर्माण हो रहा है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विकसित भारत के लिए देश को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब बनाने पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ तथा संतुलित विकास के साथ जीवन को सुगम बनाने के प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत मॉनसून के मौसम में 21 लाख पौधे लगाए जाएंगे। जिले में विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रांची के लोकभवन में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर संबंधित मुख्य चुनाव अधिकारी रवि कुमार और जिला चुनाव अधिकारी मंजुनाथ भजंत्री को सौंपा। उपराज्यपाल ने देश के सभी योग्य पात्रों को जनगणना प्रपत्र सही समय पर भरने की अपील की। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब मदपटना गांव स्थित कावेरी क्रशर पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान नीचे खदान में गिर गया, जहां मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉ. जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने ISI प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ISI हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों में तथा मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर भागों में पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली में बारिश से गर्मी और उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन में मॉनसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की उम्मीद है। वहीं पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों के लिए तेज बारिश की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में मॉनसून के आगमन से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है और राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई है।
1: दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार से ही आधिकारिक तौर पर प्रदेश में दाखिल हो चुका है और ट्रफ लाइन आजमगढ़, बरेली और अयोध्या जिलों से होकर गुजर रही है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को लंबे वक्त से पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिली। सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, सहारनपुर और संभल में बहुत भारी बारिश हुई, जिससे कुछ क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि दिन के तापमान में भी गिरावट आई। ये बारिश किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जो धान की बुआई में देरी के कारण बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे थे। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है और कहा है कि राज्य भर में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए मौसम के हालात बेहतर बने हुए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: महाराष्ट्र में आज लगातार दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश जारी रही।
2: मुंबई में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव हो गया है, यातायात धीमी पड़ गई है और उपनगरीय रेल सेवाएं कुछ मार्गों पर प्रभावित हो रही है। लगातार बारिश के चलते पवई लेक पूरी तरह भर चुका है। मुंबई विश्वविद्यालय ने पालघर जिला तथा पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र के महाविद्यालयों में आज होने वाली परीक्षा रद्द कर दी है। मौसम विभाग ने उत्तर महाराष्ट्र तथा दक्षिण महाराष्ट्र गोवा तट पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: कनाडा के अधिकतर क्षेत्रों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। वहीं कुछ क्षेत्रों में बारिश और बाढ़ की समस्या बनी हुई है। ओंटारियो, क्यूबेक, प्रेरीज और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज के कुछ हिस्सों के लिए गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, बाहरी गतिविधि

0: बीमारियों से बचने और वरिष्ठ नागरिकों तथा बच्चों का ध्यान रखने की सलाह दी है। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलेमंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की। अब अमरीका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में सेंसेक्स 402 अंक के साथ 77,325 के उच्चतम स्तर पर और निफ्टी 129 अंक बढ़कर 24,135 पर आ गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत। दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है किसान भाइयों के लिए हमारे दैनिक कार्यक्रम खेत खलिहान।

0: कार्यक्रम सुननी है सारे बण भाइया ने दलजीत भाई की। राम राम। किसान भाइयों, कई दिन तक लगातार गर्मी पड़े थी, लेकिन ये काल तय मान के चलने तो मौसम कुछ गिरावट में है। हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हुई है, कुछ क्षेत्र में थोड़ा सा ठीक ठाक हुई भी है बारिश, ऐसी बात नहीं है, लेकिन न्यू मान के चलो कि शुरुआत होगी तो हो सके ही लगातार बारिश का आना जाना लगे रहे। और मौसम में इतनी राहत मिल जाए है तो अपने पशुओं ने, अपने थोड़ी बहुत जो चारे की फसल है उन ने, या फिर हम कोई फसल का बुआरा करना चाहा उसकी खातिर, या न्यू कैस कहा कि धान जिसी फसल की भी रोपाई करना चाहा तो उसमें भी बतेरा फायदा इस तरह की बारिश कर दे है। ई भैया का मन था कि भाई रोपाई करेंगे, मौका लग दें, प्योद बो रखी हैं, जिनकी प्योद हो रही हैं वो तो रुपाई कर भी दी ना तो, लेकिन जिनकी प्योद नहीं हुई है वो बिल्कुल बाट में बैठे हैं। और एक बात होया करे कि भाई बारिश हो जाएगी, देखो सब कदोर तो पानी के साधन नहीं है, इतने तगड़े साधन नहीं हैं कि भाई अकेले अपने खुद के पानी का काम चला ले, लेकिन पहले देख दो बारिश की मांग किसान भाई करे करें, और जैसे ही बारिश शुरू हो जाएगी तो उससे टाइम फिर एकदम तो भाइयों का रुझान बन जाएगा, भाई जिसने भी लगाने वो फटाफट लगाने की कोशिश करेंगे। तो आज की चर्चा भी अपनी ये रखेंगे कि भाई धान की रोपाई उसमें की कुछ बातें ध्यान करना है, लेकिन उससे पहले ये ध्यान करवा दें कि जिन भाइयों ने चारे की फसल बो रखी थी, इस तरह की बारिश हो जाए है तो थोड़ा सा पानी की भी पूर्ति उसमें हो जाए है, और नहीं तो अगर ज़रूरत है तो पानी की पूर्ति उसमें कर दें, एक दो पानी देना पड़े तो दे दें, उसमें कोताही ना बरतें, उसमें हरकत ना करें, क्योंकि आगे जाके तो फिर बारिश होनी शुरू हो जाएंगी, फिर घना सा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक शुरुआती मौका ही सहाया करें कि जिस टाइम पर पानी देना बहुत ज़रूरी होया करें। इस टाइम पर हम पानी नहीं देंगे तो चारा कमज़ोर रह जाएगा, और कमज़ोर हमारी वो फसल रह जाएगी तो उतनी पैदावार नहीं बन पाओगे, ना वो गुणवत्ता बनेगी। तो एक आध पानी की जो ज़रूरत पड़े है, कितने कोई ज्वार बो रखे है, कोई मक्का बो रखा है, कोई बाजरा बो रखा है, और कोई लोबिया बो रखा है, कोई इस डाल का कोई घास हमने बो रखा है, तो उसमें पानी की पूर्ति जरूर कर दे, क्योंकि पूरे साल पशुओं ने हरा चारा चाहिए उसकी कोशिश हमारी रहे है, ये कोशिश हमारी हर टाइम रहे है कि भाई पशु ने पूरे साल हरा चारा मिल जाए, उसकी खातर हम तो कुछ भी बोआ। फसल बदल के बोले हैं, किसी टाइम बरसम का मौका है, किसी टाइम ज्वार का है, कोई बाजरा का है, कुछ भाई नैपियर घास बोले हैं जो लगातार चलते रहे है, इस तरह अलग भी कुछ सारे हैं वो बोक है, और पशुओं की हरा चारा पूरे साल मिलता रहा है इसकी चिंता हमने रहे है। तो ईब तो इतना ध्यान दवाना था, और कोई जो चारा संबंधी फसल है उनमें कोई घनी सी कोई दिक्कत परेशानी बीमारी नहीं आया करती, और आ भी जहाँ तक सलाह यह दी जाया करे कि उसमें कोई रासायनिक छिड़काव नहीं करना चाहिए, भाई उसमें मान ले छिड़काव करे हैं फिर वो चारा पशुओं ने खिलाओ है वो नुकसानदायक साबित हो जाएगा, उसका तो ऐसा है भाई टाइम पे अपना पानी आ जा और ठीक ठाक उसकी बढ़वार हो जा, काट के पशुओं ने थोड़ा सा छोटा रह रहा कोई बात नहीं, उसने काट के पशुओं ने चराने की कोशिश करें। जिन भाइयों ने हरी खाद बनाई है उन कुछ ने तो भाई अपना उसका निपटारा कर दिया, बाद ही अपना जमीन में मिला दी है, और जिनकी रवे है तो वो ही तैयार हो लें, उसने जमीन में मिला कर चाहे ढेंचा बो रखे, मूंग बो रखे, कुछ भी बो रखी है, तो अपना अगली फसल की तैयारी करें। इब अगली फसल में जिक्र करा तो आज की चर्चा का विषय भी बताया था धान की रोपाई का, तो धान उस खेत में बोना चाहिए, पहले तो ये ध्यान में करने की बात है कि जित आम पानी की पूर्ति कर सका। कई बार देखा है कि ड्योड़ लगता भाई धान में तो पानी देने लग रहे हैं और ज्वार बाजरा सूखन लग रहा है, वो ठीक नहीं है किसान भाइयों। चलो ठीक है नकदी फसल है, 10 रुपया का फायदा हो जाए अच्छी बात है, लेकिन बने के है कि जो चारा वाली फसल है वह सूखन लग रही हैं और उसके साथ साथ हम इतना पानी देने लग रहे हैं, बार बार धान में पानी देने लग रहे हैं, लेकिन फिर भी वो पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो इसकी बजाय एक पहला तो दिमाग में ये बात रखनी चाहिए कि हमारे पास पानी कितना है, नहर का पानी कितना है, ट्यूबवेल का पानी कितना है, कितना है तो पानी फिर किसा है ट्यूबवेल का। अपने प्रदेश की बात करें तो गणे से बढ़िया पानी नहीं है जो जमीन के हैं, कुछ क्षेत्र छोड़ देते न्यून करनाल यमुनानगर उस साइड में बाड़ा जहाँ तो न्यून तो है थोड़ा सा पानी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अपना रोहतक जींद पानीपत यू एरिया न्यून देखें तो शारका नहीं, तो इसमें इतने बढ़िया नहीं है, ठीक है अपना काम चला दें, ऐसी बात नहीं है। और कुछ क्षेत्र तो भी विषय हैं कि बहुत ज़्यादा नीचे तो पानी लेना पड़ा है, चलो तकनीकारी है, आज तो समरसेबल का साधन ही से हैं, ज़मीन के नीचे तो कितने खुदाई करके हम पानी काट सका, पहले तो कोई वाला सिस्टम था, बड़ी परेशानी थी। तो पहले तो यो देखें कि हमारा खेत किस हिसाब का है, हम उसमें पानी की पूर्ति कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, कदे धान की रोपाई करके देखी है तो उसमें ठीक ठाक रहा कि नहीं रहा। ईब जितनी की मेहनत उसमें करनी है और जितनी की दूसरी फसल हम करनी है उसका दोनों का हिसाब लगा कर जब मन बनाओ कि हमने इस खेत में रोपाई करनी है। चलो रोपाई करनी है तो किस किस बात का और ध्यान करना है वो जिक्र करेंगे, लेकिन उस पहले एक रागनी सुन लिया, गायक कलाकार रहेंगे जोगिंदर मलिक और उनके साथी और केसारा का राजा हरिश्चंद्र का।
1: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ, हर दिल हर घर और हर जन हर वर्ग को जोड़ने का है साधन, विश्वसनीय असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर, हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाए समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
3: लाया खुशहाली इफ्को नैनो यूरिया।
4: पेश है किसानों के लिए दुनिया का पहला तरल नैनो यूरिया इफ्को नैनो यूरिया। अब खेती की लागत कम, आधा लीटर बोतल में एक बोरी यूरिया का दम।
5: तो किस्सा राजा हरिश्चंद्र, बात उस समय की है कि जिस समय राजा हरिश्चंद्र का लड़का सर्प दस लेता है और एक बात के द्वारा कैसे क्या बात होती है, कैसे क्या बता दिया भला।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम,
1: जी
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
5: भैया ने रागनी सुनी थी जोगिंदर मलिक और उनके साथियों की गाई ओड़े, और उसके बाद कुछ विज्ञापन भी सुन लिए और कुछ बातचीत करेंगे, उसके बाद फिर एक रागनी और इन्हें के बाद में सुनाएंगे। जिक्र चला था धान की रोपाई का। धान की रोपाई में खेत ने एक सार करके पहले एक सार कर लें, उसके बाद फिर उसमें पानी दे के कद्दू करें। जिन्हें डायरेक्ट सीधी बिजाई करनी थी वो भाई कर चुके पहले, वो भी तरीका ठीक है, लेकिन जिसने रोपाई करनी है वो तो ये अपना खेत ने तैयार करके उसमें कद्दू करें, कद्दू करके फिर रोपाई का काम शुरू करें। रोपाई की खातर न्यू देख लें कि ज़्यादा नज़दीक नज़दीक भी अगर पौधे लगाए हैं वो भी फायदेमंद नहीं होया करते। एक व्यांछी का हिसाब से लाकर चल लिया करें कि पौधे से पौधे की दूरी और जो लाइना का फासला है वो इतना करे जा, उसमें आगे जाकर फिर जब बाया लाओगे तो फैलाव भी उसका ठीक हो जाएगा। और खरपतवार ना हो उसकी खातर तुरंत बाद छिड़काव करना हो है वो भी करके छोड़ दें, और जो भी शुरुआती जो खुराक देनी है वो साथ के साथ दे दें, यो काम करके छोड़ दें। उसके बाद फिर कम से कम हफ्ता 10 दिन तक देखें कि भाई पानी रुका रहे, दरार ना खोलो उसमें। जब उसे टाइम दरार खुल जाएंगी ना तो फिर पानी नहीं रुकेगा, अगर पानी नहीं रुकेगा तो फिर वो पौधे नहीं जागेंगे। इतना ज़रूर कर लें कि भाई जो भाई प्योद पढ़ने वाले हैं उनकी निगरानी कर लें। खुद तो देखो यो काम ज़्यादा से हम नहीं कर पाते, जो काम करने वाले भाई हैं उनते 10 रुपये देकर अपना यू काम करवा। हाँ चलो खुद नहीं करते तो इतना निगरानी जरूर कर लें कि जो प्योद पाड़न लाग रहे हैं तो कोई जड़ ना टूट गई हो जमीन में, वो सीधा खाई वो पौधा ईसा लगा दें जिसके जड़ टूट रही हो, उसका तो कोई फायदा है नहीं। कई बार किए करें कि भाई कई कई पौधे भी ला दिया करो, उसका भी कोई घना सा फायदा नहीं होया करता। कद न्यू माना कि कई पौधे ला दिए तो उसमें कोई घनी मोटे आग जाकर फूट लिकड़ेंगी ना, वो नहीं होया करता। पौधा तो एक लाग गया वो बहुत है, आग जाकर उसकी संभाल जब बढ़िया हो जाएगी तो उस समय बहुत सारी फूट लिकड़ जाएंगी। यो देखना है घनी नज़दीक भी ना लागें, और जो लगाने वाले भाई हैं वो थोड़ा सा लोभ कर लिया अगर थोड़ा काम चल जाएगा भाई खेत में तो जल्दी निकलेंगे पैसे मिलेंगे, तो वो थोड़ा सा दूर दूर भी पौधे ला दिया करें, वो भी ना करें। और एक बात का और ध्यान करें कि थोड़ी सी उससे किस्म की वाय पौधे एक दो जूटी बचा कर जरूर रख लें। 10 दिन में 5 दिन में पता चल जाएगा कोई पौधा मरे है, कितने ऊपर नीचे है, कोई ज़्यादा पानी में है, कोई कमज़ोर पौधा है, वो अगर ख़राब हो जाए तो तुरंत बाद रोपाई कर दें ताकि फिर खेत में पूरे पौधे हो जाएं। कई बार बने कि है कि हमें रोपाई करवा दें हाँ और उसकी प्योद को रख दे, और फिर कोई पौधा मर जाए है दूसरी लगावा हाँ तो वो बीज में बदलाव आवा है, ना लगावा तो वो खेत खाली रह जाए। तो एक दो जूटी रख लें, और जब ये भाई काम करने वाले हैं जो लगावा हैं इनकी थोड़ा सा निगरानी बहुत ज़रूरी है, इनके साथ रह कर इन्हें बता कर भाई इस तरीके से इतना थोड़ा सा फासला लेकर और लगाओ ठीक ठाक कोने काने सारे अपना कसी से पहले बाकर संभाल के और उन्हें ठीक कर दे, घास फूस नहीं होना चाहिए। और एक बात और भाई ने कहा हाँ कि जो डोड़ा पर जो दवाई मारे हैं ना या ना मारें या नुकसानदायक है, इस तरह जमीन है वो कमज़ोर हो जाए है, इसका फोका डोड़ा हो जाए है, फिर जब हम चलना है ना तो पैर भी दसे हैं उसमें, और वो जहर है वो खेत के अंदर जावे है, जब उसमें पानी आओगा ना तो उसका असर जाओगा। ये बनाई तो थी किसी और के काम की खातर के भाई जित गणा घास फूस उस जगह मारन खातर, लेकिन हम इतने आलसी हो गए कि हम इसका प्रयोग ही जगह जगह करने लगे, तो थोड़ा सा एक विचार करें कि इतना जो तगड़ा जहर है जो क्या ही नहीं छोड़ता, तो उसका छिड़काव गुणा सा करना ठीक भी नहीं रहेगा। चलो टाइम रहेगा तो बातचीत और भी करेंगे। जिक्र चलिया थे रागिनी का गायक कलाकार एक बार फिर जोगिंद्र मिलकर उनके साथी।
2: तो किस्सा राजा हरिश्चंद्र, तो आगे रानी क्या कहती है, एक बात के द्वारा कैसे क्या बता दिया भला।

ये कुछ दिन बिना है वो ये मन है गर्भण है वो ये मन है गर्भ्रह्मण के ठारी ने बेटा डस लिया।

खाया दस्या ईसा जरी ने मैं दुखिया के खेल लाठी चोट मारी इस गरी ने सारी कसी सुख

किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम खेत खलिहान। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 3 बज चुके हैं। इसी के साथ हमारी दूसरी सभा के कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होते हैं। हालांकि एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुनते रहेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रमों का रिले। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर शाम 5:30 पर तीसरी सभा में आपसे फिर भेंट होगी।

67 मीटर यानी 1143 किलो हॉर्स पर आकाशवाणी का यह रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम की 5:30 और 10 सेकेंड हुए हैं। अब हमारी आज की तीसरी सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम युवा संसार।

कार्यक्रम युवा संसार सुन रहे हमारे सभी श्रोताओं को आपके साथी हर्ष का नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है साथियों। और कार्यक्रम की शुरुआत में आज हम बात करेंगे शिमला समझौता वर्षगांठ के बारे में। भारत और पाकिस्तान के संबंधों के इतिहास में शिमला समझौता एक महत्वपूर्ण घटना है। और साथियों, यह समझौता 2 जुलाई 1972 को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हमारी उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति बाद में बने प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में हुआ था। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करना था और भविष्य में विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना था। हर वर्ष 2 जुलाई को इसकी वर्षगांठ हमें शांति, संवाद और सहयोग का महत्व याद दिलाती है साथियों। और सन 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। इस युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच तनाव कम करने और अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए शिमला में वार्ता आयोजित की गई। कई दौर की बातचीत के बाद 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। शिमला समझौते के प्रमुख बिंदु अगर हम देखें तो भारत और पाकिस्तान अपने सभी विवादों का समाधान शांतिपूर्ण बातचीत से करेंगे। दोनों देश एक दूसरे की संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेंगे। दोनों देश अपने आपसी संबंधों को बेहतर बनाने और तनाव कम करने का भी प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ साथियों, शिमला समझौता केवल एक ऐतिहासिक दस्तावेज ही नहीं है, बल्कि शांति और संवाद का प्रतीक है। इसकी वर्षगांठ हमें याद दिलाती है कि मतभेद चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हों, उनका समाधान बातचीत, धैर्य और पारस्परिक सम्मान से किया जा सकता है। शांति ही प्रगति का आधार है और संवाद ही स्थायी समाधान की सबसे सशक्त माध्यम बन सकती है। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं साथी, और जैसा कि आप सभी जानते हैं आज है वीरवार का दिन और आज के दिन हम लेकर आते हैं आपके लिए कार्यक्रम वार्तक का। उससे पहले सुन लेते हैं एक गीत जो लिया गया है फिल्म किस्मत कनेक्शन से। आवाज़ें हैं मोहित चौहान और श्रेया घोषाल की, गीतकार हैं सैयद कादरी और संगीतकार हैं साजिद वाजिद। लीजिए साथियों, सुनिए।

और साथियों, अभी आपने सुना ये गीत फिल्म किस्मत कनेक्शन से। आवाज़ें थीं मोहित चौहान, श्रेया घोषाल की, गीतकार थे सैयद कादरी और संगीतकार थे साजिद वाजिद। कार्यक्रम में साथ ही साथ साथियों बात करते हैं विश्व पत्रकार खेल दिवस के बारे में, जिसे हर वर्ष 2 जुलाई यानी कि आज के दिन मनाया जाता है। और इस दिवस का उद्देश्य साथियों खेल पत्रकारिता के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना है। खेल पत्रकार अपने निष्पक्ष और सटीक समाचारों के माध्यम से खिलाड़ियों की उपलब्धियों, संघर्षों और खेल जगत की महत्वपूर्ण घटनाओं को लोगों तक पहुंचाते हैं। विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाने की शुरुआत 2 जुलाई 1994 से हुई थी और यह दिन अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रेस संघ की स्थापना की स्मृति में मनाया जाता है, यानी कि AIPS की स्थापना।

0: 2 जुलाई 1924 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई थी और ये संगठन विश्व भर के खेल पत्रकारों को एक मंच प्रदान करता है और खेल पत्रकारिता के विकास के लिए भी कार्य करता है। आज डिजिटल मीडिया, इंटरनेट और सोशल मीडिया के कारण खेल पत्रकारिता पहले से अधिक प्रभावशाली हो गई है। अब खेलों की खबरें, लाइव अपडेट, विश्लेषण और साक्षात्कार कुछ ही क्षणों में दुनिया भर के लोगों तक पहुंच जाता है। इसके साथ ही पत्रकारों की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है कि वे सत्य, निष्पक्ष और प्रमाणिक जानकारी ही प्रस्तुत करें। विश्व खेल पत्रकार दिवस हमें साथियों याद दिलाता है कि खेल पत्रकार केवल समाचार ही नहीं देते हैं बल्कि खिलाड़ियों के संघर्ष, मेहनत और सफलता की प्रेरणादायक कहानियां भी समाज तक पहुंच जाते हैं। उनका कार्य खेल संस्कृति को मजबूत बनाने और युवाओं को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। साथ ही साथ इसलिए हमें खेल पत्रकारों के योगदान का सम्मान करना चाहिए और सत्य निष्ठा के साथ पत्रकारिता को प्रोत्साहित करना चाहिए। साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज वीरवार का दिन है और आज की हमारी मेरी पसंद की इस वार्ता कार्यक्रम में विषय रहेगा युवा योगदान से बनेगा देश महान और वार्ताकार हैं इसमें स्वाति शर्मा। लीजिए साथियों, सुनिए ये वार्ता।
1: युवावस्था जीवन का वसंत है, यह खोज और सपनों की उम्र है। दोस्तों, आज भी हमारा देश एक प्रगतिशील देश है, अनेक समस्याओं से जूझ रहा है। यह समय है जब हम युवक युवतियों को अपनी सूझबूझ और दृढ़ संकल्प से समाज को भ्रष्टाचार, भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, प्रदूषण और गरीबी जैसी समस्याओं की बेड़ियों से बाहर निकालकर एक समृद्ध और विकसित देश बनाने में अपना योगदान देना होगा। आज हमें खुद से यह सवाल करना होगा कि क्या हम केवल उम्र से जवान हैं या हम में सचमुच नया मार्ग खोजकर उस पर चलने की हिम्मत है। हिम्मत की बात भी न करें तो उससे कहीं गहरी जरूरत है नई दृष्टि की। ये दृष्टि हो तो हिम्मत अपने आप ही आ जाती है। सिर्फ नाम की देशभक्ति से काम नहीं चलेगा, युवाओं को ठोस मार्ग और दिशा चाहिए। रोजगार के लिए शिक्षा और जीवन के लिए शिक्षा में क्या आप अंतर समझते हैं? शिक्षा से जो आशय है, जिस तरह की स्वतंत्र चेतना का जन्म इससे होना चाहिए और जिस तरह की आत्मनिर्भरता इससे आनी चाहिए, क्या वो आ रही है? युवाओं में चेतना और उत्तरदायित्व की भावना को जागृत करने का संसाधन है शिक्षा। शिक्षा जीवन का वह आईना है जिसे पाकर युवा अपनी योग्यताओं और क्षमताओं को प्रतिबिंब के रूप में देख पाते हैं। यही प्रतिबिंब युवाओं के व्यक्तित्व के विकास का सही मार्गदर्शन करते हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य केवल संपत्ति जुटाकर सांसारिक आनंद उठाना नहीं, बल्कि अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास कर देश की रक्षा व विकास के लिए सहयोगी बनकर विश्व कल्याण की भावना से विश्व में शांति स्थापित करने में हमारे जीवन का योगदान हो, ऐसा हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ऐसी भावनाओं को अपने अंदर उजागर करके ही हम युवा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा दिए गए भारत विजन 2020 को पूरा कर पाएंगे। भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए मुख्यतः 5 क्षेत्रों में विकास पर जोर दिया गया है। यह 5 क्षेत्र हैं: कृषि, बुनियादी सुविधाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी एवं महत्वपूर्ण प्रौद्योगिक और सामरिक उद्योग। भारत के इस विजन को पूरा करने के लिए हम सबको निस्वार्थ भावना से कंधा मिलाकर अपना उत्तरदायित्व निभाना होगा। तभी हम अपने आने वाली पीढ़ी को अपनी कार्य योजनाओं और भावनाओं से प्रेरित करके एक सही दृष्टिकोण को उनकी आंखों में उजागर कर एक उज्ज्वल भविष्य का निर्माण कर पाएंगे। युवा काल का यह समय दृढ़ संकल्प, महत्वाकांक्षा और ऊर्जा से परिपूर्ण होता है। युवा शक्ति का सही मार्गदर्शन अत्यंत आवश्यक है। वास्तव में युवा वर्ग ही निर्माण व विनाश की नींव डालते हैं। आजकल डिग्रियां और नौकरियां पाने की लालसा में एवं एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में नकल और भ्रष्टाचार जैसे गलत विकल्पों को अपनाकर शिक्षा का स्तर गिराया जा रहा है।

0: और बेरोजगारी बढ़ रही है। इस समस्या से जूझते हुए युवक तो मानसिक तनाव से ग्रस्त हो जाते हैं। हमारी नई पीढ़ी को यह सत्य भली भांति समझना होगा कि सफलता जादू से नहीं मिलती, सफल होने के लिए जरूरी है कौशल। केवल डिग्रियां एकत्रित करना ही शिक्षित होने की निशानी नहीं है, अपितु वास्तविक शिक्षा आंतरिक प्रगति पर आधारित होती है, जो उनमें आत्मविश्वास विकसित करे। सही शिक्षा से ही युवाओं का मानसिक विकास किया जा सकता है। किसी भी राष्ट्र को विकसित एवं सर्वशक्तिमान बनाने के लिए वहां के युवाओं में जरूरी कौशल और अनिवार्य शिक्षा का होना अति आवश्यक है। युवा ऊर्जा किसी भी देश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास को गति देने वाली ताकत होती है, बशर्ते उसे प्रभावी रूप से दिशा दी जाए। कौशल विकास और रोजगार इस ताकत को आगे बढ़ाने के सबसे अच्छे साधन हैं। इसी मिशन को ध्यान में रखते हुए देश के माननीय प्रधानमंत्री ने कौशल विकास योजना प्रारंभ की है, जिसके तहत 24 लाख युवाओं को प्रशिक्षण के दायरे में लाए जाने का वायदा है। कौशल परिदृश्य को आकार देने के लिए सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं। स्कूली शिक्षा छोड़ने वालों के लिए शिल्पकार प्रशिक्षण योजना, हथकरघा के लिए कौशल विकास योजना बनाई गई है। साथ ही महिलाओं एवं किशोरियों के लिए सबल राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थान योजना जैसी अनेक योजनाएं बनाई गई हैं, जिनका हमारे युवाओं को अपनी रुचि के अनुसार लाभ उठाकर खुद को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। कहा भी गया है, भूखे को मछली पकड़कर देने के बजाय उसे मछली पकड़ना सिखाया जाए। सौभाग्य से इस समय हमारे पास अतुलनीय युवा मानव संसाधन है। भारत विश्व का सबसे बड़ा युवा देश है और देश की 62% आबादी कामकाजी आयु वर्ग की ही है। भारत में इस कार्यबल में 32% तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। रोजगार के लिए उपयुक्त कौशल प्राप्त करके ये युवा परिवर्तन के प्रतिनिधि हो सकते हैं। इस नीति के जरिए उच्च गुणवत्ता वाले कार्यबल के साथ विकास को बढ़ावा देने की रूपरेखा तैयार की जा रही है। सरकार द्वारा आरंभ की गई इस योजना से लाभान्वित होकर हमारे युवा न केवल अपनी जीविका सुनिश्चित कर सकते हैं, बल्कि देश की प्रगति में भी भागीदार बन सकते हैं। युवा ही देश की गंभीर समस्याओं को अपनी सूझबूझ तर्क शक्ति से सुलझा सकते हैं। जनसंख्या पर विराम युवाओं की संपूर्ण साक्षरता से ही संभव है और इससे सुदृढ़ लोकतंत्र का निर्माण होगा। 21वीं सदी का गुरु मंत्र है, कामयाब होना है तो नया सोचो, कुछ हट के सोचो। अपनी सोच को पिंजरे में बंद करने की आदत मत डालो। अपनी तर्क शक्ति और रचनात्मकता से कुछ नया खोजो। अपना मौलिक चरित्र छोड़ उस चरित्र को मुखौटे की तरह मत ओढ़ो जो भीड़ को पसंद हो। भीड़ का मनोविज्ञान कभी रचनात्मक नहीं होता। भीड़ तो भीड़ है जो एक दूसरे का अनुसरण करती है, उसमें रोमांच नहीं होता, चुनौती नहीं होती। क्यों न हम अपनी पहचान अपनी विशेषता के बल पर बनाएं? तो चलो उठो और तब तक मत रुको जब तक कि अपना लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। तभी युवा योगदान से बनेगा देश महान।
1: साथियों, अभी आपने सुनी ये वार्ता, विषय युवा योगदान से बनेगा देश महान। वार्ताकार थे स्वाति शर्मा। कार्यक्रम में साथियों साथ ही साथ बात कर लेते हैं अच्छी आदतें जो कि एक बेहतर जीवन की ओर लेकर जाती हैं। मनुष्य का जीवन उसकी आदतों में बनता है। अच्छी आदतें हमें स्वस्थ, अनुशासित और सफल बनाती हैं, जबकि बुरी आदतें जीवन को कठिन बना सकती हैं। इसलिए कहा जाता है कि अच्छी आदतें ही बेहतर जीवन की नींव है। अच्छी आदतें हमारे व्यक्तित्व को निखारती हैं। स्वस्थ जीवन के लिए संतुलित भोजन करना, पर्याप्त नींद लेना, स्वच्छता का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। और साथियों, इन आदतों से शरीर स्वस्थ रहता है और मन प्रसन्न रहता है। स्वस्थ व्यक्ति ही अपने कार्यों को पूरी लगन से कर सकता है। विद्यार्थियों को समय का सदुपयोग करना चाहिए और प्रतिदिन पढ़ाई करनी चाहिए। गृह कार्य समय पर पूरा करना चाहिए और अपने शिक्षकों तथा माता पिता का भी सम्मान करना चाहिए। और साथियों, अच्छी आदतें एक दिन में नहीं

इन्हें नियमित अभ्यास, धैर्य और आत्म अनुशासन से विकसित किया जा सकता है। छोटे छोटे अच्छे कार्य जैसे समय का पालन करना, दूसरों की सहायता करना और सकारात्मक सोच रखना, धीरे धीरे जो है हमारी आदतें, जो कि अच्छी आदत है, उसमें हम ढल जाते हैं। अच्छी आदतें जीवन को सुखी, सफल और सम्मानजनक बनाती हैं, और यदि हम बचपन से ही अच्छी आदतें अपनाएं तो हमारा भविष्य उज्जवल होगा और हम समाज तथा देश के लिए उपयोगी नागरिक बन सकेंगे। और साथियों, अपनी अच्छी आदतें अपनाएं और बेहतर जीवन और उज्जवल भविष्य भी। चलिए साथियों, अब कार्यक्रम में सुन लेते हैं एक गीत जो लिया गया है फिल्म रहना है तेरे दिल में से। आवाज़ है केके की, गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं हैरिस जयराज। लीजिए साथियों, सुनिए ये गीत।

साथियों, अभी आपने सुना फिल्म रहना है तेरे दिल में से गीत। आवाज़ थी गीके की, गीतकार थे समीर और संगीतकार थे हैरिस जयराज। कार्यक्रम में साथ ही साथ साथ बात करती हैं कि कैसे प्रभावी संवाद करें। आज के समय में केवल अच्छा बोलना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि प्रभावशाली ढंग से अपनी बात रखना भी उतना ही ज़रूरी है। अच्छा संवाद हमारी पहचान बनाता है और आत्मविश्वास भी बढ़ाता है और लोगों पर हमारी एक सकारात्मक छाप छोड़ जाता है। प्रभावी संवाद की शुरुआत अच्छे श्रोता बनने से होती है। जब हम सामने वाले की बात ध्यान से सुनते हैं, तभी हम सही और समझदारी भरा उत्तर दे पाते हैं। बीच में टोकने के बजाय पूरी बात सुनना सम्मान का प्रतीक होता है। और साथियों, साथ ही साथ बोलते समय सरल और स्पष्ट और शुद्ध भाषा का प्रयोग करना भी उतना ही ज़रूरी है। और कठिन शब्दों की बजाय रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिंदी के शब्दों का प्रयोग करने से लोग हमारी बात आसानी से समझ पाते हैं। हम अपनी बात को छोटे और स्पष्ट वाक्यों में कहना अधिक प्रभावशाली रहेगा। और संवाद करते समय आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है। हमें स्पष्ट आवाज़ में बिना घबराए और विनम्रता के साथ बोलना चाहिए। चेहरे पर मुस्कान, आंखों से उचित संपर्क और सकारात्मक हाव भाव हमारी बात को और अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। एक अच्छा वक्ता वही होता है जो समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार अपनी भाषा और व्यवहार बदल सके। किसी से सम्मानपूर्वक बात करना, धन्यवाद कहना, कृपया जैसे शिष्ट शब्दों का प्रयोग करना तथा दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना एक अच्छे संवाद की पहचान है। और साथियों, अंत में हम यही कहेंगे कि प्रभावी और प्रभावशाली संवाद एक ऐसी कला है जो निरंतर अभ्यास से विकसित होती है। यदि हम ध्यान से सुने और सरल भाषा में बोलें और आत्मविश्वास बनाए रखें और सभी के प्रति सम्मान का व्यवहार करें, तो हम हर स्थान पर अपनी अच्छी छाप छोड़ सकते हैं। और यही सफल व्यक्तित्व और अच्छे नेतृत्व की सबसे महत्वपूर्ण पहचान होती है। और साथियों, प्रभावी संवाद के लिए ज्ञान भी उतना ही आवश्यक है। नियमित रूप से समाचार पत्र पढ़ना, अच्छी पुस्तकें पढ़ना और नए विषयों की जानकारी प्राप्त करना हमारे विचारों को समृद्ध बनाती है। और जितना अधिक ज्ञान होगा, उतना ही आत्मविश्वास के साथ हम अपनी बातें रख पाएंगे। चलिए साथियों, अब समय हो गया है कार्यक्रम को समाप्त करने का। और हमने बात की साथियों कार्यक्रम में आज बहुत से विषयों के बारे में, और प्रभावी संवाद कैसे करें, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है हमारे जीवन में, कि हम किस प्रकार दूसरों से कम्युनिकेशन करें। और आज के समय में, डिजिटल युग में, जहां इंटरव्यूज़ वगैरह हमारे जीवन की एक हिस्सा बन गई हैं और बहुत सारी जॉबों के लिए जो है इसमें हम प्रयास करते हैं, उसमें हमारा संवाद सबसे ज़रूरी कड़ी होता है। चलिए साथियों, अब समय हो गया है कार्यक्रम को समाप्त करने का। फिर मिलेंगे किसी अन्य कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आपने सुना कार्यक्रम युवा संसार, आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। ये समाचार दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने आज नई दिल्ली में वार्ता के दौरान कई क्षेत्रों में आपसी संबंध मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। नई दिल्ली में विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि दोनों नेताओं ने यह स्वीकार किया कि ये विश्वास का रिश्ता है और बातचीत में ये विश्वास स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि आज की बातचीत में ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में अच्छे परिणाम प्राप्त हुए। विदेश सचिव ने कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों में समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि आर्थिक जगत इस समय आपूर्ति श्रृंखला अड़चनों, व्यापार अनिश्चितता और वैश्विक मांग में गिरावट से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की रिफाइनिंग क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। त्रिपुरा के अगरतला में आज राज्य स्तरीय विकसित भारत जी रामजी का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर त्रिपुरा के श्रम मंत्री टिंकू रॉय ने कहा कि नई योजना प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष 125 दिन के रोजगार की गारंटी देती है। योजना के अंतर्गत दैनिक मजदूरी 256 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दी गई है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने राम मंदिर चंदा घोटाला मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा से जुड़ी एक निर्माणाधीन संपत्ति पर नोटिस जारी किया है। प्राधिकरण के सचिव ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि भवन निर्माण नियमों के संदिग्ध उल्लंघन के कारण ये नोटिस जारी किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थित दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मैच में आज रात इंगलवुड में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा, वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियन वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले आज की शीर्ष कार्यक्रम कंट्री वाइड आप सुनेगा रात 9:30 बजे, इनसाइड्स रात 9:45 पर। दोनों कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। द ओवल क्रिकेट ग्राउंड लंदन में इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के मध्य खेले जाने वाले आईसीसी महिला T20 क्रिकेट मैच का दूसरे सेमीफाइनल मैच का आंखों दिखाला सुनेंगे। आज 10:30 बजे से मैच की समाप्ति कर तक जिसे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। साप्ताहिक समीक्षा प्रसारित होगी 6:30 बजे जिसे चंडीगढ़ केंद्र से रिले किया जाएगा। शाम 6:20 पर कृषि जगत कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर आरवी पंवार से बातचीत। विषय रहेगा फलदार पौधों में वनस्पतिक संवर्धन। इसके अलावा 7:00 बजे प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम ग्रामीण संसार जिसमें आप सुनेंगे बातचीत डॉक्टर शिव कुमार से। इनकी बातचीत का विषय रहेगा मलेरिया रोग कारण व बचाव। फिल्म संगीत हम आपको सुनाएंगे 7:30 बजे आपकी फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम जो कि पत्रों पर आधारित रहता है। मन चाहे गीत आप सुनेंगे 10:00 बजे। एक फिल्म से कार्यक्रम प्रसारित होगा 9:15 पर। 8:25 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। ये थे हमारे आज के शेष कार्यक्रम और अब कल के कुछ प्रमुख आकर्षण। कल सुबह 6:50 पर कृषि की बातों में जानकारी दी जाएगी बाजरे की काश विषय पर। कल सुबह 7:15 पर गांधी चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे मिट्टी व पानी विषय पर गांधी जी के विचार। सुबह सवेरे यह कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा 7:25 पर। कल दोपहर 12:30 आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम युवा संसार। इस कार्यक्रम को आप सुनेंगे कल शाम 5:30 बजे। कल शाम 6:20 पर प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम कृषि जगत जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम। फोन इन कार्यक्रम का विषय रहेगा कृषि संबंधित समस्या व सुझाव। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर सत्यजीत यादव। कल दोपहर 2:30 पर खेत खलिहान कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा जिसमें चर्चा का विषय रहेगा नए बाग लगाना। कल सुबह 8:30 आप सुनेंगे लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक संगीत और इस कार्यक्रम के अंतर्गत कलाकार होंगे डीसी सिंह। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम एक रंग हम आपको सुनाएंगे कल सुबह 9:00 बजे। पत्रों और गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपके अनुरोध पर इस कार्यक्रम का समय रहेगा कल दोपहर 1:10 का। फिल्म संगीत सुनेगा 7:30 बजे आपके गीतों और पत्रों पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम भूले विसरे गीत। इस कार्यक्रम को आप सुनेंगे कल 10:00 बजे। 8:25 पर प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम सुगम संगीत। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का यह रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 6:10 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। ये प्रादेशिक समाचार चंडीगढ़ केंद्र से

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा, विकसित भारत जी राम जी मिशन गांवों के विकास में तेजी लाएगा। जींद के नरवाना उपमंडल के गांव धरोदी से जिले में विकसित भारत जी राम जी योजना का शुभारम्भ किया गया। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने राजनीतिक दलों से मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के मुताबिक अपने बूथ लेवल एजेंटों की बूथ लेवल अधिकारियों के साथ बैठकें आयोजित करने का आह्वान किया। हरियाणा पुलिस के मादक पदार्थ रोधी प्रकोष्ठ ने एक कार से 53 किलो 240 ग्राम डोडा पोस्त बरामद किया। और हरियाणा में मानसून का आगमन, अधिकांश जिलों में रुक रुक कर हल्की बारिश जारी। मानसून के पूरे हरियाणा में पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविकों को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज तिरुपति जिले के एक गांव में एक सभा को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब मजदूर बेरोजगार न रहे और सभी को रोजगार मिले।
1: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जी राम जी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कह रहे, पहले साल ही विकसित भारत जी राम जी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा, तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया।
0: जींद के अतिरिक्त उपायुक्त प्रदीप कुमार ने आज नरवाना उपमंडल के गांव धरोदी में अन्य अधिकारियों, कर्मचारियों तथा स्थानीय श्रमिकों के साथ तालाब से मिट्टी खुदाई व उठान के कार्य में शामिल होकर वीबी जी राम जी योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि जिला जींद में धरोदी गांव से इस योजना की शुरुआत की गई है। यह योजना ग्रामीण श्रमिकों के लिए वरदान साबित होगी। इस योजना के लागू होने से श्रमिकों के रोजगार, आजीविका एवं आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार आएगा और साथ ही ग्रामीण विकास को और गति मिलेगी। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि सरकार द्वारा पहले से संचालित मनरेगा योजना को संशोधित कर श्रमिकों के हितों को और अधिक प्राथमिकता दी गई है। योजना के अंतर्गत अब ग्रामीण श्रमिकों को 100 दिन की बजाय 125 दिन सालाना रोजगार की गारंटी होगी। योजना के दायरे को और बढ़ाया गया है। इसमें तालाब, नहर, माइनर, राजबाहा, वाटर वर्क्स, स्कूल, शमशान घाट, जल प्रबंधन, पौधारोपण, खेतों के रास्तों में रख रखाव, सफाई व सुदृढ़ीकरण जैसे अनेक गतिविधियों को शामिल किया गया है। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने सभी राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से आह्वान किया है कि वे भारत निर्वाचन आयोग के आदेश अनुसार राज्य में चल रहे मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के मुताबिक अपने बूथ लेवल एजेंटों की बूथ लेवल अधिकारियों के साथ बैठकें आयोजित करें। श्री ए श्रीनिवास आज चंडीगढ़ में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर बैठक कर रहे थे। राजनीतिक दलों से इन बैठकों की तिथि व समय की जानकारी, चुनाव कार्य में लगे अधिकारियों को अग्रिम रूप से सूचित करने और बैठकों की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया। मतदाता सूचियों का यह विशेष गहन पुनरीक्षण 14 जुलाई तक जारी रहेगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 22 सितंबर को होना निर्धारित हुआ है। उन्होंने कहा कि जिन मामलों में गणना फॉर्म वापिस नहीं मिले हैं वहां बूथ स्तर के अधिकारी पड़ोस के निवासियों से पूछताछ कर अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लीकेट जैसे संभावित कारणों की पहचान कर सकते हैं और उसी के अनुसार रिकॉर्ड दर्ज कर सकते हैं। बीएलओ को निर्देश दिया गया है कि वे जानकारी एकत्र करने के लिए ऐसे प्रत्येक घर का कम से कम 3 बार दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं के नाम प्रारूप सूची में शामिल नहीं है उनकी बूथवार सूची पंचायत भवनों, शहरी स्थानीय निकाय कार्यालयों और ब्लॉक विकास एवं पंचायत अधिकारियों के कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी ताकि जनता की इन सूचियों तक पहुंच सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही नाम शामिल न होने के संभावित कारण भी प्रदर्शित किए जाएंगे। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि यदि घर घर सर्वेक्षण के दौरान कोई मतदाता मौजूद नहीं है तो परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य फॉर्म पर हस्ताक्षर कर

0: उसे बीएलओ को सौंप सकता है। जींद जिले के उचाना विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक देवेंद्र अत्री ने कहा है कि ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के मासिक मानदेय में वृद्धि से राज्य के करीब 11,000 ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को लाभ होगा। उल्लेखनीय है कि हरियाणा सरकार द्वारा दो दिन पहले ही ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के मासिक मानदेय में 2100 रुपए की वृद्धि की गई है। श्री देवेंद्र अत्री ने कहा कि भाजपा सरकार समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।
1: कि हमारी सरकार जो वादा करती है वो पूरा करती है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने चुनाव के दौरान भी एक वादा किया था कि पहले युवाओं को नौकरी देंगे, 25,000 युवाओं को, उसके बाद शपथ लेंगे। जवान के धनी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने पहले वादा पूरा किया, 25,000 युवाओं को नौकरी दी, उसके बाद शपथ ली। इसी प्रकार से हमारे सफाई कर्मचारियों को भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था 2100 रुपए की बढ़ोतरी करके। हमारी सरकार ने, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने उस वादे को पूरा किया है। मैं सब हमारे सफाई कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे YouTube चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। हिसार पुलिस के मादक पदार्थ रोधी प्रकोष्ठ ने एक कार से 53 किलो 240 ग्राम डोडा पोस्त बरामद किया है। तस्करी में इस्तेमाल कार को भी जब्त कर लिया गया है। हिसार के पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन ने बताया कि मादक पदार्थ रोधी प्रकोष्ठ की टीम ने गश्त के दौरान एक सूचना मिलने पर रायपुर चौक के निकट नाकाबंदी की। पुलिस टीम को देखकर कार में सवार तीनों युवक वाहन को मौके पर छोड़कर खेतों की ओर भाग गए। तलाशी के दौरान कार से 3 प्लास्टिक के कट्टों में रखा 53 किलो 240 ग्राम डोडा पोस्त बरामद हुआ। बरामद डोडा पोस्त एवं तस्करी में इस्तेमाल कार को नियमानुसार कब्जे में लेकर सील किया गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि प्रारंभिक जांच में कार राजस्थान के करौली जिले में पंजीकृत पाई गई। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की विशेष टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। हरियाणा पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने कहा कि हरियाणा पुलिस नशा तस्करों के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए लगातार प्रभावी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि नशे के कारोबार में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हरियाणा में मॉनसून का आगमन हो गया है। कल रात से प्रदेश के अधिकांश जिलों में रुक रुक कर हल्की बारिश हो रही है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर मदन लाल खीचर ने कहा कि मॉनसून के पूरे हरियाणा तक पहुंचने में अभी समय लगेगा।
2: हरियाणा में ज्यादातर क्षेत्रों में कल देर रात्रि के बाद में बारिश शुरू हुई है और अपने हिसार में भी 10.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है जो सुबह 8 बजे तक। उसके बाद में कुछ एक स्थानों पर बारिश है। आज भी दक्षिण हरियाणा में और उत्तरी हरियाणा में कुछ एक स्थानों पर बारिश हो रही है, तो ये लगातार अभी चलेगी। कल और दो दिन तो थोड़ा कम है, परंतु 4 जुलाई के बाद में 7 जुलाई तक अच्छी बारिश की संभावना। मानसून 8 जुलाई तक एक्टिव रहेगा और 8 जुलाई तक कुछ एक स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है, परंतु ज्यादातर स्थानों पर कहीं हल्की और कहीं मध्यम बारिश।
0: उन्होंने कहा कि पश्चिमी जिलों हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, चरखी दादरी में थोड़ी कम बारिश हो सकती है। दक्षिण हरियाणा में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक ने कहा कि फसलों के लिए यह बारिश लाभदायक है। धान की रोपाई में इस बारिश से फायदा होगा। बाजरा और अन्य फसलों की भी अब बिजाई हो सकेगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने सीनियर सेकेंडरी की कंपार्टमेंट आंशिक अंक सुधार और अतिरिक्त विषय की एक दिवसीय परीक्षा एवं सेकेंडरी और की कंपार्टमेंट आंशिक अंक सुधार एवं अतिरिक्त विषय की जुलाई 2026 की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र आज जारी कर दिए हैं। बोर्ड के अध्यक्ष शंकर लाल धूपड़ एवं सचिव मुनीश शर्मा ने बताया कि प्रवेश पत्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in पर लाइव कर दिए गए हैं। परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर दिए गए लिंक से पिछला अनुक्रमांक, नाम, पिता का नाम, माता का नाम भरते हुए डाउनलोड कर सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा, विकसित भारत जी राम जी मिशन गाँव के विकास में तेजी लाएगा। जींद के नरवाना उपमंडल के गांव धरोदी से जिले में विकसित भारत जी राम जी योजना का शुभारंभ किया गया। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने राजनीतिक दलों से मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के मुताबिक अपने बूथ लेवल एजेंटों की बूथ लेवल अधिकारियों के साथ बैठकें आयोजित करने का आह्वान किया। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मेरे में 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर आकाशवाणी का ही रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:20 और 22 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कार्यक्रम सुननिया सारे बण भाइयों ने दलजीत भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज वीरवार का दिन है और वीरवार के दिन एक समाचार समीक्षा आ कर 10 मिनट की, तो उसके हिसाब तो कुछ आज कार्यक्रम में थोड़ा सा बदलाव कर लिया। पहले बातचीत सुनिया कर दे, फिर रागनी सुनिया कर दे, तो आज पहले रागनी सुन लिया, उसके बाद फिर जितना भी टाइम रहेगा उसमें बातचीत सुनेंगे। और कोई इस हिसाब की बातचीत करनी है अपने खेत कार्य के हिसाब की तो वो भी करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ शुरुआत मनोरंजन तक कर दिया। गायक कलाकार रहेंगे ओम प्रकाश और उनके साथी।
1: आय अपना मरने जगत की हसी या जिंदगी सयन मोल परी, और साच बता

समझण जोगी शानी दिखे फिर क्यों डूब मरे से।

कट जासे सती भी रहो जति पुरस्तो

ओम प्रकाश हुनुहुन्छ साथीहरू गाईहरू भैया राख्ने सुनली और जिक्र चल रहा था भाई साप्ताहिक समाचार समीक्षा का तो सुनाएंगे थोड़ा सा इंतजार करेंगे लेकिन मौसम की जब बात करें तो मौसम में एक दो दिन में कुछ और बदलाव होने वाला है और वो बदलाव इस तरीके का है कि थोड़ा बहुत आंधी तूफान भी आ सकते हैं उसके बाद फिर मौसम बदलाव में आ जाएगा क्योंकि मानसून आने की ईद देरी है संभावना होगी है और जैसे ही मानसून आवा है तो उससे पहले कुछ बारिश का मौका थोड़ा सा इस तरह बढ़ जा कर हल्की फुल्की बारिश भी आ जा कर और तेज आंधी भी आ जाएगी तूफान भी आ जाएगा कुछ मौसम में अजीब अजीब तरीके के बदलाव देखने में आ गए तो जो भी काम करने हैं वो इस हिसाब से करें कि अपना भाई जो मौसम का बदलाव है उसके हिसाब से कोई और वारा करना है किसी फसल का और नई की कोई रूपरेखा तैयार करनी है तो वो इस हिसाब से करें कि भाई मौसम किस हिसाब का है वो देख कर और ईद

0: आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है एनडीए सरकार के 12 वर्ष के कार्यकाल में किसान कल्याण विषय पर समाचार दर्शन का विशेष अंक। आज के अंक में शामिल है केंद्र की एनडीए सरकार के 12 वर्ष के कार्यकाल में किसानों की आय में वृद्धि करने और उन्हें जोखिम से बचाने के लिए शुरू हुई विभिन्न योजनाओं को लेकर हरियाणा के विभिन्न जिलों के कृषि अधिकारियों के साथ बातचीत और योजनाओं के लाभार्थियों की प्रतिक्रिया। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में गत 12 वर्षों में किसान कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं। किसानों की आमदनी सुरक्षित करने, उसे छोटे छोटे कर्ज और जोखिम से बचाने के लिए प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और किसान क्रेडिट योजना जैसी कई योजनाएं लागू की हैं, जिससे किसान की आय में वृद्धि हुई है और सरकार में उसका विश्वास बढ़ा है। हमने इन विभिन्न योजनाओं के तहत हरियाणा में किसानों को मिले लाभ की जानकारी लेने के लिए विभिन्न जिलों में कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बातचीत की। जींद में कृषि विभाग के उपनिदेशक गिरीश नागपाल ने बताया कि गत 12 वर्षों में इन योजनाओं की बदौलत कृषि विभाग ने बहुत से नए आयाम स्थापित किए हैं।
1: देखिए, केंद्रीय सरकार के विगत 12 वर्षों में कृषि विभाग ने बहुत से नए आयाम स्थापित किए हैं, जिसमें दो प्रमुख स्कीमें हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसमें एक सामान्य सी धनराशि से किसान की फसलों का बीमा किया जाता है, और अगर जींद जिले की बात करें तो 2016 से अब तक पिछले 10 सालों में जब से स्कीम शुरू हुई है, अब तक 398 करोड़ रुपए से अधिक जींद जिले के किसानों के खातों में ये राशि सीधे हस्तांतरित की जा चुकी है। और अगर पीएम किसान सम्मान निधि की बात करें, जिसमें हर 4 महीने बाद 2,000 रुपए की धनराशि पात्र किसानों के खातों में सीधे हस्तांतरित की जाती है, इसकी पिछली किस्त में 79,000 से अधिक किसानों के खाते में कुल 15,80,00,000 से अधिक की धनराशि का हस्तांतरण किया गया है। तो ऐसी योजनाओं का फलीभूत होना, जिसमें कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि किस तरह से किसी पात्र किसान की पहचान की जाएगी, उसे पेंशन देने का माध्यम क्या होगा।
0: किसान सम्मान निधि योजना पर आगे बात करते हुए उन्होंने कहा,
1: 2022 में जब से ये योजना आई है पीएम किसान सम्मान निधि, जो पात्र किसान थे उनके खाते में 300 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जींद जिले के किसानों के खातों में उतर जा चुकी। ये 2,000 रुपए जो योजना का नामकरण है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान को सम्मान स्वरूप दी जाती है, जो उसकी पहचान का प्रतीक है। और फसल बीमा योजना, जिस तरह से दूसरी घरेलू वस्तुओं का बीमा किया जाता है, किसान को ये एक तरह से आश्वासन रहता है कि उसकी फसल का भी बीमा है और किसी भी तरह प्राकृतिक आपदा की स्थिति में सरकार की स्कीम उसके लिए सहायक होगी।
0: पंचकुला में कृषि विभाग के उपनिदेशक राकेश ने सरकार द्वारा चलाई योजनाओं को किसान हितैषी बताया।
2: इन 12 वर्षों में एनडीए सरकार ने किसान के हितों को ध्यान में रखते हुए कई स्कीमें चलाई हैं, जिनमें से एक स्कीम पीएम किसान अर्थात प्रधानमंत्री किसान निधि योजना है। इस स्कीम के तहत किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। कुल 6,000 रुपए की राशि का वितरण 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में प्रत्येक 4 महीने पश्चात किया जाता है। इस स्कीम के तहत किसान 2,000 रुपए जो किस्त आती है, उससे खाद बीज दवाई आदि परचेज खरीद सकता है, जिससे उसको अपनी आय बढ़ाने में सहायता मिलती है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत किसानों को कोई भी प्राकृतिक

0: आपदा, कीटों और रोगों के कारण फसल हुई खराब होने की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
1: श्री राकेश ने पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत पंचकुला जिले में किसानों को लाभ का जिक्र करते हुए कहा,
0: मैं यह बताना चाहूंगा कि कृषि विभाग पंचकुला ने पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 2019 से अब तक 22,627 किसानों को यह राशि वितरित की गई है, जो कि तकरीबन 84 करोड़ रुपए है, तथा इसी प्रकार फसल बीमा योजना के अंदर 52,608 लाभार्थी हैं, जिनको अब तक इस योजना के तहत 330 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। सरकार ने एक नई योजना प्राकृतिक खेती भी आरम्भ की गई है, जिसमें कम दवाई और खाद प्रयोग करने वाले किसानों को अनुदान दिया जाएगा और प्रति एकड़ अगर किसान प्राकृतिक खेती करता है तो उसको देसी गाय खरीदने पर 30,000 रुपए प्रति गाय का अनुदान भी उपलब्ध है।
1: अंबाला में कृषि विभाग के एक अधिकारी दीनदयाल शर्मा ने कहा कि इन योजनाओं का जिले के किसानों को निरंतर लाभ मिल रहा है।
2: केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण के लिए अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की गई, जिनका लाभ जिला अंबाला के किसानों को निरंतर मिल रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगर बात करूं तो योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को हर 4 महीने में 2,000 रुपए की राशि DBT के माध्यम से उनको दी जाती है। और इसी प्रकार अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, तो प्राकृतिक आपदाओं और प्रतिकूल मौसम अन्य जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो फसल बीमा योजना चलाई जा रही है प्रधानमंत्री जी के तरफ से, उसमें अभी तक 2016 से लगभग 55,236 किसानों को 93,16,00,000 रुपए का अनुदान उनके खातों में ट्रांसफर कर दिया गया है। बीमा दावा राशि प्रदान की जा चुकी है। यह सहायता किसानों के खाते में सीधा हस्तांतरित किया जाता है। उन्हें फसल नुकसान की स्थिति में आर्थिक सहायता मिलती है।
1: श्री दीनदयाल शर्मा ने कहा कि सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए और भी कई स्कीमें चलाई हैं।
2: इन किसान हितैषी योजनाओं के माध्यम से केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने, खेती की सुरक्षा बनाने और कृषि क्षेत्र को सशक्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। तो ये किसानों के लिए बहुत बढ़िया रहा है। केंद्र सरकार की तरफ निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे प्राकृतिक खेती होगी, अन्य स्कीमें भी चलाई जा रही है, जैसे किसान की आय दुगनी हो इसके लिए अलग अलग तरह के इम्प्लीमेंटों पे सब्सिडी दी जा रही है। प्राकृतिक खेती के तहत गाय, देसी गाय खरीदने पे भी सब्सिडी मिल रही है। और इन 12 सालों में मोदी जी की तरफ से जो भी किसानों के लिए स्कीम चलाई जा रही है, उनका भरपूर फायदा किसानों को मिल रहा है और वो सभी लाभ उठा रहे हैं।
1: कैथल में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक रविंद्र सिंह ने अपने जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को मिल रहे लाभ पर बातचीत की।
3: पिछले 12 वर्ष में भारत सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए विभिन्न स्कीमें चलाई गई हैं। उन स्कीमों में से एक प्रमुख स्कीम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। किसानों को प्राकृतिक जोखिम से जो नुकसान होता है उसकी भरपाई के लिए यह स्कीम 2016 में भारत सरकार द्वारा लागू की गई थी और 2016-17 में 8,480 किसानों द्वारा फसल का बीमा करवाया गया। कृषि विभाग द्वारा लगातार किसानों को जागरूक किया जा रहा है ताकि फसल की जोखिम से कोई नुकसान ना हो। और 2018-19 खरीफ में किसानों ने 20,447 किसान बेनिफिट हुए और 48,498 किसानों ने फसल का बीमा करवाया। 2016 से 2025-26 तक अब तक 5,78,000 किसानों ने अपनी फसल का बीमा करवाया है और इनमें से लगभग 1,10,000 किसानों को इस बीमे का राशि का लाभ हुआ है। कुल मिलाकर इस 10 साल में किसानों को 124 करोड़ रुपए वितरित भारत सरकार द्वारा किए जा चुके हैं।
1: हमने किसान कल्याण योजनाओं के कुछ लाभार्थियों से भी बातचीत की। भिवानी के गांव पालवास के किसान नरेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि उनके हित में कई योजनाएं लागू हैं।
4: केंद्र सरकार ने कई योजनाएं लागू की है किसानों के हित में, जैसे नमो ड्रोन दीदी, कृषि के उपयोग के लिए ड्रोन प्रदान करना, मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड, किसान के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार, किसान की 24 फसलों पर MSP पर खरीद, जैविक खेती को बढ़ावा देना, जल उपयोग की दक्षता बढ़ाना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को लागू करना और गरीब किसान के लिए जो औजार प्रयोग में होते हैं उनके लिए ऋण प्रदान करना, ऐसी कई योजनाएं किसानों के हित में है।
1: जींद में एक किसान सुनील चहल ने हमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर प्रतिक्रिया दी।
5: ये जो मोदी साहब ने जो अपने स्कीम चलाई है ना किसानों के सम्मान के लिए, ये बहुत अच्छी स्कीम है। जिस टाइम ये किस्त आती है तकरीबन ये महीने ऐसे हैं जिनमें जमींदारों के ऊपर खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है। इसमें कुछ तो सहारा लगता है आदमी को, खाद बीज कुछ तो ले आता है और ये किस्त बिल्कुल टाइम टू टाइम आती है। 23वीं किस्त मेरी परसों शाम को टाइम टू टाइम मैसेज आया। मैंने

0: सोने के वक्त क्या 9 बजे चाहे उससे पहले आ चुकी थी किस्त, बहुत अच्छा कर रहे मोदी जी, उनका तहे दिल से धन्यवाद।
1: जींद के किसान दलबीर सिंह ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को जरूरतमंद किसानों के लिए बहुत लाभकारी बताया।
2: पीएम किसान सम्मान निधि है, ये बहुत अच्छी योजना है, किसान को इसको अच्छा लाभ मिलता है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि और भी इसी प्रकार की किसान कल्याण के लिए अच्छी योजनाएं लागू करें और धरातल पर किसान को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। हम प्रधानमंत्री का सरकार का बार बार धन्यवाद करते हैं, किसान का विकास ही देश का विकास है। देखिये जो किस्त मिली है 2000 रुपए किसान के सीधे खाते में आते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई चक्कर नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार का हमने बैंक के चक्कर नहीं काटने, किसी ऑफिस के चक्कर नहीं काटने। सरकार पैसे डालती है और सीधे किसान भाई को पैसे मिल जाते हैं, जो जरूरतमंद जरूरतें हैं उसको पूरा करता है।
1: इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्विनी कुमार शर्मा, वाचिका अमन सैनी, प्रस्तुति सहायक राजेश कुमार।
3: कृषि जगत कार्यक्रम में एक बार फिर ते भाइयों का स्वागत है और ई बे के बातचीत सुन लिया। जो फलदार पौधे हैं उनमें वनस्पति के संवर्धन की है, इसके बारे में तो बातचीत सुने।
4: फलदार पौधों का वनस्पतिक संवर्धन, इस बारे में बातचीत कर रहे हैं और इसके लिए स्टूडियो में आज हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर आर डी पवार को। आप सीनियर कोऑर्डिनेटर हैं कृषि विज्ञान केंद्र जींद में। डॉक्टर साहब, जब हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास में कोई पेड़ है या कोई पौधा है उसकी हमने बढ़ोतरी करनी है, यानी कि एक से हमने ज़्यादा बनाने हैं, तो एक तो सब भाई जाना है कि बीज उसका लेके और हमने उसमें रोपाई कर देनी है। इसके अलावा कुछ और भी तरीके हैं जो आप वैज्ञानिक बताओ कि भाई इसमें टहनी लेके या किसी तरह से उसका हम पौधा वो बना सके हैं। तो पहले तो ये जानकारी चाहूँगी कि जो बीज थे हम पौधा बनावे हैं उसमें की खासियत है और जो दूसरा जो वनस्पतिक संवर्धन कराया जाए है उसमें की कुछ फर्क है।
5: जो हम बीज से तैयार पौधा करते हैं वो पौधा एक तो लंबे समय बाद फल देता है
4: जी,
5: दूसरी उसमें जो गुण है फल है वो जरूर नहीं है कि जो हम जिसका बीज लिया है वही उसमें आएंगे, ये इसके सबसे बड़े नुकसान और फायदे हैं
4: जी। डॉक्टर साहब वो मतलब किस तरह बदल किस तरह जाए, क्योंकि बीज हमने जब उसी का लिया है तो ये मान के चलना है कि भी इसके गुण सारे इसी में आने चाहिए।
5: सर वो बदलते इसलिए हैं क्योंकि ये ओपन हमारा एरिया है और पोलिनेशन जो होता है वो दूसरी वैरायटी दूसरी किस्म का हो जाता है,
4: परागण क्रिया
5: परागण के, तो उसके माँ बाप का पता नहीं चलता कि उसके माँ बाप कौन है।
4: अच्छा।
5: क्योंकि इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि जो फल बीज बना है जिस बीज से उसके माँ बाप कौन से हैं और जो फल उससे बीज से जो फल बनेगा
4: जी
5: वो फल जब देगा तो वो उसी क्वालिटी का देगा या नहीं देगा,
4: यानी कि उसमें बदलने की संभावना रहती
5: संभावना है। बहुत ज़्यादा रहती है
4: जी जी, तो इसलिए
5: इसलिए हम कहते हैं कि बीज से पौधा ना बनाओ, उसके पौधे के किसी भी भाग से
4: जी,
5: क्योंकि उसमें जो सेल होते हैं जो वंशिक जो जेनेटिक क्रिया होती हैं वो सेम होती हैं, उसके जिस किसी भाग से लो तो उससे पौधा तैयार करोगे तो वो गुण मदर प्लांट की तरह ही उसमें पौधे में आएंगे
4: जी। तो ये तो बात होगी कि हमने बीज से अगर पौधा बनाना है तो उसके लिए डॉक्टर साहब कई बार ये होता है कि कुछ बीज से अगर हम बनाना चाहें तो उसका जो बीज है कई बार सख्त होता है, तो अगर हमने वो लगाना है तो उसमें क्या तरीका रहना चाहिए?
5: हाँ, अगर हम बीज से ही बनाना चाहते हैं तो बीज के जो सख्त है उसको तोड़ना पड़ता है किसी भी विधि से, कुछ तो हाथ से तोड़ जाते हैं, कुछ केमिकल से तोड़ जाते हैं, कुछ एसिड से तोड़ जाते हैं जला करके। दूसरी हम जब उसको बीज को एक बीज के ऊपर एक झिल्ली होती है उसको हम राख से रगड़ करके भी उसको तोड़ सकते हैं, उसको तोड़ना जरूरी है। इसके अलावा हम उसको मिस्ट में मतलब नमी में रख करके भी बीज को फुला करके उसके अंकुरित हो जाता है, जैसे भिगो कर रखते थे जैसे पहले रखते थे बीजों गेहूँ दूसरी चीज़ों को रखते हैं, तो उसको अंकुरित होने के कुछ टाइम पे भिगो कर रखने से उसमें जल्दी हो जाएगा
4: अंकुरण, उसमें जल्दी हो जाएगा
5: फुटाव जल्दी आ जाएगा
4: जी। अब डॉक्टर साहब बात करेंगे कि जो दूसरे तरीके हैं यानी कि वनस्पतिक तरीके हैं जिसमें बिना बीज के हम पौधा बनाते हैं, तो वो कौन कौन सी तरीके हैं, कौन कौन से ढंग हैं इसमें?
5: सर एक तो जो जो बीज से नहीं जो वनस्पति से बनाते हैं उसमें एक तो

0: सीधा सीधा कलम से लगा देते हैं
1: जी।
0: लेकिन दूसरी विधि है जो बडिंग है, ग्राफ्टिंग है, उनसे अगर पौधा बनाते हैं तो उसमें हमें दो देसी पौधा तैयार करना पड़ेगा बीज से
1: जी,
0: क्योंकि बीज से जो पौधा तैयार होता है वो
1: डॉक्टर साहब पहले बात करेंगे कि मान लो हमने कोई कलम लेके, यानी कि उसकी कटाई की है या तना कोई लेके वो हमने रोपाई करना है, तो उसमें हमने कौन सा हिस्सा लेना चाहिए और कितना कितनी उसकी मोटाई हो, इसके बारे में बताओ।
0: अगर हमने कलम से लगाना है
1: जी
0: तो उसकी लंबाई 20 से 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसमें जो आँखें होती हैं
1: जी,
0: उसमें 4 से 6 आँखें होनी चाहिए कम से कम।
1: कली उसमें होनी चाहिए,
0: कलियाँ होनी चाहिए
1: जी,
0: और उसकी लंबाई मैंने बता दी थी। और जो मोटाई है वो पेंसिल की थिकनेस से करीब होनी चाहिए, और एक साल
1: पेंसिल जितनी
0: मोटी होनी चाहिए
1: वो टैनी कम से
0: कम से होनी चाहिए
1: जी।
0: और उसकी जो एज है वो एक साल तक होनी चाहिए। इसमें जो एक साल तक की है उसमें जो कलर है उसमें जो नीचे की जो है वो हार्ड होती है, बीच का सेमी हार्ड होती है और ऊपर का होता है सॉफ्ट होता है। तो हम इसको तीन भागों में बांटते हैं
1: जी।
0: तो तीन भागों में बांट करके उनके उस हिसाब से लगाते हैं कि भाई किस पौधे की कलम के लिए हार्डवुड चाहिए, किसके लिए सेमी हार्डवुड चाहिए, किसके लिए सॉफ्ट हार्डवुड चाहिए। जैसे कि हमने कलम लगाना है बेर का, नहीं सॉरी सहसूत का, सहसूत का लगाना है तो हमें सॉफ्ट सेमी हार्डवुड चाहिए।
1: सेमी हार्ड यानी कि थोड़ी सी सख्त हो और थोड़ी सी नरम भी हो,
0: ठीक
1: बीच का सा।
0: और अंगूर क्या लगाना है तो उसके हार्डवुड चाहिए जी,
1: उसकी सख्त हो।
0: और बिल्कुल सॉफ्ट लगानी है तो उसमें आड़ू का चाहिए और सहसूत का भी चल जाता है जी।
1: जी
0: अच्छा, एक चीज़ इसमें है, जब हम कटिंग काटते हैं सर
1: जी,
0: तो कटिंग का जो ऊपर का सिरा है हम तिरछा काटते हैं और नीचे का सिरा बिल्कुल फ्लैट काटते हैं, समतल काटते हैं।
1: उसका क्या फ़ायदा है?
0: उसका ये फ़ायदा है कि क्योंकि हम जैसे कलम लगाते हैं कि जो प्रसाद पानी है या पानी है उसमें अंदर ना जाए और वो सीधा बह कर चल जाए, इसीलिए हम जब लगाते हैं एक चीज़ और ध्यान रखते हैं कि उसमें तिरछी लगाते हैं, उसमें 45 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड जो वो एंगल है वो झुका के लगाते हैं,
1: जिससे थोड़ा सा टेढ़ा लगाते हैं,
0: टेढ़ा लगाते हैं
1: जी।
0: इससे सीधी किरणें, उस जो सूर्य की किरणें सीधी मिल नहीं पड़ती हैं और वो सूखता नहीं है ऊपर का पोर्शन।
1: डॉक्टर साहब कई बार ये देखा गया है कि बहुत से भाई कुछ उस पर मिट्टी लगा दे हैं या गोबर लगा दें जो ऊपर का हिस्सा है, तो वो ठीक है तरीका?
0: नहीं, वो बहुत ही गलत है क्योंकि उसमें फंगस आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं,
1: फफूंद
0: वो नहीं लगाने चाहिए,
1: फफूंद आ जाएगी।
0: अगर ऐसे अगर वो करना है तो जब लगाते टाइम हमें लगाते हैं तो उसमें हमें एक केमिकल होता है IBA हार्मोन होता है, हार्मोन।
1: अच्छा,
0: तो वो लगा सकते हैं लेकिन वो नीचे वाले पोर्शन लगाते हैं जड़ों के लिए, वो जड़ों को ग्रोथ प्रमोट करते हैं, जड़ें जल्दी निकल जाती हैं, तो उसमें IBA का ट्रीटमेंट देते हैं तो उसके जो कंसेंट्रेशन वो अलग अलग है पौधे के हिसाब से अलग अलग है
1: जी। IBA आपने बताया है ये इस्तेमाल कर सके हैं, तो जब हमने लगानी है टहनी उसमें लगानी है, हमने कलम लगानी है, तो कितने दिन पहले हम उसने काट के रख सके हैं
0: उसको? मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते पहले, लेकिन उसको जब काटेंगे हम
1: जी
0: तो उसको हम या तो बोरी में, गीली बोरी में उनको रखें क्योंकि उसके जो नमी नहीं जाए उसमें, जो टहनी में नमी बरकरार रहनी चाहिए, हरी रहनी चाहिए। अगर वो सूख गई, ज़्यादा दिन रहेगी तो सूख जाएगी और उसमें जो फुटाव नहीं होगा
1: जी। तो अब जो आपने बताई है कि नीचे दवाई है IBA है उसका इस्तेमाल कर सके हैं, वो हमने किस समय करनी, कटाई करते ही करनी है या जब लगाएंगे उस टाइम करनी है?
0: नहीं, जब हम लगाएंगे जब करनी है, और उसको जो नीचे पोर्शन में हम सोल्यूशन बना के, जो सोल्यूशन बनाते हैं IBA का, उसमें एक चीज़ और है वो पानी में नहीं घुलता है।
1: अच्छा,
0: वो अल्कोहल में घोलना पड़ता है, पहले थोड़ा सा अल्कोहल लेके उसमें दवाई घोल के फिर उसका सोल्यूशन बनाना है कि कितने कंसनट्रेशन बनाना है। तो कंसनट्रेशन बनाने के बाद उसमें वो जो हमारी टहनियाँ हैं, कटिंग है, उस डुबोते हुए उस लगानी है। और जब ज़मीन में लगाते हैं, नर्सरी में लगाते हैं, तो वो दो कलम हैं, दो आँखें
1: जी,
0: वो जमीन में होनी चाहिए,
1: यानी कि कुल 4 आँख हैं उसके ऊपर, कलम के ऊपर, तो दो जमीन के अंदर होनी चाहिए जी। डॉक्टर साहब इसमें हम नर्सरी में इसको लगावाएं या कई बार पॉलीथीन है उसमें भी लगाया करें भाई, तो कौन सा तरीका इसमें ठीक रहेगा?
0: पॉलीथीन वाला बहुत सबसे अच्छा है क्योंकि पॉलीथीन में जो हम गाँची लेते हैं जमीन से गाँच लेते हो, टूटने का डर रहता है, पॉलीथीन हमारी गाँची के साथ चली जाती है तो उसमें जड़ें हिलती नहीं है और वो पैक होती है तो ट्रांसपोर्टेशन में आसानी होती है
1: जी। तो डॉक्टर साहब इसमें पानी का और कुछ कोई और कोई खाद वगैरह भी इसमें डालनी पड़ेगी जो गाची के लिए हम मिट्टी लगाओगे पौधे में डाल लेंगे?

0: हाँ, जो नर्सरी हम जब तैयार करते हैं तो उसमें जो ज़मीन हमारी नर्सरी है उसमें जो थैलियों में या नर्सरी में बनाते हैं तो उसमें जो 1% रेत मिट्टी,
1: एक भाग
0: एक भाग रेती की मिट्टी होती चाहिए, एक
1: जी
0: भाग चिकनी मिट्टी होनी चाहिए और एक भाग जैविक खाद का, जिसमें वर्मी कंपोस्ट है या
1: केच
0: कैचवा खाद है,
1: जी
0: कैचवा खाद है या वो
1: गोबर की
0: गोबर
1: खुली
0: की
1: सड़ी
0: गैस,
1: खाद
0: गोबर
1: है
0: गैस स्लज जो गोबर गैस प्लांट के खाद है उसको
1: जी
0: मिला करके एक एक अनुपात, तीनों को बराबर अनुपात मिला करके उसकी हम जो गोबर वो तैयार करते हैं, मीडिया तैयार करते हैं और उस मीडिया को थैली में भर करके फिर पौधे लगाने चाहिए।
1: पानी हमने किस टाइम देना उसमें?
0: पानी हम सुबह शाम देते हैं, जब शाम को अच्छा होता है शाम को दिया जाए, तो
1: अच्छा
0: दोपहर को ना दो क्योंकि पानी दोपहर को दोगे तो गर्म हो जाता है और गर्म होने पर उसकी जड़ें खराब हो सकती हैं।
1: जी, तो ये तो हो गया कलम लगाने
0: हाँ
1: का।
0: सर,
1: अब और दूसरे कौन कौन से तरीके हैं?
0: दूसरे तरीके हैं हमारे जो हैं, बडिंग है, बडिंग
1: कड़ी
0: है
1: कड़ी लगाना जिसने
0: कर ले,
1: जी
0: बडिंग बडिंग द्वारा है बड़, और दूसरे है ग्राफ्टिंग है,
1: जी
0: लेयरिंग है,
1: जी
0: इनार्चिंग है, इस तरीके से हम।
1: ये सब तरीके बताते जब आप कौन कौन सा किस किस तरह से हम लगा सके हैं। आपने बताया पहले कली से बडिंग यानी कि कली उसमें लगाना, तो कली लगाने का क्या तरीका है और कौन कौन से पेड़ों में हम इसने इस्तेमाल कर सकते हैं?
0: कली लगाने का तरीका, सबसे पहले जो बडिंग है वो कई तरीके होती है,
1: जी
0: जो टी बडिंग है, पैच बडिंग है, रिंग बडिंग है, ये अलग अलग तरीके हैं बडिंग बडिंग के, जिसमें टी बडिंग है, जो टी बडिंग में जो हमें स्टैम्प है, जो रूट स्टॉक है यानी मूल मूल बिंद है, उसमें हम टी का निशान कट करते हैं,
1: यानी कि अंग्रेजी का अक्षर जिस तरह
0: अगर
1: टी
0: अंग्रेजी
1: बना है,
0: अक्षर टी का अगर,
1: एक सीधी खड़ी लाइन के ऊपर पड़ी लाइन, इस डाल टी का जो अक्षर बन जाएगा उसमें हमने लगाने
0: उसमें
1: हैं
0: लगाते हैं,
1: जी।
0: उस जब लगाने के बाद फिर हम जो हमारे मार्ति फल पौधा है उसमें से हम एक कलम उसको बड़ निकालते हैं, और बड़ इस तरह से निकालते हैं कि जो निकालते टाइम ध्यान रखें कि वो टूटे नहीं और मोट जो उसकी स्वेलिंग हो, कि वो ये पता चल जाए कि भाई ये इसका फुटाव 2-3 दिन में ही आने वाला है, तो उसको लेकर के फिर उसके ऊपर सीधे सीधे बिठा देते हैं,
1: जी
0: बिल्कुल उसके जो कट है हमारा जो टीक कट लगाया हुआ है उसमें अच्छी तरह से लगाते हैं, और उसके जो उसके ऊपर फिर पॉलिथीन शीट ढक देते हैं, बांध देते हैं, टाइट बांधते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि जो हमारा बड़ है वो खुली रहनी चाहिए,
1: जी
0: अगर वो
1: उस
0: ढक गई तो वो फुटाव नहीं आएगा, और जब इसमें से फुटाव आ जाए, ये कम से कम 15-20 दिन में फुटाव आ जाएगा, तो जब फुटाव आ जाए तो हम उसको जो स्टैम्प पे बांध रखी है उसको हम काट के थोड़ा सा खोल डीला भी कर सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, ये किसी भी फलदार पौधे पर किया जा सकता है या कुछ चुनिंदा है उनके ऊपर ही?
0: नहीं, चुनिंदा है वैसे मोस्टली सभी पे हो जाता है, जिसमें जो बेर है, आंवला है,
1: जी
0: इनमें अच्छी तरह से हो जाता है, सहसूत में हो जाता है।
1: जी तो इसके अलावा फिर आपने एक और बताई थी एनआरचिंग,
0: इनार्चिंग,
1: हाँ उसमें क्या तरीका होता है?
0: इनार्चिंग में यह है कि जो हमें जो रूट स्टॉक है, जो मूल बिंद है, उसको तैयार करते हैं थैलियों में, पॉलीथीन थैली में या गमले में हम तैयार करते हैं, उस
1: जी
0: गमले को सीधा सीधा मदर प्लांट्स के पास, मातृ जो पौधा है उसके पास ले जाते हैं, और उसके जो टहनी है और मदर प्लांट टहनी है उनको दोनों को टक कट मार करके, बीच में से कट थोड़ा सा कट मार कर छील करके उनको जोड़ते हैं, और फिर हम पॉलीथीन शीट से उनको बांध देते हैं, बांधने के बाद कुछ दिन बाद, 15-20 दिन के बाद वो थोड़ा सा फुटाव आ जाता है, तो जो ऊपर का है जो मदर प्लांट का भाग है उसको नीचे से थोड़ा सा काट देते हैं, आधा कट मार, ये दिखे कि वो चल रहा कि नहीं चल रहा, जब वो पूरा चलने लग जाता है तो पूरा उसको काट देते हैं, उसी तरह से जो रूट स्टॉक का जो ऊपर का पार्ट जहाँ से ज्वाइंट करा है उसको काट करके पौधा तैयार हो जाता है।
1: जी डॉक्टर साहब, कई बार ये देखा गया है कि कोई पौधा है, फलदार पौधा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, तो उसकी हमने हूबहू हमने उसकी उसका पौधा बनाना है, तो उसके लिए क्या टहनी को दबा के या इस तरह का भी कुछ वो कराया जा सकता है?
0: हाँ, इसको हम लेयरिंग बोलते हैं, गुट्टी बांधना जो उसको कहते हैं,
1: जी
0: देसी भाषा में गुट्टी बांधना कहते हैं, इंग्लिश में लेयरिंग कहते हैं, और ये दो तरह के होते हैं, एक एयर लेयरिंग होते हैं, एक ग्राउंड लेयर होती है,
1: जी
0: जो एयर लेयरिंग है जो हवा में जैसे कहते हैं कि पौधे के ऊपर ही पौधे तैयार करना,
1: जी
0: वो उसको गुट्टी कहते हैं,
1: जी
0: उस जो टहनी है जिससे हम पौधा बनाना है उसको 3 सेंटीमीटर तक उसको चारों तरफ से छील लेते हैं, छीलने के बाद
1: यानी उसकी जो ऊपर का जो
0: छाल है,
1: भाग हो, छाल
0: छाल
1: है
0: है, वो
1: जी,
0: छाल को उतार देते हैं,
1: 3 सेंटीमीटर बताया आपने।

0: 3 सेंटीमीटर लंबाई में है
1: जी
0: जो, लेकिन उसके वुड है जो लकड़ी है वहाँ
1: जी
0: तक छिलता है, लकड़ी को नुकसान नहीं होना चाहिए।
1: जी यानी ये ध्यान रखना है कि ऊपर की छाल है सिर्फ वही उतरे, नीचे उसकी जो लकड़ी है उसको कोई नुकसान नहीं
0: उसको
1: होना
0: नुकसान
1: चाहिए।
0: है। हाँ जी,
1: जी
0: तो उसके बाद एक मॉस होती है, पहाड़ी मॉस घास कहते हैं
1: जी
0: जो, उसको स्पोगनम मॉस कहते हैं। उसमें उसको भिगो करके उसमें पानी रखने की क्षमता है, वो अपने से जो जितना उसका वजन है उसको 20-30% 20-30 गुना तक वो पानी को अपने
1: सोख
0: अंदर
1: ले
0: रोक लेती है।
1: जी
0: तो उसको उसके चारों तरफ बांध कर बांध देते हैं और फिर पॉलिथीन शीट से उसके दोनों किनारों को बीच से भी कसकर बांध देते हैं, जिससे कि उसमें पानी ना जाए,
1: जी
0: हवा ना जाए, पानी ना जाए। और
1: जी
0: वो जो बांधी हुई है ऐसे लगे उस पौधे को कि ये अब मेरे ये पौधा है जो ज़मीन में लगा हुआ है, जिससे उसमें जो वो पौधे लगे और उसमें से जड़ें कुछ दिन बाद जड़ें निकलने शुरू हो जाएंगे। और निकलने के बाद जो नीचे से जो रूट स्टॉक है उसको नीचे से काट करके हम पौधे तैयार कर सकते हैं। ये हमारी घुट्टी विधि है,
1: गुट्टी
0: ये
1: है
0: तो है एयर लेयरिंग।
1: जी
0: तो इसी तरह से तो दूसरी है हमारी जो क्लिप्ट ग्राफ्टिंग है,
1: जी
0: स्प्लाइस ग्राफ्टिंग है। तो ये अलग अलग मेथड है जिसमें कि स्प्लाइस ग्राफ्टिंग में जो दोनों सिरे हैं
1: जी
0: उनको जैसे हम पेंसिल से छीलते हैं
1: जी
0: उसी हिसाब से छील करके उन दोनों को फिर हम बांधते हैं। तो स्प्लाइस ग्राफ्टिंग, तो ये अलग अलग तरीके हैं जिसमें हम करते हैं।
1: जी तो डॉक्टर साहब, इसमें जब हमने ये ग्राफ्टिंग कर ली है या कली लगा ली है, तो उसके बाद भी कुछ देखभाल इसमें हमने करनी पड़ेगी।
0: हाँ, देखभाल हमने ये है ना कि उस पौधा जो सीधा होना चाहिए,
1: जी
0: जो पौधा है जो जब फुटाव आता है तो फुटाव आने पर वो पौधा को टहनी को हम सीधा रखते हैं, और 1 साल पुराना जो होना चाहिए इसमें ये ध्यान रखनी है। और उसका जो जो जहाँ से बंधा हुआ है वो टाइट होना चाहिए, हवा नहीं जानी चाहिए। और जब पौधे लगाते हैं तो जब पौधे लगाने पर जब फील्ड में लगाते हैं तो गांची के समेत बिल्कुल पैक होनी चाहिए, और पैक होने के बाद जो उसकी जो थैली है उसके नीचे से फाड़ देनी चाहिए, नहीं अगर वैसे लगाओगे तो फिर जड़ें जमीन जाएंगे नहीं, उस रुकाट पॉलिथीन शीट जो रुकाट करेगी। तीसरी दूसरी इसके में इसके अलावा जो जब हम वो पौधे को ज़मीन में लगाते हैं तो जहाँ से ज्वाइंट है,
1: जोड़ है जहाँ से
0: जोड़ है,
1: जी
0: वो ज़मीन में नहीं जाना चाहिए। कभी कभी वो जोड़ ज़मीन के अंदर चला जाता है
1: जी
0: जहाँ से हमारा ख़राब हो जाता है।
1: डॉक्टर साहब, कई बार ये देखा गया है कि जब जहाँ हमने जोड़ लगाया है, जोड़ के नीचे का हिस्सा ज़्यादा बढ़ना शुरू कर दे है और ऊपर का कम बढ़ता है, तो फिर भाई यूँ सोचे हैं कि भाई ये जो टहनी निकल रही है नीचे से ये बढ़िया चल रही है, उसको रख लेते हैं और ऊपर वाला सूख जाता है फिर।
0: हाँ, ये इसके कारण यह है कि जो देसी पौधा जो नीचे का पौधा है वो हमारा देसी होता है,
1: जी
0: तो देसी के पौधे से फुटाव फुटाव भी आ जाते हैं क्योंकि बाहर रहता है फुटाव तो आना ही है, क्योंकि पौधा है टहनी है तो चाहे देसी हो चाहे फुटाव, तो पौधा तो अपने आके तो फुटाव तो लेंगे लेंगे। तो इसलिए समय समय पर उन फुटाव को जो नीचे ज्वाइंट से नीचे है यानी देसी पौधे से जो फुटाव आ रहा है उनको हम समय समय पर तोड़ देना चाहिए। अगर वो देसी पौधा, क्योंकि देसी पौधा वो उसी माहौल का है और वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट लेता है, जब वो ज़्यादा बढ़ावा इसलिए वो बढ़वा ज़्यादा लेगा, और बढ़वा लेने के बाद जो न्यूट्रिएंट है जो हमारे जो साइन वैरायटी है जो मदर प्लांट का है उसके भी पोषक तत्व वो अपनी तरफ खींच लेगा और उसको कमज़ोर कर देगा और वो पौधा मर भी सकता है।
1: यानी कि मोटी बात ये है कि जहाँ भी हमने जोड़ लगाया है, वो चाहे कली लगाई हो या टहनी लगाई हो, उससे नीचे अगर कोई फुटाव आता है तो वो हम तोड़ दें
0: तोड़ दे समय समय तोड़
1: ताकि
0: देना
1: वो
0: चाहिए
1: ऊपर पूरा पोषण पहुँच
0: पूरा
1: सके
0: पूरा।
1: और वो जोड़ हमारा सही तरह चल सके। अब डॉक्टर साहब, ये जानकारी चाहूँगे कि किसी भाई ने ये तरीके सारे सीखने हों, देखने हों, जानने हों, तो कहाँ संपर्क करें, कहाँ जाए?
0: इन चीज़ों को जानने के लिए हमारे जो हर डिस्ट्रिक्ट में कृषि विज्ञान केंद्र है,
1: जी
0: कृषि विज्ञान केंद्र में जो एक्सपर्ट होते हैं और बागवानी के, वहाँ से जाकर के आप वहाँ से सीख सकते हैं कि किस तरह लगाना है, किस तरह से नहीं लगाना है, क्या टेक्निक है। मैं जो कृषि विज्ञान केंद्र जींद में 1 महीने की ट्रेनिंग भी कराता हूँ
1: जी
0: माली की, तो
1: कब?
0: उसमें जुलाई में हम कराते हैं इस,
1: अच्छा
0: तो फिर 1 जुलाई से हम 30 जुलाई तक करते हैं। तो इस बार हमारे पास जो फार्मर किसान जो वो कम आए थे तो पोस्टमार्टम करते, लेकिन जब भी हम इसमें जो अगस्त में भी हमारे पास आ जाएंगे तो हम उनको ट्रेनिंग देंगे।
1: जी यानी कि अगर कोई भाई ये सारे तरीके सीखना चाहता है तो अपने नज़दीक के कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पर संपर्क कर सके हैं। डॉक्टर साहब, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार है, वहाँ भी कुछ इस तरह का प्रशिक्षण मिल सकता है क्या?
0: हाँ, वहाँ भी है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, तो हमारा मेन कैंपस है
1: जी
0: वहाँ, तो सभी तरह के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट
1: होती
0: हैं
1: रहती
0: हो
1: है।
0: जाती हैं जी,
1: जी
0: वहाँ तो कोई शक नहीं है जी।
1: जी तो डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने बताया कि जो फलदार पौधे हैं उनकी हम ग्राफ्टिंग करके

0: दूसरे तरीके हैं वो अपना के और अच्छा अपना घर का पौधा है वो तैयार कर सके हैं, और वो उसी वैरायटी का होगा, उसी किस्म का होगा जो आपके पास में उपलब्ध है, उसमें बदलाव नहीं होगा। तो इसके बारे में अगर कोई भाई ज़्यादा जानकारी लेना चाह रहा है या कोई प्रशिक्षण लेना चाह रहा है तो अपना नज़दीक के कृषि विज्ञान केंद्र या हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में संपर्क कर सके है। तो इस सब जानकारी के लिए डॉक्टर आर डी पावा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद सर।
2: इस बातचीत के साथ है जो कार्यक्रम कृषि जगत चल रहा है उसका समय भी हुआ समाप्त। अगला कार्यक्रम सुनेंगे ग्रामीण संसार, और ग्रामीण संसार की भी आज शुरुआत रागनी ते करेंगे। पहले एक रागनी सुनेंगे जिसके गायक कलाकार होंगे जगबीर सिंह बलंबिया और उनके साथी।

ਲੱਗ ਪੜਿਆ ਮੈਂ ਲਾਵੇ ਕੀ।

खतरी सजा ठेकरा चोराए बीच दराया करे पूत की खतरी छाने पिंडे।

छुटवा कने महल हवेली अस्थल थाना क्यों देस है राजा आली पोशाक छोटा के।

मेरी चंदगीरा में सुमर धनपत सिंह गुरु हिम्मती साया करे अगर सैनिक वाणा आजा ते गोती नती।

0: ਜਗਬੀਰ ਬਲਮ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਕੀ ਗਾਈ ਉੜੀਆ ਤਾਂ ਬਾਈ ਨੇ ਰਾਗ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਲਈ। ਔਰ ਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਬਈ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਮਲੇਰੀਆ ਕਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਮਲੇਰੀਆ ਕਾ ਮੱਛਰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹੈ, ਤੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਬਾਤਚੀਤ ਸੁਣਾ।
1: आज बातचीत करेंगे मलेरिया रोग और उसके कारण और उपचार के बारे में, और उसके अलावा मच्छरों से कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं इसका भी जिक्र करेंगे। इसके लिए आज स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर शिव कुमार जी को। आप सेवानिवृत्त चिकित्सक हैं और अभी भी समाज सेवा में आप लगे हुए हैं चिकित्सक के कार्य में। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है स्टूडियो में।
2: धन्यवाद जी।
1: सबसे पहले तो जानकारी चाहूँगे कि मच्छर से कौन

0: कौन से बीमारी हैं, रोग हैं, वो उत्पन्न होते हैं।
1: हाँ, तो तीन तरह के मच्छर होते हैं।
0: जी
1: एक एनाफिलीज मच्छर मलेरिया फैलाता है, जो मादा मच्छर के काटने से बीमारी होती है। तो
0: अच्छा
1: मादा एनाफिलीज मच्छर से मलेरिया,
0: जी
1: मादा एडीज मच्छर से डेंगू और चिकनगुनिया,
0: जी
1: और मादा क्यूलेक्स मच्छर उससे जापानी जेनकेफलाइटिस।
0: अच्छा,
1: जी
0: तो पहले जिक्र करेंगे मलेरिया का।
1: हाँ,
0: तो ये मच्छर के काटने से जैसे आपने बताया कि होता है, तो इसका किस तरह से शरीर पर, किस तरह से क्या कुछ प्रभाव पड़ता है और किस तरह से ये इसके लक्षण दिखाई देते हैं?
1: इसमें सबसे पहले बुखार होता है, तो इसको तहिए का बुखार बोलते हैं। एक दिन छोड़ के एक दिन चढ़ना,
0: अच्छा
1: हाई ग्रेड फीवर होता है, जिसमें सिर में दर्द और उल्टियाँ लग जाती हैं।
0: जी
1: जो जो बुखार तीसरे दिन चढ़े तो वो मलेरिया बुखार हो सकता है।
0: अच्छा, मतलब एक दिन छोड़ के फिर अगर बुखार आ रहा है तो ये लगा लें कि
1: हाँ
0: मलेरिया है।
1: हाँ जी, साथ
0: अच्छा
1: में सिर दर्द और उल्टी,
0: जी
1: ये शिकायत भी हो सकती है।
0: जी डॉक्टर साहब, इसका कोई टेस्ट वेस्ट भी करवा सके हैं, पता चल जाए
1: हाँ
0: अभी?
1: जी, कोई भी बुखार मलेरिया हो सकता है, तो टेस्ट जरूरी है इसका। तो ये जो हर उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सब ये सामान्य जो अस्पताल हैं, इन सब में टेस्ट की सुविधा है।
0: जी
1: तो इसमें स्लाइड बनाते हैं और स्लाइड से पता लगता है कि अपने यहाँ हरियाणा में दो तरह का जो मलेरिया है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स और
0: जी
1: प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम।
0: जी
1: तो फैल्सीपेरम थोड़ा खतरनाक होता है, तो वो स्लाइड से जांच से पता लग जाता है कि भी कौन सा मलेरिया है।
0: जी
1: और जांच में अगर पॉजिटिव आता है तो फिर इसकी दवाई क्लोरोक्विन की टेबलेट होती हैं, तो वो 3 दिन देनी होती है। पहले दिन 4, दूसरे दिन 4, तीसरे दिन 2। तो ये अडल्ट आदमी की है, 14 साल से ऊपर को हम अडल्ट मानते हैं,
0: जी
1: और 1 साल से छोटे बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को ये दवाई ना दें।
0: जी डॉक्टर साहब, एक इससे पहले थोड़ा सा और बात करेंगे, लेकिन ये जानना चाहेंगे कि जो टेस्ट है ये हमने शुरुआत में करवाना चाहिए या कई बार दवाई ले ले हैं, 2-3 दिन दवाई लिया और फिर पता चल गया कि ये ज़्यादा देर की बुखार चढ़ रहा है, या एक दिन छोड़ गए एक दिन चढ़ रहा है, तो उसके बाद टेस्ट करवाऊँ तो उसमें कुछ फ़र्क रहेगा?
1: हाँ, तो मैंने बताया कि कोई भी बुखार मलेरिया हो सकता है,
0: जी
1: तो कोई भी बुखार होते ही स्लाइड जरूर बनवाएं,
0: अच्छा
1: ताकि जल्दी पता लग जाए और उसमें दिक्कत ना हो मरीज को भी।
0: जी, बीच में अगर दवाई ले ले तो उसका कुछ टेस्ट पे असर पड़ेगा ना सर?
1: हाँ, अगर तो उसने क्लोरोक्विन की गोली बगैर डॉक्टर की सलाह के बगैर खा ली है,
0: जी
1: तो उसमें चांसेस हैं कि वो नेगेटिव आ सकता है
0: जी
1: टेस्ट।
0: जी डॉक्टर साहब, कितना नुकसानदायी हो सकता है ये बुखार?
1: मलेरिया बुखार जो साधारण बुखार है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है, तो इसमें पहले 3 दिन क्लोरोक्विन खा लें, फिर प्राइमाक्विन देते हैं एडल्ट आदमी को 15 मिलीग्राम रोज 2 हफ्ते तक। तो
0: जी
1: ये लगातार खा लें तो उसमें बुखार जड़ से ख़त्म हो जाता है। अगर मलेरिया, अगर बुखार फैल्सीपेरम है, तो वो खतरनाक बुखार होता है,
0: जी
1: उसमें भी पहले 3 दिन क्लोरोक्विन की गोली खाते हैं, पहले दिन 4, दूसरे दिन 4, तीसरे दिन 2। फिर साथ में इसमें 3 ड्रग का रिज्यूम होता है, एक आर्टिसुनेट सल्फाडोक्सिन पायरीमिथामिन पहले दिन देते हैं, दूसरे दिन आर्टिसुनेट और प्राइमाक्विन दूसरे दिन देते हैं, और तीसरे दिन खाली आर्टिसुनेट। तो इसमें जो प्राइमाक्विन की डोज है वो पीवी से 3 गुना ज़्यादा देते हैं। जैसे उसमें 15 मिलीग्राम मैंने बताया 2 हफ्ते तक देनी है,
0: जी
1: तो इसमें 45 मिलीग्राम केवल 3 दिन तक देनी है,
0: जी
1: 45 मिलीग्राम।
0: जी डॉक्टर साहब, इसमें जितना जो शरीर का तापमान है वो कितने तक जा सके है और कितना खतरनाक हो सके है?
1: ऐसे कोई भी बुखार हो तो उसके लिए अगर बहुत तेज बुखार हो तो ठंडे पानी की पट्टी साथ साथ करें। तो ये जो बुखार है, पहले तो हाई ग्रेड फीवर होता है,
0: जी
1: इसमें ठंड इतनी कपकपी लगती है कि रजाई भी उड़ा दें जब भी कपकपी दूर नहीं होती। तो
0: जी
1: पहले स्टेज होती है कपकपी, दूसरी स्टेज होती है हाई ग्रेड फीवर, और तीसरी स्टेज होती है ठंड। मरीज बिल्कुल बर्फ़ की तरह ठंडा पड़ जाता है।
0: जी
1: तो ये बुखार अपना आप स्वतः ही बगैर दवाई एकदम डाउन हो जाता है।
0: जी
1: तो इसमें अगर बहुत तेज़ बुखार हो तो खासकर छोटे बच्चों में वो दिमागी बुखार उसको
0: कह सके हैं
1: हाँ
0: कि
1: जी,
0: भाई वो
1: तो उसमें
0: दिमाग में चढ़ जाए बुखार।
1: ठंडे पानी की पट्टी
0: जी
1: माथे पे, हाथ की हथेली पे और पैर के तलवों पे ठंडे पानी की पट्टी रख दें, तो उससे बुखार काफ़ी कम हो जाता है। कभी भी ठंडे पानी

0: की पट्टी पेट पे, छाती पे, पैरों पे ना करें, हाथों पे
1: जी।
0: तो हाथ की हथेली में दो रुमाल पकड़ा दो और पैर के तड़वों पे और माथे पे। तो ठंडे पानी की पट्टी करने से 2-3 डिग्री तो वैसे बुखार कम हो जाता है
1: जी।
0: और फिर स्लाइड बना के अगर वो पॉजिटिव आता है तो ये पूरा इलाज इसका संभव है। हमारे रोहतक ज़िले में हम देख रहे हैं कि मलेरिया कम था पिछले बनिस्पत 3-4 सालों से
1: जी।
0: 2020 में मैक्सिमम 6 केस थे रोहतक ज़िले में
1: जी।
0: 2021 में 0 था, कोई केस नहीं था
1: जी।
0: 2022 में 3 और 2023 में भी 3 केस थे और मलेरिया का अभी तक कोई इस साल कोई जो 24 में कोई केस नहीं आया है
1: जी।
0: डेंगू के केस ज़्यादा होते हैं
1: जी।
0: तो मलेरिया के 2030 तक सरकार का ये है कि इसको जड़ से ही ख़त्म करें, एक टारगेट रखा है कि 2030 तक मलेरिया उन्मूलन जड़ से ख़त्म हो जाए
1: जी। तो डॉक्टर साहब, इसके अलावा जिस तरह आपने बताया था कि डेंगू है तो उसके क्या लक्षण होते हैं?
0: डेंगू बुखार, एक तो जो इसके मच्छर है ना साफ पानी में होते हैं।
1: अच्छे,
0: छत पे टूटे हुए मटके, टायर, और अगर एक चलो पानी भी हो ना तो उसमें भी वो मच्छर पैदा हो जाते हैं।
1: अच्छा,
0: मच्छर पहले अंडे देता है
1: जी,
0: फिर प्यूपा, फिर लार्वा, फिर पूरा मच्छर बनने में 7 से 10 दिन लगते हैं
1: जी।
0: तो दूसरा जो मलेरिया के भी मच्छर ऐसे ही होते हैं, पहले अंडे, प्यूपा, लार्वा, पूरा मच्छर बनने में 10 दिन लगते हैं। तो हम उस साइकिल को ही, अब मैं बचाव के आपको बताऊंगा तो उस साइकिल को ही मतलब खाली
1: डॉक्टर साहब बचाव का बाद में करेंगे, पहले थोड़ा सा
0: डेंगू के बारे में।
1: हाँ,
0: तो डेंगू का जो मच्छर है मादा एनाफिलीज मच्छर से डेंगू होता है
1: जी।
0: डेंगू के लक्षण दो तरह का डेंगू होता है, एक साधारण डेंगू, एक खतरे वाला डेंगू
1: जी।
0: तो साधारण डेंगू में हड्डी तोड़ बुखार, ब्रेक बोन फीवर, बुखार के साथ हर जोड़ दुखने लग जाता है
1: जी।
0: सिर में दर्द, बहुत तेज सिर में दर्द, पैरी ऑर्बिटल पेन, आँखों के चारों ओर घुब्बे चलना
1: जी,
0: और वोमिटिंग सेंसेशन, उल्टी आने का मन
1: जी,
0: और शरीर पे छोटे छोटे खसरे की तरह लाल दाने हो जाते हैं। तो ये 5 लक्षण हैं, हड्डी तोड़ बुखार, सिर में दर्द, और उल्टी आना, और आँखों के चारों ओर घुब्बे चलना, और शरीर पे छोटे छोटे लाल लाल दाने होना। तो ज़रूरी नहीं कि 5 ही लक्षण हो
1: जी,
0: केवल एक भी लक्षण हो तो उसमें इसकी जांच होती है, जांच करनी चाहिए। तो जांच में ज़्यादातर लैब कार्ड टेस्ट करते हैं, तो सरकार कार्ड टेस्ट को नहीं मानती
1: जी।
0: अब वो अलाइजा टेस्ट करते हैं और उसके रेट भी सरकार ने निश्चित कर दिए, चाहे वो प्राइवेट लैब हो चाहे कोई भी हो, 600 रुपये से ज़्यादा पैसे नहीं लेंगे
1: जी।
0: और उससे पता लगता है कि भी IgG है या IgM है। तो IgM जो है वो करंट इन्फेक्शन को बताता है और IgG अगर पुराना डेंगू इन्फेक्शन है उसको दर्शाता है
1: जी।
0: तो इसका इलाज, सबसे बेस्ट इलाज है पैरासीटामोल।
1: अच्छा,
0: पैरासीटामोल, इसकी एंटीबायोटिक का इसका कोई रोल नहीं होता डेंगू का
1: जी।
0: मलेरिया में तो क्लोरोक्विन प्राइमेक्विन देते हैं पर डेंगू में क्लोरोक्विन प्राइमेक्विन का रोल नहीं है। तो इसमें पैरासीटामोल ड्रग ऑफ च्वाइस, और इसमें हाई ग्रेड फीवर ना होने दें, तो वही अगर बुखार 105-106 डिग्री होता है तो उसमें जान का खतरा भी होता है और बच्चा बड़ा जो भी बड़बड़ाने लगता है।
1: अच्छा,
0: तो तुरंत नहला देना चाहिए
1: जी।
0: तो नहाने से किसी को 106 डिग्री है तो 2 डिग्री तो नहाने से ही कम हो जाएगा, 104
1: जी।
0: फिर ठंडे पानी की पट्टी माथे पे, आँखों पे, और हाथ की हथेली और पैर के तड़वों पे, तो 2-3 डिग्री उससे कम हो जाएगा। फिर पैरासीटामोल की खुराक इसको बार बार देनी पड़ती है, ये थोड़ा जिद्दी बुखार होता है
1: जी।
0: एक गोली दे दी, 4-5 घंटे ठीक हो गया, फिर दोबारा हो जाता है।
1: अच्छा,
0: तो जब भी बुखार चढ़े पैरासीटामोल की गोली दें
1: जी।
0: तो ये तो है साधारण डेंगू के लक्षण और पैरासीटामोल इसका इलाज
1: जी।
0: जो खतरनाक डेंगू है तो उसमें ये 5 लक्षण तो हो सकते हैं सारे, ये
1: जी,
0: कि हड्डी तोड़ बुखार, सिर में दर्द, और उल्टी आने का मन, शरीर पे जो लाल लाल दाने थे वो बड़े बड़े चतकों में बन जाते हैं, बड़े बड़े चतके बन जाते हैं।
1: अच्छा,
0: और इसमें जो है खून जमने की प्रतिक्रिया जो है, हमारे ब्लड में 3 चीज़ें होती है, प्लेटलेट्स, और सफ़ेद रक्त कणिकाएँ और लाल रक्त कणिकाएँ
1: जी।
0: तो इसमें डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स की बहुत ज़्यादा कमी होती है और प्लेटलेट्स का काम है खून को जमाना
1: जी।
0: तो इसमें अगर नाक से नकसीरी
1: जी,
0: सबसे पहले आँख से ले, आँखों में खून लाली आ जाए
1: जी,
0: नाक से नकसीरी, मसूड़ों में से खून, खून की उल्टी, पेशाब में खून
1: जी,
0: और

0: दामे खून और महिलाओं में जो माहवारी है वो 3 से 5 दिन तक ठीक हो जाती है, पर इसमें लंबे 15-15 दिन तक डेंगू बुखार में वो ठीक नहीं होती
1: जी।
0: तो इसके लिए मरीज को जांच करके एलाइजा टेस्ट करके और फिर इसमें वो प्लेटलेट्स चढ़ाते हैं, निखालस प्लेटलेट्स।
1: अच्छा जी।
0: तो प्लेटलेट्स अपने पीजीआई रोहतक में उपलब्ध है, तो एसडीपी होते एक सिंगल डोनर प्लेटलेट्स, तो उस आदमी की पूरी प्लेटलेट्स निकाल के उस बीमार आदमी को चढ़ा देते हैं, तो उसकी जो खून जमने की प्रतिक्रिया कमज़ोर पड़गी वो दोबारा ठीक हो जाता है मरीज, नहीं तो इतना घातक है कि इसमें जान भी जा सकती है
1: जी
0: अगर प्लेटलेट नहीं चढ़े तो। प्लेटलेट्स ही इसका उपचार है खतरनाक डेंगू का
1: जी। कुछ दवाइयों से भी हम प्लेटलेट्स बढ़ा सके हैं?
0: दवाई इसमें केवल जो मैंने बताया ना खून में
1: जी
0: 55% तो लाल लाल पानी जिसको प्लाज्मा बोलते हैं
1: जी,
0: 45% जिसमें प्लेटलेट्स सफ़ेद रक्त कणिकाएँ लाल रक्त कणिकाएँ, तो प्लेटलेट्स इसको उपचार है। मैंने बताया था कि इसके लिए कोई दवाई कारगर नहीं है
1: जी।
0: दवाई अगर तेज बुखार है तो पैरासीटामोल ही इसकी दवाई है
1: जी।
0: और ठंडे पानी की पट्टी और हाइग्रेशन, उसको ना शिकंजवी
1: जी
0: 1 गिलास में 2 चम्मच चीनी, 4-5 चुटकी नमक और आधा नींबू डाल के मिट्टी और नमकीन शिकंजवी बार बार दें ताकि पानी की कमी ना हो
1: जी।
0: इसमें बीपी डाउन हो जाता है तो ब्लड प्रेशर डाउन ना होने दें
1: जी। डॉक्टर साहब एक और आपने बताया था चिकनगुनिया।
0: चिकनगुनिया जो बुखार ये होता है ये हमारे रोहतक ज़िले में नहीं है, ये जहाँ पे जीरी ज़्यादा होती चावल, यहाँ से ले लो आप पानीपत
1: जी,
0: करनाल, जगाधरी, यमुनानगर, कैथल
1: जी,
0: अम्बाला, तो इन जिलों में पानी जो जीरी ज़्यादा होती है और जीरी हमेशा पानी में होती है, तो इसका जो क्यूलेक्स मच्छर है वो पानी के अंदर 2 फुट नीचे जाता है फिर ऊपरा के सांस लेता है।
1: अच्छा।
0: फिर 2 फुट नीचे जाता है फिर सांस लेता है
1: जी।
0: तो क्यूलेक्स मच्छर वहीं ज़्यादा होते हैं और ये जो मच्छर है सबसे जो इसका बीमारी है सबसे खतरनाक है
1: जी।
0: इसको बोलते हैं गर्दन तोड़ बुखार
1: जी।
0: बुखार हाई ग्रेड फीवर होगा और गर्दन अकड़ जाएगी उसको
1: जी
0: और मेनिंजाइटिस हो जाती है, जो दिमाग में स्वेलिंग हो जाती है तो उससे गर्दन अकड़ जाती है, तो ऐसे में तुरंत उसको एडमिट करवाना चाहिए हॉस्पिटल में और इसमें एंटीबायोटिक उसको इंजेक्टेबल देंगे तब वो जाके ठीक होता है।
1: इसका कोई टेस्ट भी करवा सकें डॉक्टर साहब?
0: हाँ जी, इसका भी टेस्ट होता है जो एलाइजा टेस्ट है उससे पता लग जाता है। वैसे इसमें सबसे बेस्ट टेस्ट होता है CSF, सेरिब्रल स्पाइनो फ्लूड, रीढ़ की हड्डी में उसका पानी निकाल लेते हैं और उस पानी की जांच करते हैं कि उसमें ये कीटाणु तो नहीं है
1: जी। तो डॉक्टर साहब अब बात करेंगे कि ये जो फैलाव होता है इसका, उसके जो जो कारण हैं उनको हम किस तरह से रोक सकें?
0: सबसे पहले कि हमारे हरियाणा सरकार ने एक ड्राई डे निश्चित किया है कि हर रविवार को लोगों से एक अपील की गई है
1: जी
0: कि अपने घर के आसपास जहां भी पानी, पहले बात तो इकट्ठा ना होने दें, अगर होता भी है तो उसमें 1 चम्मच काला तेल या मिट्टी तेल डाल दें
1: जी,
0: और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक टेमीफास सॉल्यूशन मिलता है तो 1 बाल्टी में 2.5 ml डाल लें तो सफ़ेद पानी हो जाता है वो
1: जी,
0: तो उसको पानी की टंकी में भी डाल सकते हैं, पीने वाले पानी में टंकी को उसमें भी डाल सकते हैं।
1: अच्छा।
0: और जहाँ पानी इकट्ठा हो वहाँ भी डाल सकते हैं काला तेल मिट्टी तेल, तो जो उसके लार्वा है मच्छर के अंडे लार्वा वो नष्ट हो जाते हैं और मर जाते हैं
1: जी।
0: तो पानी इकट्ठा ना होने दे, जहाँ पानी इकट्ठा है तो उसमें काला तेल मिट्टी तेल या टेमीफास का वो करें
1: जी। डॉक्टर साहब इसमें बीमारी के दौरान खान पान है वो किस तरह का रखना चाहिए?
0: खान पान इसमें ज़्यादा घृष्ट भोजन ना लें क्योंकि डेंगू में तो मैंने बताया कि उल्टी आने का मन हो जाता है और एसिडिटी बन जाती है
1: जी,
0: तो साधारण भोजन जो घर में हम रोटी सब्जी दाल दूध दही लस्सी सब ले सकते हैं
1: जी,
0: और बाज़ार की चीज़ ये फास्ट फूड खासकर चाउमीन बर्गर पिज्ज़ा और डोग इस तरह की चीज़ें ना लें, हलवा चूरी जिसमें घी ज़्यादा डले वो चीज़ें ना लें
1: जी,
0: बाकी रोटी सब्जी दाल वो लें, नमकीन और मीठी शिकंजी लें। दूसरा जो मैंने बताया कि कुछ एक सावधानी है कि पूरे कपड़े डाल के रखें ताकि मच्छर काटे नहीं उसको। दूसरा कुछ दवाई होती है वो दवाई शरीर पर लगाने से मच्छर फिर उसको काटता नहीं है
1: जी,
0: और नहीं तो सरसों का तेल की मालिश कर लो तो उससे भी मच्छर नहीं काटेगा
1: जी। सब कई बार घर में भी कई बार वो बत्ती सी जला देते हैं तो वो भी कुछ ठीक?
0: हाँ, वो जो बत्ती जलाते हैं उसकी धुआं से मच्छर नष्ट हो जाते हैं, उसमें एडल्ट मच्छर भी ख़त्म हो जाता है
1: जी। डॉक्टर साहब इसमें फिर और क्या कुछ ध्यान रखें?

0: धुआं जो पायरीथ्रम 2% में पेट्रोल में मिक्स करके उसकी धुआं छोड़ते हैं, तो धुआं से भी एडल्ट मच्छर नष्ट हो जाते हैं। धुआं छोड़ते वक्त खिड़की दरवाजे खुले रखें ताकि धुआं अंदर तक जाए और मच्छर पे पूरा असर करे।
1: जी, तो डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने बताया है कि मच्छरों से जो होने वाले रोग हैं उनके नियंत्रण के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि मच्छरों पर ही नियंत्रण पाया जाए, और भाई ये ना सोचें कि ये तो खड्डा है पड़ोसी के घर के पास में है या यहाँ वहाँ पानी खड़ा हो रहा है, मच्छर है वो उड़ के कहीं भी जा सकें, किसी को भी नुकसान पहुँचा सके हैं। तो बढ़िया ये रहेगा कि कहीं भी पानी खड़ा दिखाई दे है तो उसने या तो ख़त्म कर दें या उसके अंदर जिस तरह आपने बताया काला तेल है या इस तरह का कोई पदार्थ है वो उस पर डाल दें ताकि मच्छर है वो वहाँ पर अपने अंडे बच्चे ना दे सके। तो इस सब जानकारी के लिए डॉक्टर शिव कुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू जी।
2: या तो भाइयों ने बातचीत सुनी, मलेरिया रोग है उसका की उपचार करा जाए, किस तरीके तो है। डॉक्टर साहब ने बहुत सारी चीज़ इसमें बताई हैं। देखो, कई बार बेरा कौन लगता हमने, आम यूँ सोचा हाँ कि भाई ऊँ लड़ गया उषा मच्छर और फिर बुखार चढ़ना शुरू हो गया है, बुखार दवाई ले लिया हाँ वो ठीक हो गया है। डॉक्टर साहब ने बहुत सारी चीज़ों का ऐसा जिक्र कराया है, भाई ठीक हो गया है अटके फिर शुरू हो गया है। लेकिन एक तो ध्यान इसमें वो 3 दिन वाला जो डॉक्टर साहब ने बताया है, और एक विशेष बात यह आई है कि जो मादा मच्छर है ना उन तो यह दिक्कत खड़ी हुआ है। चलो उनकी तो हम के पहचान कर पाओगे कि भाई ये मादा है कि नर है, चलो इतना जरूर कर सके हैं कि इस मौसम में हम थोड़ा सा सावधानी रखें, और जो छोटे बालक से उन जरूर यह बात कहते रहे हैं कि वो एक जगह खड़े ना हुए, हालांकि छोटे बालक के दिक्कत या घाटे हुआ अगर क्योंकि उछल कूद रखे हुए उनका दिक्कत कम हुआ अगर है। तो इस तरह की कोई दिक्कत आ जाए तो डॉक्टर से फिर संपर्क करें, जिस तरह वह दवाई बताओ उस तरह दवाई लें ताकि कोई दिक्कत ना आवे। ये तो कुछ जो बातचीत हुई थी उसके बारे में बात थी, और मौसम का जिक्र पहले भी करा था, चलते चलते एक बार फिर भाइयों का ध्यान दवा दें कि 2 दिन में कुछ मौसम का बदलाव की संभावना है। इब मानसून जैसे ही आया है तो उस टाइम पर कुछ अदला बदली ही तापमान में भी आया करे, एकदम तो गर्मी बढ़ जा है, फुहार सी आने लग जा हैं, तेज़ आंधी तूफान भी आने लग जा हैं। तो ये कई बात ध्यान करने की हैं, इन अपना ध्यान करें, और जैसे ही लगे है कि भाई मौसम बदलाव मारे है उसके हिसाब से अपना फिर जो अपने काम धाम है वो निपटावें। तो इसके साथ है जो कार्यक्रम चल रहा है ग्रामीण संसार, इसका समय समाप्त हुआ है। दलजीत भाई जय जचा होगा, सारे वन भाइयों ने राम राम।

अभी आपने सुना कार्यक्रम ग्रामीण संसार, मेरे वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर आकाशवाणी का ही रोहतक केंद्र है। स्टूड की घड़ी में शाम की 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का आगाज कर रही हैं मैंने प्यार किया फिल्म के इस खूबसूरत से गीत के साथ, जिसे गाया है लता मंगेशकर और SP बाला सुब्रमण्यम ने। बोल हैं असल भोपाली की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ में आइए सुनते हैं तेजाब फिल्म का ये गीत। गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार।
1: कैसे?

आकाशवाणी की रोहतक एम से आप सुन रही हैं फिल्म संकेत। आइए सुनवाते हैं रामलखन फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत। आवाज़ें हैं मोहम्मद अजीज़, अनुराधा पोडवाल और नितिन मुकेश की।

0: लीजिए सुनिए आखिरी रास्ता फिल्म का गीत, आवाज़ें हैं मोहम्मद अजीज़ और एस जानकी की, बोल अनंत बख्शी की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।
1: But everybody will sing with me.
2: Okay.
1: Ready? Come on. One.

0: और संगीत के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। अब आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार जिन्हें दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में स्पेन और ऑस्ट्रिया होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
2: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स

0: भारत में बनती है और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
0: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
0: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानी पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
1: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
2: नेताओं ने व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा, सप्लाई चेन की मजबूती, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों की मजबूत नींव पर चर्चा की। साथ ही दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे अलग शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की भूमिका को स्वीकार किया।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है। वे आज एक निजी टेलीविजन चैनल द्वारा आयोजित एशियाई सदी को आकार देने संबंधी विषय पर भारत जापान रणनीतिक संवाद को संबोधित कर रहे थे।
3: ट्रेड ऑल्सो इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस पार्टनरशिप।
4: भारत के कुशल कार्यबल के लिए अवसर खुल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का ध्यान सभी के लिए समान विकास सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है और इससे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
3: ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डायमेंशन।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की तेल शोधन क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने लंबे समय तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित किया। श्री पुरी ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में पेट्रोल की कीमत में केवल 5.58% और डीजल की कीमतों में 6.23% की ही वृद्धि हुई है। नागर विमानन मंत्रालय ने देशभर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। भारतीय रेलवे ने इस वर्ष जून में पिछले वर्ष इसी महीने की तुलना में माल ढुलाई में 4% की वृद्धि दर्ज की है। रेल मंत्रालय ने बताया कि रेलवे ने पिछले महीने 142 करोड़ टन से अधिक माल की ढुलाई की। इस वर्ष जून में यात्री आवागमन में भी लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। पंचायती राज मंत्रालय कल नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने कोयला खंड आवंटियों को अधिक वित्तीय सुविधा प्रदान करने और कोयला क्षेत्र में व्यापार को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तुत किया है। कोयला खंड आवंटन संशोधन नियम 2026 के अंतर्गत मंत्रालय ने कोयला खंड और खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम 1957 के अंतर्गत आवंटित कोयला खंडों के लिए निष्पादन बैंक गारंटी के स्थान पर बीमा गारंटी बॉन्ड के उपयोग को सक्षम बनाया है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। केरल में शिक्षण संस्थानों को निशाना बनाने वाले नशीले पदार्थों के गिरोहों पर राज्य पुलिस की कार्रवाई में 30 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अवैध दवाएं जब्त की गई हैं। केरलम पुलिस के अनुसार अधिकारियों ने राज्य में 5,353 मामले दर्ज किए हैं और 5,736 लोगों को गिरफ्तार किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर निगम ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा अभियान शुरू किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026-27 के अंतर्गत खंडवा नगर निगम ने पॉलीथीन लाओ चाय पाओ नाम की एक पहल शुरू की है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक बनाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था आज कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के पहलगाम क्षेत्र में नुनवान और गांदरबल जिले के बालताल स्थित दोहरे शिविरों में पहुंचा। एक रिपोर्ट।
1: यात्रियों का पहला जत्था आज दोपहर कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर घाटी पहुंचा। पहले जत्थे में 4,822 यात्री शामिल हैं। इसमें से 2,510 यात्री पहलगाम के रास्ते से यात्रा करेंगे, जबकि 2,312 यात्री बालतल से होते हुए बाबा बर्फानी की गुफा का रुख करेंगे। नुनवन और बालतल कैंप पहुंचते ही प्रशासन ने यात्रियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। यात्रा के मद्देनजर दोनों रास्तों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। दोनों रास्तों पर पुलिस, अर्धसैनिक बलों और आर्मी जवानों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। इसके अलावा चिकित्सा सुविधाएं, मौसम की जानकारी

0: कार्यकारी के लिए प्रणाली, अहम जगहों पर क्विक रेस्पॉन्स टीमें, बड़े पैमाने पर सीसीटीवी निगरानी और आरएफआईडी आधारित प्रणाली भी लगाई गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं इश्फाक शाह।
1: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जमीनी आकलन जारी है और इसके पूरा होने पर केंद्र सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा मोचन बल SDRF और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के मानदंडों के अनुसार राहत सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: विभाग ने अगले 2-3 दिनों में गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। इसी दौरान छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, राजस्थान, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में भी मौसम की ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। हालांकि दिल्ली में अगले 24 घंटों के दौरान आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: और अब कुछ खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजल्स स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। स्क्वाश में विल्वन सेंथिल कुमार और तन्वी खन्ना ने मुंबई में PSA चैलेंजर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेंथिल कुमार ने मिस्र के अब्दुल्ला हाफिज और को, जबकि तन्वी ने जापान की जोई फू को हराया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जाँच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India's speed and Japan's expertise will work as driving force for global growth. Holds talks with Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi. India and Japan announce energy partnership to strengthen strategic oil reserves and maritime transport resilience. Government to expand oil refining capacity to 300 million metric tons per annum in next 1 year amid West Asia crisis. Center launches Air Suvidha 2.0 portal for Ebola health screening at entry points of international airports across the country. IMD issues red alert for heavy rainfall in parts of western and central India for next 2 to 3 days. And in FIFA World Cup, Spain to take on Austria in round of 32 match in Los Angeles tonight. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing the India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi this evening, Mr. Modi said, when Japan's expertise and investment combined with India's speed and scale, the entire world benefits. He said both sides today decided to make the partnership even more dynamic and profound. The Prime Minister said India and Japan today reached agreements on several areas such as economic security, AI, defense and health that will make the partnership futuristic and limitless.
4: जो नए साथी इस फोरम के साथ जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें भारत जापान सक्सेस स्टोरी का भाग बनने पर हार्दिक बधाई देता हूं।

जी सुनिए कार्यक्रम का ये गीत। आवाज़ें हैं आशा भोसले, किशोर कुमार, आर डी बर्मन, भूपेंद्र और साथियों की।

और इसी गीत के साथ एक फिल्म से कार्यक्रम यही संपन्न होता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आपने सुने सत्ते पे सत्ता फिल्म के कुछ चुनिंदा गीत। मिणवी 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। स्टुड़कीगढ़ में रात्रि के 9:30 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे जिसे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: Copyright. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कृषि पद्धति में परिवर्तन के दशक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन।
1: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी PMKSY, इसे हम कह सकते हैं कि ये योजना खेती में सिंचाई प्रेरित परिवर्तन का एक दशक पूरा कर चुकी है। PMKSY ने पिछले एक दशक में समूचे भारत में सिंचाई अवसंरचना को मजबूत करने और कुशल जल प्रबंधन को बढ़ावा देने में केंद्रीय भूमिका निभाई है। ये योजना 64,407 करोड़ रुपए से ज्यादा की केंद्रीय सहायता के साथ खेती में सिंचाई प्रेरित परिवर्तन के प्रमुख उत्प्रेरक के तौर पर उभरी है और 2.7 करोड़ से भी अधिक किसानों को अब तक लाभ पहुंचा है और 2.46 करोड़ हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर सिंचाई क्षमता पैदा की गई है। इसी बारे में आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने देश के किसानों का भविष्य उज्जवल किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह जी मौजूद हैं। हरवीर जी, आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद हर्ष जी।
1: आपसे पहला सवाल यही हम जानना चाहेंगे कि दरअसल प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को शुरू करने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई और देश की कृषि व्यवस्था में ये योजना पिछले एक दशक में किस तरीके का परिवर्तन लेकर आई है।
2: हर्ष जी देखिए, कृषि के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण एक इनपुट है वो सिंचाई है। अगर आपके पास सिंचाई की सुविधा है तो आप कोई भी फसल उगाने के प्रति आश्वस्त हो सकते हैं और अपनी तैयारी के साथ खेती कर सकते। तो कृषि जो है वो एक तरीके से खेती करने के लिए, अगर हम ये कहें जो सिंचाई है वो सबसे महत्वपूर्ण इनपुट है। और इसीलिए क्योंकि अभी भी जो हमारा टोटल जो जिसे हम कहते हैं कि जिस क्षेत्रफल में खेती होती है उसका लगभग आधे से थोड़ा कम जो है, एक दशक पहले जो करीब 45% के आसपास था उससे भी कम था, वो वर्षा आधारित था। तो यानी कि जो हमारा जो एग्रीकल्चर का जो पोटेंशियल है, जो उसकी हमें एक उम्मीद है कि कितना उसके अंदर संभाव्यता है, उसको हम पूरा उपयोग नहीं कर सकते थे अगर हम सिंचाई की सुविधा ना बढ़ाएं। तो पहला फोकस जो रहा, जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लाने के पीछे जो सरकार का उद्देश्य रहा है, वो देश के किसानों को उनकी खेती के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण इनपुट है।

0: कराने का उद्देश्य इसके पीछे रहा है, क्योंकि उसके बाद ही सारी चीजें आगे शुरू होती हैं। और उसमें एक मल्टीप्रॉन्ग अप्रोच जिसे कह सकते हैं हम लोग, एक साथ इसके बहुत सारे घटक हैं इस योजना के,
1: जी
0: उनको सब पर काम किया गया है। और उसके नतीजे जो आपने जैसे कहा कि एक दशक में 2016-17 के बजट से लेकर के और अभी तक हमने 64,407 करोड़ रुपए का आवंटन सिंचाई के लिए इस योजना के तहत किया है। और उसका नतीजा यही रहा कि करीब जो 24.61 मिलियन हेक्टेयर जो है वो जमीन हम अतिरिक्त सिंचाई के तहत ला पाए, जिसका फायदा 2.5 करोड़ से ज्यादा देश के किसानों को हुआ।
1: सरकार ने एक लक्ष्य बनाया कि प्रति बूंद अधिक फसल, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में ये चीज सामने आई, जिसका फायदा भी किसानों ने और हमारे फार्मिंग सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर ने उठाया। ये प्रति बूंद अधिक फसल, इसे कैसे आम श्रोताओं के लिए आप समझाएंगे?
0: एक तरीके से जो हम कहें कि जो स्लोगन भी बनाया गया पर डोप मोर क्रॉप, यानी कि हर बूंद से अधिक उपज, का मतलब है कि जो हमारे पास जल उपलब्ध है, जो संसाधन हमारे पास सिंचाई के उपलब्ध है, उनको हम कितना दक्षता के साथ उपयोग कर सकते हैं, ताकि हम उसको जब कन्वर्ट करते हैं उत्पादन में फसल के, वो हम आकलन कर सकते हैं बेहतर उत्पादन कैसे हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए, और जो एक्सटेंशन वर्क है जिसमें किसान को बताना है, समझाना है कि जो पानी है एक तरीके से बहुत ही बहुमूल्य रिसोर्स है, उसका आप बेहतर दक्षता के साथ उपयोग करके अधिक उपज कैसे हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए जो जो भी कंपोनेंट है उनको केंद्रित रखते हुए आगे बढ़ा गया। तो इसीलिए जो स्लोगन है पर डॉप मोर क्रॉप, प्रति बूंद अधिक उपज, हम लोग उस उद्देश्य को हासिल करने के लिए किस तरीके से आगे बढ़ना है वो कदम इस योजना के तहत उठाए गए।
1: हरवीर जी, आपने मानसून आधारित यानी वर्षा आधारित सिंचाई की भी बात की, तो एक हम इसे कैसे समझें आम श्रोताओं के हिसाब से? एक तो जब वर्षा होती है तो हर खेत को पानी पहुंचता है, लेकिन फिर उसके लिए वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है। तो आंकड़े क्या बताते हैं, अभी देश में कितने एरिया ऐसे हैं जहां वर्षा आधारित कृषि है, और कितने एरिया हम मान के चले ऐसे हैं जहां के लिए हम सिंचाई की सुविधा देते हैं जो वर्षा पर आधारित नहीं है? वर्षा हो ना हो, वहां सिंचाई का पानी पहुंच जाएगा।
0: तो हमारा सिंचाई का जो ढांचा है जो बहुत बरसों से है, जैसे कि हम लोग कैनाल सिस्टम है, ट्यूबवेल सिस्टम है और डैम बनाए गए हैं, चेक डैम्स हैं, तो ये एक जो पोन्ड्स हैं, जो तालाब हैं बड़े, उनका रेस्टोरेशन है, बहुत सारी चीजें उसके साथ में है। लेकिन जो कैनाल इरिगेशन और हम जो कहते हैं कि भाई जहाँ ट्यूबवेल सिस्टम है, वो सारा जो हम कहते हैं इसको एश्योर्ड इरिगेशन, यानी कि बारिश हो ना हो लेकिन किसान के पास एक वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध है जिसका उपयोग करके वो अपने खेतों की सिंचाई करके फसल का उत्पादन कर सकता है। और इसलिए जो बहुफसलीय जो उत्पादन क्षेत्र है वहां पर किसानों की स्थिति भी अच्छी होती है, उत्पादन भी ज्यादा होता है, कि वो जो फसल चक्र उसका है वो रबी है, खरीफ है, जायद है, वो सारी चीजें उसमें हासिल कर सकता है क्योंकि उसके पास सिंचाई की सुविधा है। ये इस तरीके का जो हमारा क्षेत्रफल है वो 50% से थोड़ा ज्यादा है। बाकी जो है हमारा जो कृषि है वो हम कहते हैं कि वर्षा आधारित है, हालांकि हुआ काफी बड़े पैमाने पर वहां पर भी किसानों ने अपने स्तर पर और सरकार की जो योजनाएं हैं उनका उपयोग करके सिंचाई की सुविधाएं दी हैं। इसको हम रेनफेड एरिया बोलते हैं। रेनफेड एरिया में अक्सर जो है एक फसलीय खेती होती है, और वो जब ये हमारा मानसून का सीजन होता है उस वक्त ये खेती होती है, लेकिन वहां पर भी ऐसा नहीं कि हर वक्त बारिश हो। तो सरकार की जो योजना है ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उसका एक कंपोनेंट है वाटरशेड मैनेजमेंट। तो वाटरशेड मैनेजमेंट में होता क्या है कि उस तरीके के सिंचाई के लिए पानी को इकट्ठा करने के एक ढांचे बनाए जाते हैं, चेक डैम्स बनाए जाते हैं, कि जो रेनफेड एरिया है वहां पर एक सिंचाई उस क्षेत्र में हो जाए जब कमी पड़ती है उस वक्त, या जो पानी अगर बच जाएगा तो उससे आप दूसरी फसल के लिए भी पानी उपलब्ध कर सकते हैं। तो ये एक काफी बड़ा काम है और देश भर में इसके ऊपर सरकार ने काफी ज्यादा पैसा खर्च किया है वाटरशेड मैनेजमेंट के ऊपर। और इससे क्या हुआ कि जो इलाके ऐसे हैं जो कृषि में थोड़ा पिछड़े हुए हैं उनको बाकी क्षेत्रों के करीब लाने की कोशिश कामयाब होती है, क्योंकि वहां के किसानों को उनका जो कृषि से जो आय है उसमें इसके जरिए सुधार किया जाना संभव है और हुआ है, बड़े पैमाने पर हुआ है। ये वहां पर जो पॉन्ड से उनका रेस्टोरेशन होता है कि जिससे जब पानी की जरूरत है तो वहां से पानी किसान ले सके, और बहुत जगह यूजर एसोसिएशंस बनी हुई है किसानों के, अपने एक तरीके से कलेक्टिव बने हुए हैं जो मिलजुल कर उसका मैनेजमेंट भी करते हैं और आपस में उस पानी का बंटवारा भी करते हैं, जिससे सबके साथ इक्विटेबल जो है रिसोर्सिस का इस्तेमाल हो सके।

0: ये इस योजना का एक बड़ा कंपोनेंट मैं मानता हूँ, और इसको काफी बड़ा बल मिला है। जो एक रेनफील्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो बड़े पैमाने पर इसके ऊपर काम भी करती रही है, तो ये तभी संभव हुआ है जब उसके लिए संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
1: हरवीर जी, आप ये भी बताएं कि जो ये अवसंरचना विकास है सिंचाई के लिए, ढांचागत विकास है, उसमें क्या नवीनता आई है समय के साथ साथ? जैसे अब तो हम हर जगह टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, तो सिंचाई में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आई है और ढांचागत जो विकास हुआ है उसमें क्या क्या परिवर्तन आए हैं?
0: इसका एक कंपोनेंट है एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, एआईबी भी जिसको बोलता है।
1: जी
0: वो प्रोग्राम ऐसा है कि जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं लंबे समय से उनका जो लास्ट माइल कंप्लीशन है, यानी कि जो प्रोजेक्ट 80% पूरा हो गया या 90% पूरा हो गया, उसमें अगर 10% काम बचा तो उसको तेजी से पूरा किया जाए, उसके लिए अलोकेशन किया जाए, और उसके पूरा होते ही उसका जो पोटेंशियल है, जो उसके जरिए जो एक संभावना है या कितना क्षमता का हमने उम्मीद रखी है उसके सिंचाई की जो उसमें पैदा होगी, उसका उपयोग तुरंत हो जाएगा। तो ये एक बड़ा कंपोनेंट रहा है, और इसके ऊपर जो है करीब 21,000 करोड़ रुपया जो है इसके लिए अलोकेट हुआ, और बड़े पैमाने पर इससे करीब 173 लाख हेक्टेयर जमीन जो है उसको सिंचित सुविधा की तरह हम दे पाए। प्लस जो माइनर इरिगेशन है, जैसे मैंने आपको चेक डैम की बात की थी, या माइनर इरिगेशन है वो सब हुआ। साथ में जो टेक्नोलॉजी है, जैसे आपने कहा कि जो मैं कहूँ कि प्रिसीजन इरिगेशन जो है, कि आपको माइक्रो इरिगेशन की जो स्कीम्स है कि भाई आप स्प्रिंकलर है, आपके ड्रिप इरिगेशन है,
1: जी
0: जिससे आप सिंचाई के साथ आप न्यूट्रिशन भी पौधे तक सीधे पहुंचा सकते हैं, जिससे आपकी उत्पादकता बढ़ती है और आपकी लागत घटती है। और ये जो स्कीम्स हैं जिसमें हम मैं कह रहा हूँ कि जो टेक्नोलॉजी का जहाँ इस्तेमाल हुआ है, इस तरीके की इरिगेशन की जो नई चीजें नई पद्धतियां लागू की गई हैं, उससे बहुत कम पानी में, कई जगह 1/4 पानी इस्तेमाल होता है फ्लड इरिगेशन के मुकाबले इसमें, या उससे भी कम होता है, लेकिन जो उपज है वो बेहतर होती है, उत्पादकता बेहतर होती है। जो ड्राई लैंड एरियाज है, जैसे राजस्थान है, गुजरात का कुछ हिस्सा है, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से हैं, महाराष्ट्र का बड़ा हिस्सा है, वहां पर इस तरीके की जो नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो सिंचाई सुविधाओं के ऊपर काम हुआ है, क्योंकि इसके लिए सरकार सब्सिडी भी देती है और उस सरकार किसानों को प्रोत्साहित करती है।
1: जी
0: जैसे आपने कहा कि पहले से जो हमारा कैनाल इरिगेशन था, जो बड़े पॉन्ड्स थे या लेक्स थे, जो है वहां से जो पानी का हम इस्तेमाल कर पा रहे थे नहरों के जरिए, तो लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें अगर ट्यूबवेल सिस्टम भी है तो वहां पर भी आप जो है बोरवेल में वहां पर भी ये आप उसको आगे नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस जहां पानी का स्तर ऊपर था वहां पर बड़े पैमाने पर ट्यूबवेल्स जो है उनके लिए संसाधन उपलब्ध कराए गए, उसका इस्तेमाल हुआ। और जो जो सिंचित, जैसे हम ईस्टर्न इंडिया की जब हम बात करते हैं, वहां जो सिंचित एरिया बढ़ाने की बात है उसमें ये काफी मददगार हुई है स्कीम्स इस तरह की। इवन राजस्थान में बड़े पैमाने पर लोगों ने प्रिसिशन जो इरिगेशन की हम बात करते हैं, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, प्लस सोलर पंप्स के जरिए, छोटे पंप्स और सोलर के जो एनर्जी जहां बिजली की भी जरूरत नहीं है, ये सारा चीजें तभी हो पाई है जब आपने एक बहुत वृद्ध स्कीम बनाई और
1: जी
0: उसमें हर कंपोनेंट को रखा। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप सिर्फ डैम बनाएंगे और इरिगेशन के लिए चैनल्स बनाएंगे, नहीं, जो भी उपलब्ध एक तरीके से विकल्प है उन सबको एक साथ इस्तेमाल करने की कोशिश की।
1: हरवीर जी, आपने बहुत सही बताया कि किस तरीके से तकनीक का इस्तेमाल कर और स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल कर किसानों ने अपनी फसल को बढ़ाया है, अपनी आय बढ़ाई है। यहाँ एक उदाहरण देना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के किसानों ने स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाकर पानी, बिजली और श्रम की लागत काफी कम कर दी, अपना उत्पादन बढ़ाया। और आपने राजस्थान की भी बात की कि जहाँ किसानों ने कम पानी के बावजूद अपना उत्पादन बढ़ाया है। साथ ही आपने त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी AIBP के माध्यम से भी लंबित सिंचाई परियोजनाओं को किस तरीके से सरकार ने पूरा किया है इस पर भी बातचीत की। अब आप हमें ये बताएं कि सरकार खास तौर पर विशेष रूप से अगर कहें छोटे और सीमांत किसानों को सूक्ष्म सिंचाई अपनाने के लिए 55% तक की सहायता देती है, आपने अभी थोड़ी देर पहले सब्सिडी की भी बात की, इससे किसानों की आय और खेती पर पिछले कुछ वर्षों में क्या प्रभाव पड़ा है?
0: ये जो छोटे किसान होते हैं उनके पास संसाधनों की कमी होती है, उनके पास जो वित्तीय संसाधन है वो बड़े किसानों की तरह उपलब्ध नहीं होते कि वो इन्वेस्टमेंट करके सिंचाई सुविधाओं पर तुरंत अपने लिए सिंचाई की व्यवस्था कर सकता है। यहाँ पर जो सरकार ने सब्सिडी मुहैया कराई है, जो कंपोनेंट जो लागत आती है उसका बड़ा हिस्सा जो दिया है, और इसमें कोशिश ये हो रही है कि ये जो सुविधाएं विकसित हो रही है उसमें टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो, जिससे कि जो वाटर यूज एफिशिएंसी, जो यानी कि पानी के उपयोग की जो दक्षता है, जो हम लोग पीछे कह रहे थे कि पर लोग मोर क्रॉप जो है उसके ऊपर फोकस किया

0: जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको कैसे अक्वाफर हो या और पॉन्ड्स हो उनको कैसे रिचार्ज रखा जा सकता है।
1: जी
0: मेरा अभी भी मानना है कि अभी इस तरीके के जो किसान है हमारे देश में, अभी भी जो लघु और सीमांत किसान है उनकी हिस्सेदारी करीब करीब 88-89% के बीच में चले गए हैं। जोत का जो आकार है 2 हेक्टेयर से कम जमीन के जो लैंड होल्डिंग्स हैं उनको अभी एक तरीके से जो एक्सटेंशन है जो उन तंत्र सूचना का है कि उनको कैसे हम शिक्षित करें, कैसे उनको हम इसके लिए तैयार करें कि वो इस तरह की जो स्कीम्स हैं उनका बेनिफिट लेकर के और जो कृषि जो वो खेती करते हैं उसमें अपने उपज बेहतर कर सके, अपने जो आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सके, अपनी ज्यादा फसल करके ज्यादा आय हासिल कर सके। क्योंकि स्कीम्स अवेलेबल है उसमें बड़े पैमाने पर, अभी भी जरूरत यह है कि जो लिंकेज हैं उनको कैसे हम जोड़ें, किस राज्य की क्या स्कीम है,
1: जी
0: कहाँ से उनको ये उपकरण लेने हैं, उसके खेत के लिए कौन सा सिस्टम बेहतर है, तो ये उनको अभी और ज्यादा जागरूकता लाने की जरूरत
1: जी और हरवीर जी, यहाँ ये भी बताते चलें कि केंद्रीय बजट 2026-27 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 6,587 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, और ये दर्शाता है कि सरकार जल सुरक्षा और कृषि उत्पादकता को किस तरीके से सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। हरवीर सिंह जी, आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कृषि पद्धति में परिवर्तन के दशक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: Countrywide.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह।
1: मिनीद्वीप 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ही रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के ठीक 10:26 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुमन का प्यार भरा नमस्कार। तो ये आज आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद की कुछ चुनिंदा गीत। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुना रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में, तुमका नाम है, दिल अपना और प्रीत पराई। बोल हैं शैलेंद्र की, संगीत शंकर जयकिशन का। और इस गीत के लिए हमारे पास जो फरमाइश आई है वो है राजस्थान से हैं शिव कुमार सेठी, सुनीता, कमलजोत, श्याम, शबद, पानी, राजू। बिहार से हैं संजीव कुमार सिंह, पूजा, रवि, आरती। पटना बिहार से हैं भुवनेश्वर, गोलू मोलू। मलयाली भिवानी से हैं दर्शनाथ बंसल, सुदेश, प्रवीण, ममता, कमल और गर्वेश बंसल और तमन्ना बंसल। खुर्जा यूपी से हैं तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश, चंदन, अंकुश। महादेवघाट अमलेश्वर से हैं डोमन ठाकुर, सुवंथा ठाकुर, मिथलेश, तारिणी, सूरज, सुषमा, ज्योति और रियांश ठाकुर। हनुमानगढ़ राजस्थान से हैं जगमाल सिंह डांगला, हैप्पी, जीएस नायक, शोभा नायक, समस्त डांगला परिवार। तो ये सुनते हैं आपकी पसंद पर लता मंगेशकर का गाया गीत, फिल्म का नाम है दिल अपना और प्रीत पराई।

किशोर कुमार की आवाज़ में कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं फिल्म कुदरत से, और इस गीत के लिए हमारे पास फरमाइश है। डोर गांव से है राशपाल गजबी, राधिका अनिष्का तन्मय गजबी। हिंगोलीट महाराज से हैं शाहजी बोर्ड के नंदा हनुमान, उत्तम स्वराज चमगाड़े। मलोज पंजाब से हैं रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी गगनदीप जाजोरिया और आरजू जाजोरिया। मुल्तान करनाल से हैं सुधीर नूतन, मीनाक्षी तिवारी, नरेंद्र तनेजा, संदीप गुगलानी, जग्गी दुआ, किरण ठाकुर, सुनीता शर्मा। चकला बाजार सवाना से हैं पप्पू राम खुशदिल, संगीता जिंदल, हसमुख जिंदल। पुणे से हैं पंकज बड़ोदे, आर्या प्रियंका। और जरूर वरूर से हैं बाबा साहेब गड़ोदे, मीनाक्षी चरके, रजनी कनारे। रिंगनी छत्तीसगढ़ से हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा।

अगले गीत की फरमाइश है नय पाए भिराई से बसंत कुमार सूर्यवंशी श्राज चंद्रकांत प्राची ट्यूशी सूर्यवंशी मुक्सर से हैं बाबू सिंह धीमान बलजिंदर कौर अवनीत निशु धीमान पीलीबंगा से हैं अमन बेरा समर ऋतु प्रेमी बिशन माझी वाला राजस्थान से हैं राजू टुटेजा उर्मिला जीनू आदित्य भूमि राखी अमृत शिव सेठी स्माइला टुटेजा अलीका डवाली से हैं वसंत सिंह चंद राजकुमार सुनीता कुलदीप गांधी रोपड़ पंजाब से हैं हरदेव मीका बलविंदर बिरक जयतेक मीका बिरक बेमतरा उत्तराखंड से हैं पूर्णिमा सारथी आरती भव्य और सुषमा

लीजिए सुनिए यादगार फिल्म का ये गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर ने और पसंद आप सबकी है। बाड़मेर राजस्थान से हैं बबलेश पवार, डेनी पवार, मनीष। समाना से हैं पप्पू राज कुशतिल, संगीता जिंदल, हसमुख जिंदल कुशतिल। डवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग। रिंगनी से हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। पटियाला से हैं मुकेश बत्ता, नितिन पलक, कर्ण, गीतू निहारिका, हार्दिक वंश बत्ता। लुधियाना से हैं बसंत लाल और कोमल। कैथल से हैं सागर आम्रपाली। डोगरगांव से हैं राशपाल जलिए, राधिका और बिलाईगढ़। छत्तीसगढ़ से हैं रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन।

लीजिए, सुनील किशोर कुमार का गाया गीत, फिल्म का नाम है धर्मात्मा, और इस गीत के लिए हमारे पास इन श्रोताओं की जलाना से है नामदेव भूतेकर, अभिषेक गणेश, कार्तिक अश्वनी भूतकर, औरंगाबाद से हैं वैष्णवी जगदाले होरसुल सामगी, मेघराज भांसी गोरा से हैं मेघराज युवराज इधोरा देवी रुद्र, नादेर से हैं प्रभाकर और आरती, नेपानगर से हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रकाश कुशल, नितिन सुरभि, अशोक मंगला, राजेंद्र, सरदना से हैं अनिल जैन, सैम जैन, मुस्कान जैन, जैन सैन, खुर्जा से हैं तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश चंदन, अंकुश, भिराई से हैं बसंत कुमार सूर्यवंशी, सरोज सूर्यवंशी, शंकर सूर्यवंशी, चंद्रका सूर्यवंशी, प्राची और ट्यूशी।

ऑलीजी सुनी लता मंगेशकर का गाया गीत फिल्म का नाम है असली नकली, और इस गीत के लिए फरमाइश है मुक्तसर से हैं बापू सिंह दीवान, बलजिंदर, पुणे से हैं पंकज और आर्या आदि, गांधी चौक से हैं भुवनेश पवार, डैनी पवार, लक्ष्मणपुर से हैं विश्वनाथ साहू, पंकज तिरुपति, महाराज सिंगोली से हैं शाहजी बोड़के, नंदा हनुमान, उत्तम स्वराज, रामनगर मधुबनी से हैं शांति निकेतन, मंडित गुप्ता, सोनाली सूर्यवंशी, कोमल, मेनका, माधवी, साध्वी उनके परिवार के सदस्य हैं, कनेरा मोहल्ला से हैं फागुन और अनिता, बटिंडा रोड वाले से हैं राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित।

और संगीत के साथ मनचाहे गीत कार्यक्रम यही संपन्न होता है। स्टूडियो की घड़ी में रात की 10:30 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे द ओवल क्रिकेट ग्राउंड लंदन में इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के मध्य खेले जाने वाले ICC महिला T20 क्रिकेट मैच का दूसरे सेमीफाइनल मैच का आंखों देखा हाल, जिसे दिल्ली केंद्र से ले किया जाएगा।

0: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले दूसरे सेमीफाइनल टी20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल सुनने से पहले आइए सुनते हैं विशेष कार्यक्रम फर्स्ट बॉल 20।
1: दिस इज आकाशवाणी, वी नाउ ब्रिंग यू बॉल बाय बॉल कमेंट्री ऑफ द सेकंड सेमीफाइनल टी20 क्रिकेट मैच टू बी प्लेड बिटवीन इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका ऑफ द आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026। बिफोर दैट लिसन टू अ स्पेशल प्रोग्राम फर्स्ट बॉल 20।
2: Unbeaten in the group stage and looking absolutely ruthless, ICC Women's T20 World Cup hosts England are said to be up